मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 और 22 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र पूजा सिंह। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का शुभारंभ समूह स्वर में इस देशगान के साथ।

आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला भजन, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: काशीनाथ शंकर बोडस, पूर्णिमा ठाकुर, चतुरसेन और धीरा घोष की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे हनुमान आरती। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन प्रकृति का सानिध्य। आलेख श्री सुशील कश्यप का है और वाचन स्वर आभा गुप्ता का।
1: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व हमारे जीवन की अनवरत कहानी कहते रहते हैं। जीवन के बाद इन्हीं में जीवन घुल मिल जाता है। प्रकृति ही मनुष्य को उसकी स्वयं की प्रकृति में स्थित करती है और वही उसे अनुशासित और मर्यादित करती है। जब जब मनुष्य ने अपने विकास की सीमाओं को तोड़कर प्रकृति के विनाश की सोची, प्रकृति ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आधुनिक जीवन सुख सुविधाओं और भोगों से आच्छादित है, लेकिन मनुष्य फिर भी सुखी और शांत नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति का सम्मान नहीं करता। हम सभी में बुजुर्गों, देवताओं, गुरुओं और ईश्वर का आशीर्वाद लेने की चाहत होती है, क्योंकि हम संस्कारित मनुष्य हैं। ये हमारी मूल्यवान नैतिक संपदा है, जिसे हमने अपने पूर्वजों से पाया है। तो जब हम इन सभी का आदर सम्मान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तभी तो वे हमें आशीर्वाद देंगे। ठीक इसी प्रकार प्रकृति है, जब उसका सम्मान करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देगी, हमें सुरक्षित और संरक्षित करेगी, हम उसके सानिध्य में फूलेंगे फलेंगे। मनुष्य ने जंगल काटे, नदियों को मोड़ा, पहाड़ों को नंगा किया, समुद्र को बांधने की कोशिश की, जीव जंतुओं की खालों से खुद को सजाया, चिड़ियों को पकड़कर पिंजरों में बंद किया, प्रकृति को मानो तहस नहस करने की कसम खा ली। परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। हम आगामी वर्षों में शुद्ध सांस ले भी पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। प्रकृति का साहचर्य मनुष्य को जब जब प्राप्त हुआ, वह योगी, ऋषि मुनि, संत महात्माओं के रूप में मनुष्य समाज में प्रकट हुआ। ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान का नाश, इन दोनों के लिए प्रकृति ही मुख्य आधार है। जो प्रकृति में रहा, जिया, उसे प्रकृति ने अपना बना लिया, वह भूदेवी का लाड़ला बन गया। उसकी सांसें प्रकृति के साथ अनुनाद करने लगीं, वह व्यक्ति ज्ञानी हो गया। पूर्व में गुरु एक शिष्य को 100-100 गाय देते थे और कहते थे कि जब ये 1000 गाय हो जाए तब लौटना। जब वही शिष्य 1000 गायों के साथ लौटता था तो ज्ञानी हो जाता था। इसका तात्पर्य सीधा है। इतने वर्षों तक वह प्रकृति की गोद में पलता था, बढ़ता था और समझदार हो जाता था। सहनशीलता और संवेदनशीलता हमें प्रकृति ही सिखाती है। वैज्ञानिक सा सत्य है कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। जीवन आत्मा के रहस्य को समझाने में प्रकृति का सहयोग अविश्वसनीय है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में प्रकृति के वे सभी अंग हैं जिनसे हम सदा सीख सकते हैं। एक स्थान पर मैंने लिखा हुआ देखा था कि पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पेड़ काटता है, फिर उससे कागज बनाता है और फिर उस कागज पर लिखता है पेड़ काटना अपराध है। बड़ी अजीब सी बात है। आखिर हम कब सुधरेंगे और कब आगे आने वाली पीढ़ियों की सुध लेंगे? यदि हम उन पीढ़ियों को स्वस्थ प्रकृति देकर गए तो यही हमारी समृद्ध विरासत होगी, जिसका संरक्षण हमें अभी और आज करना होगा। जलवायु परिवर्तन पर हम कितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर लें, जब तक संपूर्ण पृथ्वीवासी प्रकृति को नहीं बचाएंगे तब तक प्राकृतिक असंतुलन नहीं सुधरेगा। आइए, अभी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागें तब ही सवेरा, संभलें और प्रकृति को संभालें। पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले प्रकृति से साहचर्य तभी स्थापित कर सकते हैं जब वह पृथ्वी को अपनी जननी माने। तभी पांच महाभूतों के दर्शन को भी हम समझ पाएंगे। जल, जंगल और जमीन से ही जीवन है, इन्हें बचाएं, स्वयं को प्रकृति से जोड़ें और प्रकृति को संरक्षित भी करें।
0: प्रकृति का सानिध्य। अभी आप सुन रहे थे श्री सुशील कच्छप का चिंतन, वाचन स्वर आभा गुप्ता का था। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का संगीतमयी पाठ।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धा नथ हो पति के वचन सुनने लगी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमयी पाठ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। कृषि चर्चा में आज सुनिए सामयिक चर्चा, मिर्च की खेती से अधिक लाभ कैसे। जानकारी दे रहे हैं श्री सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, मिर्च हमारे भोजन का प्रमुख अंग है। मिर्च की फसल सभी तरह की मौसम सहनशील होने के कारण वर्ष भर उगाई जाती है। मिर्च की फसल नकदी और अत्यधिक लाभप्रद है, लेकिन मिर्च की फसल में कीट और बीमारियों से अधिक नुकसान पहुंचता है, इसलिए मिर्च की फसल लाभप्रद सिद्ध नहीं हो पाती है। बीज को बोने से पहले हमेशा फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करके बुवाई करनी चाहिए। नर्सरी की भूमि को उपचारित करने के लिए कार्बोफ्लोरान 3G 8 से 10 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर क्यारियों में जुताई गुड़ाई के समय मिला देना चाहिए। उसके बाद बीज की बुवाई क्यारियों में करनी चाहिए। बीज दर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई करने के लिए 1250 ग्राम पर्याप्त रहती है। मिर्च की उन्नतशील प्रजातियाँ हैं NP 46, पंत सीवन, जवाहर 218, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, आंध्रा ज्योति, किरण, हाइब्रिड तेजस्विनी, सूर्यमुखी। नर्सरी में समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवारों को निकालकर नष्ट करते रहें। पौधे छोटे और मुलायम कमजोर होने के कारण कीट और बीमारियों के प्रभाव से शीघ्र ही नष्ट होने लगते हैं। पौधशाला में मुक्त जड़ गलन, पर्णकुंचन और मोजक बीमारियों से पौध प्रभावित होती है। जड़ गलन बीमारी में जमीन की सतह से लगा हुआ भाग काला पड़ने लगता है, जबकि पर्णकुंचन और मोजेक कीट की रस चूसने से विषाणु के प्रविष्ट होने पर फैलता है। पौधशाला में पौधों के बचाव के लिए नियंत्रण के सभी उपाय अपनाने चाहिए। पौध 4-5 सप्ताह में रोपाई योग्य तैयार हो जाती है। रोपाई के लिए खेत की 3-4 बार गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी बन जाए। अंतिम जुताई के समय 8 से 10 किलोग्राम कीटनाशक चूर्ण प्रति एकड़ भूमि में भुरकाव कर देना चाहिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में देसी खाद के साथ साथ 100 किलोग्राम नत्रजन खाद, 60 किलोग्राम स्फुर और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर मिला दें। नत्रजन खाद की 1/3 मात्रा खेत तैयार करते समय और शेष मात्रा पौध लगाने के 40 और 60 दिन बाद प्रयोग करनी चाहिए। तैयार खेत में रोपाई करने से पहले नर्सरी में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे पौध उखाड़ते समय पौधों की जड़ें न टूटने पाएं। पौधों की जड़ों को धोकर साफ कर

0: लेना चाहिए, जिससे मिट्टी पूर्णतः हट जाए और पौध रोपाई करने से पहले पौधों की जड़ों को 2 ग्राम बाविस्टीन फफूंदनाशक दवा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर पौधों की जड़ों को 30 मिनट तक उपचारित करने के बाद रोपाई लाइनों में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जिससे पौधा जब तक फल देगा फसल में बीमारी लगने की संभावना बहुत कम रहेगी। पौधों को खेत में रोपण करने के बाद पौधों पर माहू, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स जैसे कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है, जो पौधों की पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। सफ़ेद मक्खी पर्ण कुंचन और मोजेक रोग के विषाणु को फैलाने का कार्य करती है। यदि इस कीट को शुरुआत से ही नियंत्रित नहीं किया जाता है तो पूर्ण फसल ही प्रभावित हो जाती है। सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए पौध रोपण के 15-20 दिन बाद मेलाथियन 36 SL 2 मिलीटर दवा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फसल पर फूल बनने के बाद थायोडान 35 EC का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फसल पर अगर चूड़ी मुड़ी रोग के लक्षण दिखाई देने पर 2 से 3 ग्राम घुलनशील गंधक और आधी मात्रा रोगर 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे फसल स्वस्थ रहेगी और पैदावार निश्चित रूप से अधिक मिलेगी।
1: कृषि चर्चा में अभी आपने सुनी सामयिक चर्चा, मिर्च की खेती से अधिक लाभ कैसे, चर्चा कर रहे थे सोहन सिंह। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये एक ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
3: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
4: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
3: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
4: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
3: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
4: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
3: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
5: ए भाई जरा देख।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: पसंद का गीत सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप पर भी संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। नंबर एक बार फिर से सुनिए 9425702768।
1: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
2: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में संस्कृत समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
3: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य जकार्तायां इंडोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन तत्र त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इंडोनेशिया वायुसेनायाः युद्धक विमानैः प्रधानमन्त्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्तने राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिकसहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरञ्जकसांस्कृतिकप्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शनशिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीनसभ्यतायाः संस्कृतेः आध्यात्मिकसम्बन्धानां च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वयसमूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायणकथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिकभक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इंडोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक संबंधान उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इंडो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉक्टर अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राम मंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथितदान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् 8 निगडिताः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेश मंत्री कतर देशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्टि

0: ಇತ್ಯೈ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇತಿ ರಕ್ತವರ್ಣೀಯ ಸಂಚೇತನ ಪ್ರಸಾರಿತ. ಆಗಾಮಿ ದಿನದ್ವಯೋಃ ದಿಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ಚಂಡೀಗಢ, ಪಂಜಾಬ್, ಬಿಹಾರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಆಂತರಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ವಿದರ್ಭ, ಉಪಹಿಮಾಲಯಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯು ಪ್ರಚಂಡ ವೃಷ್ಟಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಭಾಗೇನ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನಿತಂ. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪೇಷು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶೆ, ಗಾಂಗೇಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗ ಪ್ರದೇಶೆ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶೆ, ಅಸಮ ರಾಜ್ಯೆ, ಮೇಘಾಲಯೆ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢೆ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡೆ, ಮಣಿಪುರೆ, ಮಿಜೋರಂ ರಾಜ್ಯೆ, ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯೆ ಚ ಅಗ್ರಿಮೇಷು ತ್ರಿಷು ಚತುರ್ಷು ದಿನೇಷು ಮೇಘಗರ್ಜನೇನ ಸಹ ವಿದ್ಯುದ್ಯೋತನಂ ಝಂಝಾವಾತಃ ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತ್ಯಪಿ ವಿಭಾಗೇನೋಕ್ತಂ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಯಾಂ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶೇನ ಗತರಾತ್ರೌ ಡಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16 ಕ್ರೀಡಾಯಾಂ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ 1-0 ಇತ್ಯಂಕಾಂತರಾಲಿನ ಪರಾಜಿತ್ಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರೀಡಾಯಾಃ ಪ್ರಾಗುಪಾಂತ್ಯಚಕ್ರೆ ಸ್ಥಾನಂ ಸುರಕ್ಷಿತಂ. ಸ್ಪೇನ್ ಇದಾನಿಂ ಶುಕ್ರವಾಸರೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣೆ USA ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಾ ದೇಶಂ ಸಮ್ಮುಖೀಕರಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಾರ್ತಾಃ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे. राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया. श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है. इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. वे भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे. प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे. श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा. इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है. एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की. डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे. यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है. ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं. चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है. नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी. इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं. दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं.
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई. उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है. हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं. किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है.
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से कुछ ही क्षणों में यानी 7:10 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता साथी ले सकेंगे 7:20 से। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुबह 8:00 और 8:15 पर। सुनना ना भूले लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं मान सिंह प्रजापति, ढोलक संगति श्रवण कुमार शर्मा और सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान होंगे। सुबह 9:00 सुनिए सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए दानिश असलम खान का सरोद पर बजाया राग भैरव। तबला संगति भोगीराम रतौनिया की है। 8:00 का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन सकेंगे सुबह 10:05 से।

11 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दोपहर 12 बजे श्रोता साथी फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। संग्रहालय से ये कार्यक्रम 12:30 पर अनुप्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम में आज होगी इंदौर की प्रस्तुति। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम भी आज इंदौर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता साथी ले सकेंगे दोपहर।

0: 2 बजे और 2:30 पर चित्रपट संगीत में। हमारी सायंकालीन सभा में 5:02 पर सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आज भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता साथी ले सकेंगे शाम 5:33 से। शाम 6 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही अनुप्रसारित किया जाएगा एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। 7:10 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकेंगे 7:20 पर। इस कार्यक्रम में आज होगी चर्चा डिजिटल इंडिया, वायु प्रदूषण रोके और स्वच्छता में सहयोग दे और वन हमारे जीवनदाता। इसके अलावा सुनवाया जाएगा फोन आउट, कृषक प्रेरणा, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगी मजबूती। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ाएंगे किसानों की आमदनी। और मौसम विभाग के अनुसार आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से समुद्री और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे और उभरते क्षेत्रों में सहयोग गहरा होगा। राजदूत ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इस प्रवृत्ति को और बल देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहल की घोषणा कर सकते हैं। इनमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वे आगामी रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे ताकि सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे इस साल ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जुड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं बल्कि उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्नत कृषि पर हुई संभागीय कार्यशाला में मौजूद किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में जैविक और प्राकृतिक खेती पर किसानों के अनुभव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। 13 जुलाई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 14 जुलाई को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 जुलाई को नाम निर्देशन पत्र की वापसी की तारीख है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से कल मध्य प्रदेश संवर्ग 2025 बैच के चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मकवाणा ने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तन्मयता से प्राप्त करें ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर सकें। उन्होंने 9 चयनित अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नारकोटिक्स और नशा मुक्ति जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थी वार परिणाम भी देख सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने संचालित शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते पिछले 6 दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 1% बारिश कम हुई है, जबकि जून में यह 33% कम थी। अब तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। जकार्ता में अंडर 23 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज 50 किलोग्राम भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश ने उज्बेकिस्तान के अमीरबेक इस्माइलोव को हराकर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पुरुष वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में गंगा ने मंगोलिया के अमगाला नबातर बुलगुंग को 5-0 से हराया। वहीं महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में तनु ने कोरिया की रेंग्योंग किम को 5-0 से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में बीती रात हुई लगातार बारिश के चलते किन, मिनासन और पत्नी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। झाबुआ के शासकीय पॉलिटेक्निक

माध्यमिक महाविद्यालय में एकलव्य योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हेतु 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। सतना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लगभग 100 स्ट्रीट डॉग्स का एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। मंडला जिले की घोघरी तहसील में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोस्तों, फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर में आज आपके साथ है आपकी दोस्त पूजा सिंह। और आज हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड की उस महान हस्ती को जिसने अपनी अदाकारी से खुद को अमर कर लिया। दोस्तों, आज ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप साहब की पुण्यतिथि है और हम आकाशवाणी परिवार और पूरे देश की तरफ से उस महान कलाकार को नमन करते हैं। दोस्तों, कैलेंडर पर जब भी 7 जुलाई की तारीख आती है तो दिल का एक कोना थोड़ा सा उदास हो जाता है। आज का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास का वो पन्ना है जब अभिनय के शहंशाह ने इस दुनिया को अलविदा कहा। जी हाँ, आज दिलीप कुमार यानी मोहम्मद यूसुफ की पुण्यतिथि है। वे हिंदी फिल्मों के इतने प्रसिद्ध अभिनेता थे कि उन्हें लोग आज भी याद करते हैं और आगे भी आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करती रहेंगी। उनका अभिनय इतना शानदार था कि दर्शकों द्वारा उन्हें अभिनय सम्राट भी कहा जाता था। लीजिए सुनिए फिल्म कोहिनूर का ये अमर गीत।

दोस्तों, दिलीप साहब को दुनिया में पहली बार पर्दे पर मेथड एक्टिंग को इजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसके कारण वे आज भी सभी अदाकारों के प्रेरणा स्रोत हैं। दिलीप कुमार को भारत का दूसरा एवं तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी प्राप्त है। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज भी प्राप्त है। शुरुआती वर्षों में कई सफल त्रासद यानी कि दुखद भूमिकाएं करने के कारण उन्हें मीडिया में ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। देवदास एक ऐसा किरदार दिलीप साहब के अलावा कोई और शायद ही इस शिद्दत से निभा पाता। दोस्तों, दिलीप साहब के बारे में एक बेहद दिलचस्प किस्सा ये भी है कि वो अपने किरदारों में इस कदर डूब जाते थे कि देवदास और मधुमति जैसी फिल्मों के बाद वो असल जिंदगी में भी डिप्रेशन में चले गए थे। तो आइए इसी बात पर आपको सुनवाते हैं फिल्म मधुमति का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सो योर प्लेस और माइन।
4: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
3: कॉन्डम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और आज हम याद कर रहे हैं फिल्म जगत के मशहूर सितारे दिलीप कुमार को। दोस्तों, उस डिप्रेशन के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें बोला कि इस तरह की सैड किरदार निभाना वो बंद कर दें, तब उसके बाद साल 1957 में आई फिल्म नया दौर, इसमें दिलीप साहब ने तांगे वाले का एक ऐसा जिंदा दिल किरदार निभाया कि पूरी दुनिया झूम उठी। तो चलिए उसी तांगे पर सवार होते हैं और सुनते हैं ये जोश से भरा गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

और दोस्तों अब सुनिए दिलीप साहब की एक और हिट फिल्म लीडर का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, दिलीप कुमार ने अपनी दूसरी पारी भी बहुत ज़बरदस्त खेली। जब उन्होंने फिल्मों में मुख्य अभिनेता की भूमिकाएं निभाना छोड़ दिया और दमदार चरित्र अभिनेता के रूप में पर्दे पर वापसी की। 1976 की फिल्म बैराग के बाद दिलीप कुमार ने अभिनय से लगभग 5 साल का एक छोटा सा ब्रेक लिया और इसके बाद 1981 में अपनी इस दूसरी पारी की शुरुआत की, जो बेहद ब्लॉकबस्टर और यादगार रही। आइए उसी समय की फिल्म क्रांति का ये गीत सुनते हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों ने।

तो दोस्तों, ये थी अभिनय सम्राट यूसुफ खान यानी हमारे प्यारे दिलीप कुमार साहब की यादें और उनके सदाबहार तरानों से सजी महफिल। कहते हैं फनकार चले जाते हैं लेकिन उनका फ़न हमेशा ज़िंदा रहता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आकाशवाणी ग्वालियर के माध्यम से हमने और आपने मिलकर सिनेमा के उस सुनहरे दौर को जिया जिसे दिलीप साहब ने अपने अभिनय और अपनी शख्सियत से सजाया था। मुग़ल-ए-आज़म के सलीम से लेकर गंगा जमुना के गंगा तक उनका हर अंदाज हमारी यादों में हमेशा महकता रहेगा। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि आज के इस फिल्म संगीत के सफ़र को यहीं थामना होगा, लेकिन दिलीप साहब और उनकी अदाकारी के गीतों का ये सुहाना सफ़र आपके दिलों में यूं ही जारी रहे इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त और सुनिए ये आखिरी गीत फिल्म।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: India and Indonesia are very close and strategic partners.
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
4: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित

0: शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको

0: लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है, इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
0: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं, 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं, 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीति

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये एक ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मान सिंह प्रजापति। ढोलक पर साथ दिया है श्रवण कुमार शर्मा ने और सारंगी उस्ताद अब्दुल मजीद खान की है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ढिमरियाई।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। उन्होंने बताया कि ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल ग्वालियर में किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में बताया कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। और मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216 मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये एक ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

मुस्कुरा कर जो देख लो एक बार तुम, तो सुबह की धूप भी सुहानी लगती है। जिंदगी चाहे कितनी भी उलझी हो। हमारे श्रोताओं से मिलकर बस हर कहानी मुकम्मल लगती है। तानसेन के सुरों की खुशबू भरी हवाओं में और ठीक इसी सुहाने पल में आपके कमरों में, आपकी गाड़ियों में, रेडियो सेट पे आपके कानों में घुलने आ गई है आपकी अपनी दोस्त और आपकी होस्ट पूजा। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर और आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। श्रोताओं, सच कहूँ तो ग्वालियर की सुबह का मिजाज ही कुछ अलग है। जब तक सुबह सुबह महाराज बाड़े पर हलचल शुरू ना हो, फूलबाग की बागियों में परिंदों की चहचहाट ना गूंजे और जब तक हाथ में ग्वालियर की वो कड़क अदरक वाली चाय का कुल्हड़ ना हो, तब तक सुबह को सुबह कहना ही अधूरा लगता है। और उस पर सोने पर सुहागा ये कि चाय की हर चुस्की के साथ मुझे आप जैसे जिंदा दिल और प्यारे श्रोताओं का साथ मिल जाता है। आप सिर्फ मेरे लिसनर्स नहीं बल्कि मेरी सुबह की वो ताज़ी हवा हैं जो मुझे पूरे दिन के लिए एनर्जी से भर देते हैं। और आज का ये सफ़र रोज़ की तरह बेहद ख़ास होने वाला है। आज हम बात करेंगे कुछ अनकहे किस्सों की। सेफ क्लिक अभियान की बात करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। मैं आपको बताऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाले फैक्ट्स भी जो आपके दिन को और भी दिलचस्प बना देंगे। तो मौसम को देखते हुए उठा लीजिए अपनी चाय का कप, बालकनी की ताज़ा हवा को महसूस कीजिए और दिल के सारे दरवाजे खोल दीजिए। चलिए आज के बेहद खुशनुमा और सुरीले सफ़र का आगाज़ करते हैं। सीधे आपके दिलों पर दस्तक देते हुए हमारे इस पहले बेहद खूबसूरत और प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है जुबीन नौटियाल ने, फिल्म का नाम है बागी 2।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वेलकम बैक श्रोताओं। दोस्तों, आज जब मैं स्टूडियो के लिए घर से निकल रही थी तो आसमान में छाए बादलों को देखकर मन बहुत खुश हो गया। लेकिन इस खुशी के साथ एक बात और दिमाग में आई जो मुझे आपसे करनी है आज। साथियों, हम जानते हैं कि पानी ही जीवन है और हमारे ग्वालियर के ऐतिहासिक किलों और बावड़ियों को देखिए, हमारे पूर्वज पानी की एक एक बूंद की कीमत समझते थे। लेकिन आज के दौर में जैसे ही बारिश होती है, पानी बस सड़कों पर बह जाता है, नालियों में चला जाता है और हम यूं ही देखते रहते हैं। और इसके बाद जब गर्मी आती है तो जल स्तर बिल्कुल नीचे चला जाता है और हम पानी की किल्लत से जूझने लगते हैं। कई कई दिनों तक पानी नहीं आता है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये वक्त की ज़रूरत है कि हम सब मिलकर एक स्मार्ट कदम उठाएं, वर्षा जल संरक्षण करें। अब कई लोग सोचते हैं कि यार, ये तो बड़ा ताम

वाला काम होगा, बहुत पैसा लगेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है छत का पानी धरती की तिजोरी में। तो करना क्या है? बस अपनी छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइपों के ज़रिए इकट्ठा करके एक छोटे से फिल्टर बेड से गुजार कर अपने घर के बोरवेल या अंडरग्राउंड टैंक में डालना है। तो बताइए इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे हमारे ग्वालियर का ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर ऊपर आएगा, हमारे घर के बोरवेल कभी सूखेंगे नहीं, और आने वाली गर्मियों में पानी के टैंकरों को फोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सोचिए, अगर तानसेन की इस नगरी का हर नागरिक अपनी छत पर बरसते अमृत को सहेजना शुरू कर दे, तो हमारा ग्वालियर पानी के मामले में कितना आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो इस मानसून हम चाय और पकौड़ों का मज़ा तो लेंगे ही, लेकिन एक ज़िम्मेदार नागरिक बनेंगे और अपनी छत पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज़रूर लगवाएंगे। याद रखिए, आज बचाई पानी की एक एक बूंद हमारे कल को खुशहाल बनाएगी।

दोस्तों, सुबह सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? चाय बाद में पीते हैं, पहले फ़ोन अनलॉक करके नोटिफिकेशन चेक करते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी फ़ोन की स्क्रीन पर किया गया आपका एक गलत क्लिक आपकी पूरी जमा पूंजी गायब कर सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इसी खतरे से बचने के लिए शुरू किए गए सेफ क्लिक अभियान 2.0 के बारे में। दोस्तों, डिजिटल होना बहुत अच्छी बात है। हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, यूपीआई से धड़ाधड़ पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं, साइबर ठग भी उतने ही शातिर और स्मार्ट हो रहे हैं। कभी बिजली कटने का मैसेज आता है, कभी लॉटरी लगने का, तो कभी कोई अनजान वीडियो कॉल्स। और इस सब में एक चीज़ कॉमन होती है, एक अननोन लिंक। और इसी को रोकने के लिए सेफ क्लिक अभियान 2.0 चलाया जा रहा है, जिसका सीधा सा मंत्र है, सोचो, समझो, फिर क्लिक करो। अब आप सोचेंगे कि भाई इस अभियान के तहत क्या सावधानियां रखनी है, मतलब हमें पता तो है कि किसी को ओटीपी नहीं देना है और थोड़ा सावधान रहना है, थोड़े बहुत जागरूक तो लोग हो गए हैं, लेकिन अब ये जो साइबर ठग है ना, वो ज़्यादा शातिर हो गए हैं, तो उनके लिए हमें ध्यान रखना है, जागरूक रहना है खुद भी और अपने घर में बच्चों को, बड़े बुज़ुर्गों को, सभी को जागरूक रखना है। तो रूल नंबर 1 ये है कि फ्री गिफ्ट, पार्ट टाइम जॉब में लाखों कमाए या बिना गारंटी वाले लोन जैसे मैसेज या व्हाट्सएप लिंक पर भूल कर भी क्लिक नहीं करना है, ये सब सिर्फ एक झांसा है। रूल नंबर 2, कोई भी बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर आपसे फ़ोन कर रहा है और ओटीपी मांग रहा है या एटीएम का पिन मांग रहा है तो वो नहीं देना है, क्योंकि ऐसा कोई भी सरकारी संस्था नहीं करती है। और अगर कोई ओटीपी मांगता है तो समझ जाइए कि वो ठग है। इस सब के बाद भी अगर गलती से आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो घबराइए मत, तुरंत 1930 नंबर डायल कर दीजिए या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराइए। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए सेफ क्लिक अभियान 2.0 का हिस्सा बनिए, खुद भी जागरूक रहिए और बाकी लोगों को भी जागरूक कीजिए, क्योंकि आपका एक सेफ क्लिक आपकी सुरक्षा की गारंटी है, है ना दोस्तों? तो बार बार इस बारे में आपसे चर्चा करने की वजह सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि हमें सतर्क रहना है। और अब एक ऐसी बात जो सीधे हमारे शहर के युवाओं के दिलों से और उनके मोबाइल के स्क्रीन से जुड़ी है। दोस्तों, आजकल हमारे युवाओं के बीच एक नया बुखार चला है, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका आसान सा मतलब है ये डर कि सब मज़े कर रहे हैं, बस मैं ही पीछे छूट गया हूँ। तो भाई ये वैसे तो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ युवाओं को क्यों, ज़्यादातर लोगों को हो गया, क्योंकि आजकल लोग स्टेटस देखकर लोगों की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। स्टेटस में अच्छा देखना चाहिए, स्टेटस में मस्ती करते हुए देखना चाहिए। व्हाट्सएप का स्टेटस हो, फेसबुक का स्टोरी हो, इंस्टाग्राम की स्टोरी हो, इन सब में हमें खुश दिखना है बस। सुबह सोकर उठते ही जब हम कोई रील्स या स्टोरीज देखते हैं तो कोई मनाली घूम रहा है, कोई नए कैफ़े में पार्टी कर रहा है, तो कोई नई गाड़ी की फ़ोटो डाल रहा है। ये सब देखकर हमारे दिल में एक छोटी सी उदासी बैठ जाती है कि यार सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट है ना, बस मेरी लाइफ बोरिंग है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पे दिखने वाली 90% ज़िंदगी सिर्फ एक परफेक्ट फिल्टर होती है, हकीकत नहीं? इस नकली दुनिया के चक्कर में हम अपनी असली खुशियाँ क्यों खोए भाई? इसलिए आज आपकी दोस्त
पूजा आपको एक नया मंत्र देने आई है और वो है जोमो। जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। जी हाँ, जॉय ऑफ मिसिंग आउट का मतलब है कि दुनिया क्या कर रही है इसकी परवाह छोड़ो। कभी कभी वीकेंड पर दोस्तों के साथ किसी महंगे कैफ़े में जाने के बजाय घर पर मम्मी के हाथ के बने पोहे खाना भी सुकून दे जाता है। यही है जोमो। सोशल मीडिया को 2 घंटे के लिए लॉग ऑफ कर दो और फूलबाग में शांति से बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ और अपने किसी पुराने शौक को वक्त दे दो। बस यही जोमो है। दूसरों की लाइफ से खुद को कंपेयर करना बंद करना होगा। आपकी ज़िंदगी जैसी भी है बहुत खूबसूरत है और उसे अपने तरीके से जिए, ना कि किसी और की रील देखकर। तो मेरी यंग ब्रिगेड, आज से फोमो को कहो बाय बाय और जोमो को गले लगाओ। खुद से प्यार करो और अपनी लाइफ का हीरो खुद बनो।

तो दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब वक्त है अपना वादा निभाने का। मैंने कहा था आपको बताऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो फैक्ट नंबर वन ये है कि दुनिया का सबसे पहला कैमरा इतना धीमा था कि अगर आपको अपनी फ़ोटो खिंचवानी हो तो आपको कैमरे के सामने पूरे 8 घंटों तक बिना हिले बैठना पड़ता था। ज़रा सोचिए, इंस्टेंट सेल्फी के ज़माने में 8 घंटे तक बैठना पड़े तो क्या होता। ओह माय गॉड, ये तो मेरे लिए बहुत ही हॉरिबल है सब। इसके अलावा अब एक दूसरी बात, हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरनेट और गूगल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हर सेकंड गूगल पर 60,000 से भी ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। यानी जितनी देर में मैंने ये लाइन बोली, लाखों लोग गूगल बाबा से सवाल पूछ भी चुके होंगे। और अब तो चैट जीपीटी ने हंगामा ही मचा रखा है, यानी कि एआई ने अब इतना आसान कर दिया है सब कुछ कि किसी को यदि ये भी सोचना होता है ना कि मूड अच्छा नहीं है, क्या करूं, तो बस एआई से पूछ लेता है और उसे बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो एक तरह से ये अच्छा भी है, कई बार अगर हमारा मूड अच्छा नहीं हो, मन अच्छा नहीं हो रहा, किसी से बात करने का मन है पर कोई पास नहीं है, तो एआई से भी बात की जा सकती है और उसके रिस्पॉन्स कई बार इतने मज़ेदार होते हैं कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है और मज़े का मज़ा भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब आज के लिए मुझे आपसे लेनी होगी इजाज़त और गुड मॉर्निंग ग्वालियर को समाप्त

अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग ग्वालियर। सुबह के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं दानिश असलम खान। लीजिए सुनिए इनका सरोद पर बजाया राग भैरव। तबला संगति भोगीराम रतौनिया की है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दानिश असलम खान का सरोद पर बजाया राग भैरव। तबला संगति भोगी राम रतौनिया की थी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण किया जाएगा।

छिंदवाड़ा और नवगठित पांडुना जिले की आबोहवा में इन दिनों विकास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की नई बयार बह रही है। खेतों में लहलहाती उम्मीदों से लेकर पर्यटन के नए क्षितिजों तक और युवाओं के भविष्य को संवारने से लेकर आम जनमानस की सुरक्षा तक जिले में बहुत कुछ खास हो रहा है।

वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली है। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में वन विभाग द्वारा व्यापक पौधरोपण अभियान का शंखनाद कर दिया गया है। जिले के हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस वर्ष दोनों जिलों में कुल 22,55,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मुख्य वन रक्षक कमल अरोरा के अनुसार हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई वन भूमियों को पुनः हरा भरा करने के लिए 3,69,000 सागौन के रूट शूट चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। मानसून की पहली बारिश के साथ शुरू हुआ यह महाअभियान जैव विविधता को समृद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जुन्नारदेव के वनग्राम कालीमाती में गायत्री परिवार के तत्वावधान में 1100 पौधे रोपे गए। यहां वन विभाग की भूमि पर पंचमटी त्रिवेणी और 9 पौधों की नवग्रह वाटिका स्थापित की गई है। वहीं परासिया में एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। वीरान पहाड़ी पर हरियाली लगाने के लिए सीड बॉल गोबर और मिट्टी की गोलियों का उपयोग हो रहा है। बारिश में भीगने के बाद इन गोलियों के भीतर मौजूद बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र बबुआ यादव ने शनिधाम समिति को ये सीड बॉल भेंट किए हैं जो कोल इंडिया की पूर्व सीएमओ डॉ जयश्री राय द्वारा बेंगलुरु से मंगवाए गए थे। अब बात करते हैं माटी से जुड़े हमारे अन्नदाताओं की। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत परासिया विकासखंड के ग्राम उमरेट के युवा प्रगतिशील किसान संदीप पवार ने वैज्ञानिक खेती की एक शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर हरी मिर्च, करेला और शिमला मिर्च का बंपर उत्पादन किया है। उन्होंने 11,50,000 रूपए की लागत लगाकर 24,75,000 रूपए की आय प्राप्त की है। उनका शुद्ध लाभ पूरे अंचल के किसानों के लिए एक नजीर बन गया है। दूसरी ओर मानसून की देरी से खरीफ फसलों की बोनी भले ही थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन कभी पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन का रकबा इस वर्ष बढ़कर 9,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। बारिश और जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान में छिंदवाड़ा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 132% हासिल करते हुए 64,000 से अधिक कार्य पूरे किए हैं। पांडुना जिले में भी इस अभियान का भव्य समापन जन भागीदारी के साथ हुआ। पांडुना के ग्राम पंचायत भवन तेगांव में जगन्नाथ नेत्रालय द्वारा एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 मरीजों की जांच की गई और 25 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया। अब बात करते हैं पर्यटन की, जो इस क्षेत्र की नई पहचान बन रहा है। तामिया के पातालकोट की वादियां इस बार अगस्त माह में पहली बार 3 दिवसीय सावन महोत्सव के गवाह बनेंगी। पर्यटकों को यहां सावन के विशेष झूले, बैलगाड़ी की सवारी और हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वल्चर प्वाइंट, चीड़ प्वाइंट और छोटा महादेव में ट्रैकिंग के जरिए रोमांच का तड़का भी लगेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के लिए पांडुना के भूमा और जामसावली गाँव का चयन किया है, जहाँ होम स्टे विकसित कर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले के जामसावले स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर हनुमान लोक में इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित दर्शन कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की पहल पर 12वीं और स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अब महानगरों में MCA, BTEC और LLB जैसी उच्च शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार के मोर्चे पर छिंदवाड़ा ITI के एक प्लेसमेंट ड्राइव में 139 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 52 पुरुष और 87 महिलाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। इसके अलावा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांडुना के PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। श्रोता साथी, अब सुने अपना प्रिय कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे सुनना चाहा है। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार, गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरुदर्शन,

सुनीता शम्मी रजनी आकाशदीप अनहद और गुरशब्द। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। इन सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: फिल्म ड्रीम गर्ल का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे गाया मीत ब्रदर्स ने, और सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप किया हमारे इन श्रोताओं ने। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम और सद्दाम, ग्राम बहरामपुर, टेमा, ज़िला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज आर्यन, आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता और इनके साथी। ज़िला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। और अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता।

0: ये सब जीने के हैं 4 दिन तो जियो जी भर के।
1: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
0: हाँ भाई समझा।
1: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: व्हाट्सएप फरमाइश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और आइए अब सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, दत्रेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू वली जाटव, सोनम और उनके साथी, सरगुजा मैनपाट से रुबीना, सोनम, फातिमा और रेशमा, झांसी से फखरुद्दीन अंसारी, बद्रू अली, फर्जी वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। इन सभी की फरमाइश पर सुनिए फिल्म अजहर का ये गीत, जिसे गाया है अरमान मलिक ने।

हाफ गर्लफ्रेंड का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप किया था हमारे इन श्रोताओं ने। जेल रोड जालंधर से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा, धर्मजीत और फातिमा कौर। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नाज, बेबी चाहत और सादिया। कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुम्भार। बिहारी कॉलोनी महासमुद से मोहम्मद याकूब, आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ, आसमा कुरैशी। जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार, कल्लू मल्लू और कालिया बेलदार। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजे जाधव। छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या और स्वराज विराज। और श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश, और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है वन नाइट स्टैंड और गायक हैं मीत ब्रदर्स और अरिजीत सिंह। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयश, अंकिता और अनिकेत चौहान। पुणे से गंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही। ज़िला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रूप खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आज़म खान और अरहान खान। राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना और भरत कुमार। महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रगेश और प्रीतेश सिंघई। इन सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म मरजावां के इस गीत को सुनना चाहा था। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका एंड वाणी। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, लातूर से संगीता जैन और सूरज जैन, नांदेड़ से प्रकाश जैन, पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा अविका और साईशा सोनवने, श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू कुम्भार और अर्चना कुम्भार, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को गाया है आयुष्मान खुराना ने। फिल्म का नाम है विक्की डोनर और सुनने के ख्वाहिशमंद है हमारे ये श्रोता। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन और सुलोचना भगत। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम, सद्दाम और आदिब।

अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पति पत्नी और वो में, और इस गीत को सुनने के लिए व्हाट्सएप किया था बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल तन्वी और अंकित कांगड़ा। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शाबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप किया है हमारे इन श्रोताओं ने, एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नावेद सोहेल, अनम, यशफ और रसीद। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, स्वीट अंशुमन, बेबी ओवी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कुंवर, तुषार और रिंकी शेखावत। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। तो सुनिए फिल्म मैरी कॉम से ये गीत जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में अगला कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया यात्रा के दूसरे दिन आज कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के बीच बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के संसद भवन में एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। इनमें से 3,989 तीर्थयात्री बालतल मार्ग से और 4,826 तीर्थयात्री पहलगाम मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5-8 की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस साल से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और थाईलैंड में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते। महिला वर्ग में भारत ने 184 अंक के साथ उपविजेता का स्थान हासिल किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन

0: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हम जहां जन्म लेते हैं, जहां बड़े होते हैं, वो स्थान हमारे लिए स्मृतियों का एक जीवंत ग्रंथ होता है, हमारे संस्कारों की पहली पाठशाला। हमारे मन का सबसे आत्मीय कोना होता है हमारा गांव, हमारा शहर। और हर गांव की एक अपनी धुन होती है, हर शहर का एक अपना राग होता है। दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाएं, उस धुन को, उस राग को सुनते ही मन का मौसम सुहाना हो उठता है, मन खिल उठता है। सच तो ये है कि समय की अनेक परतें बिछी होती हैं हमारे शहर या गांव के आंगन में, जिसमें छिपी होती हैं हमारी परंपराओं की रंगत, उसके इतिहास की गुनगुनाहट। कभी किसी नदी का तट किसी जगह की पहचान बन जाता है, कभी उसका प्राकृतिक सौंदर्य उसकी विशेषता बन जाता है, कभी मंदिर, किले या बावड़ियां बीते कल की कहानी कहते हैं, कभी किसी लोक कला की चहक, किसी मेले की रौनक या किसी खास व्यंजन का स्वाद उस स्थान का सबसे सुंदर परिचय बन जाता है। तो आज इस फोन इन कार्यक्रम में हमें बताइए कि आपके शहर या गांव की वो कौन सी खास पहचान है जिस पर आपको सबसे अधिक गर्व है, या जिसकी वजह से आपको अपना शहर, अपना गांव, अपना रहने का स्थान अच्छा लगता है। तो आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, बात आपके शहर, आपके गांव की खास पहचान के बारे में। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछवा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कैसे हैं?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
0: तो आज का जो
1: आपको बताऊँ, 2005 से आकाशवाणी भोपाल का नियमित श्रोता हूँ।
0: अच्छा, तो चलिए, आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हो गए। आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, हम बात कर रहे हैं आपके शहर, आपके गांव की। हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है आपके रहने के स्थान में जो आपको गर्व महसूस करवाती है, या जिस बात से आपको अच्छा लगता है अपना गांव या अपना शहर। तो आपने बताया कि आप बछोड़ा के रहने वाले हैं, ये उज्जैन से कितनी दूर है?
1: जी उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, एकदम साफ सुथरा क्लीन शहर है हमारा, गांव है हमारा।
0: अच्छा,
1: पेड़ पौधे हैं, काफी बगीचे हैं हमारे यहाँ पर, और मतलब आपको बताऊँ, एकदम शांत स्वभाव के लोग रहते हैं यहाँ पे, और पानी की उचित व्यवस्था है हमारे पास, पीने के लिए भी, इस्तेमाल के लिए भी, सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है।
0: जी जी, आपने कहा बाग बगीचे बहुत से हैं, किस चीज के हैं?
1: जी जैसे कि आम के काफी बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके साथ में ऑरेंज के जो बगीचे होते हैं ना जी, उसके मतलब आपको काफी बड़े बड़े मतलब पैमाने पर लोगों ने खेतों में अपने ऑरेंज लगा रखे हैं। तो उससे मतलब काफी हरियाली है हमारे गाँव, और हम तो जहाँ रहते हैं हमारा गांव का मतलब ऐसा विकास हुआ है कि पिछले 5 सालों में सड़कें बन चुकी है, नालियां बन चुकी है, साथ में बिजली की व्यवस्था पूरी है, तो हमें अपने गांव पर पूरा गर्व है।
0: क्या बात है, तो आपका जो गांव है वो बहुत ही साफ है, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो जाहिर सी बात है कि जो गांव के लोग हैं उनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना?
1: जी बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना
0: जी,
1: तो इसमें मतलब ऐसे कोई समस्या वाली बात भी होती है तो सुलझा लेते हैं।
0: तो आपके गांव का जो बाग बगीचा है, जो सफाई है, और आपने बात की अपनेपन की लोगों के बीच बहुत अपनापन है, अपनत्व है, तो इस वजह से आपको आपका गांव प्यारा लगता है, तो ये बना रहे।
1: कहीं जाते भी है ना
0: जी,
1: तो 2-4 दिन में वापस अपने ऐसा लगता है कि जल्दी से घर जाए, अपने परिवार वाले से मिले और अपने गांव में रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कहीं चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में हो हम, कितनी भी सुविधाएं हो, लेकिन अपना गांव, अपना शहर, अपना घर बहुत याद आता है, है ना?
1: बिल्कुल, जब घर पे आ जाते हैं, कपड़े चेंज करके बस आराम से बैठ जाते हैं, तभी सुकून मिलता है।
0: तो चलिए, आपके गांव में आपको सुकून मिलता रहे, और जिस विशेषता को आपने यहाँ आज कहा है कि ये एक साफ गांव है, ये हर तरह से सुविधाओं से भरा गांव है, और इसमें पूर्णतः जो विकास हुआ है वो भी हुआ है, रोड अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, आगे और भी व्यवस्थाएं अच्छी होती चली जाएं, ये हमारी कामना है। अपने गांव से इसी तरह का प्रेम बनाकर रखिए। बहुत अच्छा लगा प्रेम सिंह जी आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

0: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नाम बताइए।
1: तारूलाल सुतार।
0: तारूलाल सुतार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: दारू गांव से बोल रहा हूँ, नीमच जिले के पास में गांव है अपना, जिला नीमच, मध्य प्रदेश।
0: दारू गांव, अच्छा।
1: हाँ जी।
0: तो भाई देखिए, आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आपके गांव की, आपके शहर की। हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव में अगर कोई ऐसा प्रसिद्ध स्थान हो या जो भी विशेषता आपको लगती हो वो आप आज इस मंच पर रख सकते हैं। क्या खास है आपके गांव में?
1: हमारे गांव में देव नारायण जी का मंदिर है, नागराज का मंदिर, वो बहुत प्रसिद्ध है, दूर दूर से यात्री आते हैं वहाँ।
0: अच्छा।
1: शनिवार के दिन तो मेले जैसा लगता है वहाँ।
0: अच्छा, नागराज जी का मंदिर।
1: हाँ, देव नारायण जी नाम है, देव नारायण नागराज का मंदिर है।
0: अच्छा, देव नारायण नागराज।
1: शनिवार के दिन बहुत भक्तगण आते हैं वहाँ। और पास में, गांव के पास में नदी है।
0: नदी है, कौन सी नदी?
1: हाँ, गांव के पास में एक नदी है, बिल्कुल गांव से लगती हुई, बिल्कुल गांव के किनारे, गांव उसी के किनारे पे है।
0: क्या
1: जब वो नदी में पानी देता है ना, इतना मस्त लगता है कि आप देखते ही जाओ।
0: तो ये बताइए कि ये जो मंदिर है इसमें किसकी पूजा होती है? नाग देवता की?
1: हाँ, नाग देवता की पूजा शनिवार के दिन पूजा होती है उनकी। वो रोज तो फिर साफ सफाई नहीं करते हैं।
0: अच्छा।
1: और शनिवार खास रहता है उनका।
0: तो एक मेले सी रौनक होती है आप बता रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा तारूलाल जी आपसे बात करके। आपने बताया कि आपके गांव में एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं, और नागराज की इसमें पूजा होती है।
1: आप भी आना कभी, आपका भी स्वागत रहेगा।
0: जरूर जरूर। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि नदी किनारे बसा एक गांव जहां एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपके गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, बहुत आभार।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं डीएस परिहार, ग्राम लभौली, जिला रीवा।
0: डीएस परिहार जी ग्राम लभौली से बोल रहे हैं
1: जी।
0: कैसे हैं?
1: मुझे ठीक है, हालचाल सब ठीक है।
0: और आपका गांव लभौली कैसा है?
1: गांव एक छोटा सा गांव है, ज्यादा कोई विकसित नहीं है।
0: छोटा सा गांव है लेकिन लोगों के बीच एक आत्मीयता तो होती ही है ना, ये भी एक विशेषता होती है। तो आज यही बात कर रहे हैं कि आपके गांव की कोई खास बात आप बता सकते हैं, या परंपरा में कोई लोकगीत हो, कोई व्यंजन हो, कोई धार्मिक स्थल हो, कोई ऐतिहासिक स्थल हो, उसकी चर्चा आप कर सकते हैं आज के कार्यक्रम में।
1: ऐसा कुछ नहीं इधर।
0: कुछ व्यंजन तो हो ही सकता है है ना? कोई व्यंजन तो होगा जो आप लोग आपस में बनाते खाते होंगे, परिवार में बनता होगा, खास अवसरों पर बनता होगा।
1: तो सब बनते रहते हैं, दाल पूड़ी बनती है और निकमच बनता है, इंदरहर बनती है।
0: दाल पूड़ी इंदरहर, वाह आपने तो बहुत ही अच्छे दो पकवानों का नाम ले लिया। देखिए बघेलखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है इंदरहर।
1: हाँ, रसाज है ये सब बुंदेलखंड का, बघेलखंड का जैसा बोल
0: जी, जी जी जी
1: रेसिपी जो है बहुत वैसा है।
0: तो आपको क्या पसंद है इनमें सबसे ज्यादा?
1: मैं रिकमच मैं भी खाता हूँ हमेशा, एक हफ्ते में एक बार खाता हूँ।
0: क्या खाते हैं?
1: रिकमच।
0: रिकमच ये कैसे बनता है?
1: वो दाल से ही बनती है।
0: दाल से?
1: मूंग की, हाँ मूंग की दाल।
0: मूंग की दाल से रिकमच। मीठा होता है या नमकीन होता है?
1: नहीं नहीं नहीं ये तो सब्जी होती है, इसकी मसालेदार सब्जी बनती है।
0: अच्छा तो ये पारंपरिक व्यंजन है आपके गाँव के, है ना, जो शादी ब्याह के समय भी आप लोग बनाते होंगे।
1: शादी वगैरह में तो ये सब बनता रहता है अक्सर।
0: इंद्रहर की आपने बात की है, ये भी एक बड़ा ही प्रसिद्ध वहाँ का व्यंजन है, है ना?
1: जी।
0: क्योंकि देखिए हम तो भोपाल में रहते हैं, तो जब कभी इस तरह का अवसर आता है कि बघेलखंड का कोई व्यंजन हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो हम अक्सर जो इंद्रहर है इसकी फरमाइश कर लेते हैं तो चलिए, एक स्थान अपने व्यंजन की वजह से भी जाना जाता है और ये भी हमारी संतोष और गर्व का विषय होता है। तो परिहार जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इसी तरह बने रहिए।
1: धन्यवाद।
0: बने रहिए आकाशवाणी।
1: दो दिन में लगाता हूं, अक्सर बिजी रहता है।
0: हाँ लेकिन आज बात हो गई, बहुत अच्छा लगा और बहुत जायकेदार बात हुई बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम इस कार्यक्रम में। आपने बताया कि आप मुरैना के रहने वाले हैं, खास मुरैना के रहने,
1: तरसमा गांव है मुरैना में,
0: मुरैना के पास तरसमा गांव में रहते हैं
1: जी।
0: तो देखिए आज तो बात हो रही है आपके रहने के स्थान की, इसलिए हमने गांव को विशेष रूप से पूछ लिया कि आपका जो ये गांव है इसकी ऐसी कौन सी खास विशेषता है जिस पर आपको गर्व है।
1: जी महोदया, मेरे गांव की खास विशेषता जिस पर मुझे गर्व है कि मेरे गांव में आर्मी में बहुत से लोग सर्विस कर रहे हैं, कम से कम 80% लोग और 70 लोग यहाँ शहीद हो चुके हैं। शहीद स्थली के नाम से मेरा गाँव जाना जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, 17 लोग शहीद हुए हैं।
1: सही, पूरे प्रदेश में पहला गांव इतने सर्विस में, अर्धसैनिक बलों में, सैनिक बलों में, कहीं नहीं, किसी गांव में नहीं।
0: क्या बात है, तो इस गांव की माटी को हम नमन करते हैं, इस गांव की जो माताएं हैं, जो अभिभावक हैं, उनको हम नमन करते हैं कि इतने बच्चों की शहादत के बाद भी एक वो जज्बा आपके भीतर है कि देश की सेवा करना है हमारे बच्चों को, और आप सेना में अर्धसैनिक बलों में भेजते हैं।
1: घर में चार चार बच्चे अभी अर्धसैनिक बलों, मेरे भी 3 बच्चे अर्धसैनिक बलों में सर्विस कर रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा हमें हरविलास जी आपसे बात करके, और वास्तव में मन श्रद्धा से झुक गया है आपके गाँव के प्रति।
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, बने रहिएगा आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, कौन बोल रहे
1: नमस्कार,
0: हैं?
1: नमस्कार सुनीता मैडम जी को दिल से नमस्कार, प्रणाम आदाब। और मैं भगवान से प्रार्थना दुआ कर रहा था कि आज हमारे सुनीता मैडम जी से बात हो जाए, तो हो ही गई। कहते हैं लागी लगन लागी लगन हो गया सगुन
0: जी,
1: और मेरा मन हो गया मगन आपसे बात करके। और हम तो आकाशवाणी मंद से भोपाल के गुण गाने लगे।
0: क्या बात है
1: और गाते रहेंगे।
0: तो एक लगन लगी थी मीरा को, दूसरी लगन लगी है आपको, ये हमें समझ में आया है तो अपना परिचय तो पूरा दे दीजिए।
1: परिचय बता दूं, कहते हैं ठंडी भी थी और गर्मी भी थी और अब आ गई बरसात। और मौसम चाहे जो भी हो, हम सुनीता मैडम जी के हमेशा साथ।
0: वाह बिल्कुल।
1: और अब पता बता दूं, हिंदुस्तानी कलाकार यूट्यूब ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका बोल रहा हूँ। अभी ईडन गार्डन बता दिया, अशोक वाटिका बता दिया, तो सब कुछ आ गया समझ लो। और हिंदुस्तान के दिल से बोल रहा हूँ।
0: तो चांद मोहम्मद खान जी, आपने कल्पा बताया, सतना के पास से आप बोल रहे हैं, और आज का जो विषय है वो आपके गांव, आपके शहर से ही जुड़ा हुआ है। आप हमें बताइए कि आपके शहर, आपके गांव की क्या खासियत है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है या आपको गर्व का अनुभव करवाती है आपके गांव से जुड़ी हुई?
1: हमारे गांव ग्राम कल्पा जिला सतना की बात की जाए, छोटा सा कस्बा है मैडम जी, और यहाँ के जो लोग बाग हैं, महिलाएं हैं, और बहुत ही भक्त संगीत से ओतप्रोत हैं, जो देवी देवताओं की पूजा इबादत करती हैं और सभी लोगों को मानती हैं जी जान से। और हमारे गांव के आसपास सबसे बड़ा जो है, कहते हैं कि आम का कटोरा कल्पा, आम की यहाँ प्रसिद्धि है, आम और कैथा, इमली और जामुन।
0: वाह, तो कौन सा आम होता है?
1: मैं बता दूं कि यहाँ इतने जबरदस्त आम के बगीचे हैं, गार्डन है पूरा, दोनों तरफ से नदी नाले बह रहे हैं। इसीलिए कहा करता हूँ कि लंका में अशोक वाटिका था और कल्पा में चांद मोहम्मद का कल्पा,
0: सतना में कल्पा है। तो आपने कहा कि आम के बहुत से बगीचे हैं और कैथा, और इसके अलावा क्या है?
1: इमली और जामुन।
0: तो ये तो फल फूल से भरा हुआ आपका गांव है तो
1: जी।
0: कौन कौन से आम होते हैं आपके गांव में?
1: आम तो अब सुनीता मैं एकदम बता दूं, यहाँ देसी आम ही होते हैं, पर बहुत ही लाजवाब होते हैं। उसका टेस्ट और स्वाद जो है, यहाँ के आम हमारे ज्यादातर वहाँ कानपुर भेजे जाते हैं और वहाँ बांदा।
0: क्या बात है। तो देखिए, मौसम भी आमों का है ही, और स्वाद ले रहे होंगे आप आम का। आपने बात की तो हमारा भी जो मुंह है वो मीठा हो गया
1: अगर वक्त मिला सुनीता मैडम जी, तो मैं आपके लिए आम जरूर अपने कल्पा के भेजूंगा, फिर उसका टेस्ट और स्वाद बताइएगा। बहुत ही लाजवाब आम होते हैं देसी, और उसका पना खाइए, मजा आ जाता है, सेहत से भरपूर। और सेहत से भरपूर आप हैं जब कार्यक्रम में आती हैं, तो चांद तो एक ही है, पर जब आप कार्यक्रम में आती तो हजारों चांद होता रहते हैं।
0: क्या बात है। तो चांद मोहम्मद खान जी, आपने अपने गांव कल्पा के विषय में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है कि आप कहीं बाहर जाते होंगे तो गांव की याद आती होगी।
1: अरे आम बस का नहीं मैडम जी, मैं बता दूं मेरे ग्राम कल्पा की एक खूबी और बता दूं। यहां पर सबसे मेन खूबी है मैडम जी कि ना तो ठंडी होती है अधिक, ना अधिक गर्मी होती है, और ना अधिक बरसात, सब कुछ मीडियम होता है।
0: तो मतलब एक पूरा मौसम का संतुलन आपके गांव में बना रहता है, ये बहुत अच्छी बात है।
1: और मैं एक बात और बता दूं कि आसमान के तारों की गिनती शायद है, और समुद्र की गहराई का अनुमान 9999 मीटर की गहराई का अनुमान मैं बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज की बात। और मुझे जितना प्यार आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल से है, उसका आंकड़ा लगाना, अनुमान लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है
0: जी। तो चांद मोहम्मद खान जी, आकाशवाणी से आपका जो प्रेम है उसको बना कर रखिए। आपने आज हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अगले श्रोता का। हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: वाह, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से योगेश जी बोल रहे हैं, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया है, अच्छे हैं। और बारिश होना भी अब तो शुरू हो गया है।
0: तो कैसा है आपका बेमेतरा बारिश में?
1: बहुत हो गया है, कहे तो लगातार 4 दिन से बारिश हो रहा है।
0: तो ये अच्छी बात है कि चलिए बारिश तो शुरू हुई। हम आज जो बात कर रहे हैं आपके गांव की, आपके शहर की बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी खास पहचान है जिस पर आपको गर्व है आपके गांव से जुड़ी हुई?
1: अब हमारा यहाँ गांव एक छोटा सा गांव है, लगभग 1000 की जनसंख्या है और हमेशा शांति प्रिय रहा है गांव। कभी किसी तरह का अनैतिक व्यवहार या उस तरह की घटनाएं नहीं हुई है आज तक। तो
0: जी जी जी
1: मतलब सभी समूह के लोग रहने के बावजूद भी गांव काफी बढ़िया है
0: जी। और आसपास कोई ऐसा धार्मिक या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो, कोई नदी हो?
1: हमारा जो जिला है बेमेतरा, वो गांव से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ माता शीतला और माता भद्रकाली है।
0: क्या बात है, तो माता शीतला और माता भद्रकाली का मंदिर है आपके गांव के पास। तो किन किन अवसरों पर कोई खास आयोजन होता है? नवरात्रि में तो होता ही होगा।
1: नवरात्रि के अवसर पर ही होता है, मतलब वही अप्रैल में एक बार और उधर मान के चलिए
0: अक्टूबर में,
1: अक्टूबर के
0: जी जी जी जी। और इसके अलावा कभी मेले वगैरह भी लगते हैं आपके गांव में?
1: मेला जो होता है पास में ही लगता है, मतलब वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। और गांव में जो होता है वो मड़ई महतर होता है, मतलब जो
0: मड़ई
1: वाला।
0: जी जी जी। तो ये जो मड़ई है ये भी मेले का एक छोटा रूप है ना?
1: हाँ जी, एक छोटा रूप है और ये ज्यादातर दीपावली के आसपास ज्यादा होता है।
0: तो इस मड़ई में कोई खास क्या रौनक होती है?
1: रौनक तो यही है कि अब साल में एक बार होता है करके लोग आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं और जो भी उसकी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उस हिसाब से मतलब करते हैं। जैसे दीपावली हो गया, दीपावली में जो हमारा गोवर्धन पूजा होता है उसमें हमारे जो पशु होते हैं

0: है, गाय बछड़े, तो
1: जी जी जी
0: उनका विशेष महत्व होता है।
1: हाँ, तो उस अवसर पर आप लोग एकत्रित होते हैं और पशुओं की पूजा करते हैं, पशुधन की।
0: बिल्कुल
1: तो योगेश जी, आपने बताया कि आपके गांव के पास शक्तिपीठ हैं, देवी के दो मंदिर हैं, और इसके साथ ही अपने गांव में लगने वाले मड़ई की आपने बात की, जिसकी रौनक हमारे स्टूडियो तक भी पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बने रहिए इसी तरह आकाशवाणी के साथ।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं।
1: अनोखे सिंह सर जी।
0: अनोखे सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बाग जिला धार, विराट नगरी है हमारी।
0: बाग जिला धार से आप बोल रहे हैं?
1: हाँ।
0: तो ये बताइए कि आपके गांव की कौन सी ऐसी खास बात है जिस पर आपको गर्व है?
1: हमारे गांव का विश्व प्रसिद्ध एक बाग गुफा है सर जी।
0: जी जी
1: गुफा बोल।
0: जी जी जी जी जी आपने धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं की चर्चा की, जो कि मुख्य रूप से अपनी प्राचीन बौद्ध भित्ति चित्रकला और शैलकृत वास्तुकला के लिए

0: प्रसिद्ध है और बहुत पुरानी गुफाएं हैं ये, लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी की ये गुफाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है, तो इस वजह से आपको अपना गांव, अपना शहर अच्छा लगता है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई।
1: और हमारी बागनी नदी पे महादेव बसे हुए, जबड़ेसर, अन्नेसर, नीलकंठेसर, भूतेसर और महाकालेसर।
0: क्या बात है,
1: बागनी नदी के तट पे।
0: जी जी जी जी, बागनी नदी है,
1: बागनी नदी है सर जी, नर्मदा में इसका संगम है, निसरपुर में।
0: तो चलिए अखिल सिंह जी, आपने अपने गांव के बारे में बताया जिस पर आपको गर्व है।
1: बड़केसर है, खेड़ापति हनुमान है, ये सब प्राचीन है, ऐतिहासिक है सर जी,
0: जी
1: कोई धाम है
0: जी। तो बहुत से धार्मिक स्थल हैं आपके गांव के आसपास, ये जानकर बहुत अच्छा लगा हमें।
1: है सर जी, किला है हमारे नगर में सर जी।
0: जी जी,
1: और हमारे यहाँ संचालन, हमारे जो सक्षम लोग हैं सर जी, वो अन्य लोगों को सामूहिक लेके बहुत अच्छे से चलते हैं। भंडारा होता है जीरो वाले हनुमान जी, खेड़ापति हनुमान जी, गंगा कोई धाम, सर्व आम जन को आमंत्रित करके बहुत अच्छी सी सुविधा व्यवस्था की जाती है।
0: बहुत अच्छी बात है कि धार्मिक आयोजनों में, भंडारे में आप सब एकत्रित होते हैं और प्रेम के साथ अपना एक समय गुजारते हैं, भक्ति और आस्था के साथ, आनंद के साथ। तो ये आनंद आपके जीवन में बना रहे, ये आस्था आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, अमर सिंह राठौर बोल रहा हूँ मैम, कटनी ग्राम डिठवारा से।
0: अमर सिंह राठौर जी, आप
1: जी
0: बोल
1: जी
0: रहे हैं बिठवारा से, कटनी के पास ही गांव है। कैसा
1: जी
0: है आपका गांव, क्या खास बात है इस गांव की?
1: मैम, मेरे गांव के पास मैम पुरातत्व विभाग का जुगिया बाबा के स्थान है मैम।
0: जुगिया बाबा?
1: जी जी जी प्राचीन विष्णु मंदिर था वहाँ पे, आज भी वहाँ पे पुरातत्वकालीन की ईंटें, छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं और स्थान उनका बना हुआ है। और प्रतिमाएं तो चोरी चली गई हैं आज से करीब 20-25 साल पहले।
0: जी
1: अच्छी
0: जी
1: प्रतिमाएं थी, 5-5 फुट की 2-3 प्रतिमाएं थी, हमने देखा है उनको। और वहाँ पे मकर संक्रांति के दिन अच्छा मेला लगा करता था, खूब
0: अच्छा
1: लोक नृत्य हुआ करते थे। हम
0: अच्छा
1: लोग यहाँ दिवारी का नृत्य होता है जो फेमस है हमारे गांव में,
0: देवारी लोक नृत्य,
1: हाँ हाँ जो यादव लोग करते हैं ना, ग्वाल लोग।
0: ये दिवाली के आसपास करते हैं ना?
1: जी जी जी हाँ, और मकर संक्रांति के टाइम भी वो लोग वहाँ नृत्य किया करते थे।
0: अच्छा, तो
1: और
0: दीपावली के
1: जी
0: आसपास
1: जी
0: भी करते हैं और
1: जी
0: मकर
1: जी, जी
0: संक्रांति के
1: मैं
0: अवसर पर भी
1: सोचा था
0: करते
1: बात
0: हैं। कैसी वेशभूषा होती है उनकी?
1: शायद मैम वो मोर पंख वगैरह लगाते हैं,
0: जी
1: लड़ियाँ पहनते हैं,
0: हाँ हाँ
1: लच्छेदार वो बढ़िया अच्छे बस चमकीले टाइप के रहते हैं,
0: जी जी जी जी
1: पंख लगा के नाचते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। और
0: वाह
1: ढोला की थाप बजती है, मदार उनकी, बहुत
0: वाह
1: अच्छा लगता
0: वाह
1: है।
0: वाह, ढोलक मादर के साथ दिवारी
1: जी जी
0: नृत्य, आपने तो एक बिल्कुल सुंदर सा एक दृश्य खींच दिया है। वैसे
1: जी
0: मुझे जो हल्का सा याद आता है कि यही लोग शायद दीपावली के अगले दिन आकर घरों की नजरें भी उतारते हैं ना?
1: हाँ हाँ जी जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल यही लोग करते
0: है ना,
1: हैं,
0: बताइए कैसी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: शुभ मंगल की कामना है कि दीपावली के बाद आते हैं यादव समुदाय के लोग और
1: जी मैम,
0: घरों में, अलग अलग घरों में जाते हैं और उन घरों की नजर उतारते हैं,
1: हाँ
0: है
1: ये
0: ना?
1: होता मैम। गांव में तो अक्सर होता है, शहर में तो नहीं पता,
0: जी जी
1: पर
0: जी
1: गांव
0: जी
1: में तो हर घर में वो लोग आते हैं
0: क्या बात है,
1: और
0: तो
1: उपहार वगैरह ले जाते हैं घर से वो लोग,
0: हाँ हाँ
1: उनका ये
0: बिल्कुल
1: पूरा निश्चित रहता है।
0: जी। तो अमर सिंह राठौर जी, आपने बिठवारा गांव की जो विशेषता बताई हमें बहुत अच्छा लगा, और हालांकि मूर्तियां अब नहीं है वहाँ, लेकिन एक ऐतिहासिक स्थल ये है ना,
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: आपने मेले की बात की और देवारी नृत्य की बात की, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें आपके गर्व का विषय हैं। तो ये गर्व आपके मन में बना रहे, अपने स्थान से प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
1: जी, थैंक यू।

0: आज आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्कार दीदी, प्रणाम। मैं कोदवा साजा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रही दीदी।
0: कोदवा साजा छत्तीसगढ़।
1: छत्तीसगढ़, हाँ दीदी।
0: अच्छा, तो बताइए क्या विशेषता है आपके गांव की, आपके छत्तीसगढ़।
1: छत्तीसगढ़ तो हमारा यहाँ भाषा भी प्रिय है, छत्तीसगढ़ी बोली जो बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया।
0: छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बिल्कुल।
1: यहाँ जो अपना चावल जो रात में डुबाते हैं ना बासी, उसी ज्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ में। बासी बोरे बासी बोलते हैं जिसको,
0: बासी खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ दीदी, हाँ। यहाँ का जो अपना सब्जी है भाजी, जिसको बोलते हैं हरी हरी सब्जी, है ना, यहाँ फेमस है अपन छत्तीसगढ़ में खाने का।
0: भाजियाँ आप अच्छी लगती हैं और बासी खाने की एक परंपरा है वहाँ पर, है ना।
1: हाँ दीदी, हाँ। और यहाँ तो त्योहारों में अलग अलग प्रकार के सब कलेवा बनाते हैं दीदी।
0: क्या क्या बनाते हैं?
1: जैसे अपना तीजा पोल आ गया जिसको खुरमी ठेठरी बोलते हैं, चावल अपना इसका गेहूं आटा बनाते हैं दीदी, उसमें अपना खुरमी, अच्छा चना बेसन का जो उसमें बेल के लंबा लंबा ठेठरी बनाते हैं, उसके इधर बहुत प्रचलन है दीदी छत्तीसगढ़ में।
0: जी जी, तो बहुत से पारंपरिक आपके जो पकवान हैं वो बनाए जाते हैं अलग अलग त्योहारों में। आपने बोली भाषा की बात की, छत्तीसगढ़ी बोली की बात की है, तो हमें लगता है कि कुछ पंक्तियां आप छत्तीसगढ़ी में बोल दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: दीदी अब ठीक है, चलो बोल ही रहा हूँ मैं आपसे। दीदी आपसे बोला था छत्तीसगढ़ी भाषा में, है ना। आप मन बढ़िया, आप अच्छा रहा, अच्छा से बढ़िया बढ़िया मन से भी रहा, बढ़िया बात करत हम तुहर मन से, मन अच्छा लगत है मतलब जुड़ के तुहर मन से, आप मन से जुड़ के अतका प्यारा प्यारा प्यारा बात सुने मिलते हमारे आकाशवाणी भोपाल में, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर भी सुने मिलते हमन ला।
0: बहुत बढ़िया, तो भाषा बोली का एक रंग हम तक पहुंचाया, बहुत अच्छा लगा। और आपने जब बोला तो मुझे तीजन बाई जी की याद हो आई।
1: हाँ दीदी, इनका देहांत हुआ दीदी
0: जी
1: तीजन
0: जी
1: बाई का,
0: 5 तारीख को जिनका
1: पंडवानी
0: देहांत
1: गायिका थी, बहुत,
0: हाँ,
1: बहुत
0: विश्व
1: बहुत
0: प्रसिद्ध पंडवानी
1: दीदी।
0: जी।
1: हम लोग बचपन करीब 8-9 साल के तब के प्रोग्राम सुनते, मैं मेरे पास में भी लाउड स्पीकर था पहले, मैं कम से कम 10-15 साल लाउड स्पीकर बजाया घर का था मेरा। पंडवानी बहुत फेमस था दीदी,
0: बिल्कुल। तो पंडवानी को विश्व स्तर पर पहुंचाने वाली वो शख्सियत थी, लोग
1: हाँ,
0: की एक
1: बहुत
0: बुलंद
1: विदेशों
0: आवाज
1: भी
0: थी
1: गए दीदी, वो अपना प्रेजेंट भी पाई, इनाम भी मिला,
0: जी।
1: पदक भी मिला उनको।
0: बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से वो एक ऐसी कलाकार थीं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की जब बात हुई तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो ये लोक नाट्य विधा है पंडवानी, उस पर आपको अवश्य गर्व होगा और अपनी उन कलाकार पर गर्व होगा जो
1: हाँ
0: 5 तारीख
1: दीदी,
0: को हमें छोड़कर चली गई। तो बहुत अच्छा लगा रामस्वरूप गुप्ता जी ने हमें फ़ोन किया और छत्तीसगढ़ का रंग इस कार्यक्रम में बिखेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अपनी मिट्टी से जुड़ाव ही वो डोर है जो दूरियों के बावजूद हमारे मन को अपनी जड़ों से बांधे रखती है। शहर बदल जाते हैं, गांव बदल जाते हैं, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा गांव, हमारा शहर पूरी आत्मीयता के साथ हमारे भीतर धड़कता रहता है। आज आपने अपने शब्दों से अपने अपने शहरों और गांवों की जो सुंदर तस्वीर उकेरी, उसमें हमारी विविधता, हमारी संस्कृति और आत्मीयता के रंग मुस्कुराते रहे। आपके शहर, आपके गांव की ये रंगत आपके मन में हमेशा यूं ही बनी रहे, खिली रहे और आप उससे हमेशा यूं ही जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को है। लीजिए आप सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। भारत कल से केरल के कोची में शुरू होने वाली 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान भी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात 10 बजे नॉटिंघम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दिन का 12 बजा है और ये समय है आपकी फरमाइश का। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए इस फिल्म का एक गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। ग्राम अम्बलेश्वर से

और ये अगले गाने के लिए जो हमारे पास में फरमाइश आई है, इन्होंने बहुत ही पुराना गाना सुना है, फिल्म आन का जो 1952 में रिलीज हुई थी, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखने वाले हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, शुभ चंद्र और बिट्टा बजाज सहित इनके परिवार के दूसरे लोग। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है ये घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की। और ये फरमाइश है कवर कॉलोनी बड़वा, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत, आन फिल्म का नाम है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है और नौशाद का संगीत है।

अगला गाने लिया है हमने फिल्म लैला मजनू से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, मदन मोहन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, छत्रपति संभाजी नगर से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, और इन्होंने फरमाइश की है एक नई सड़क, एमपी शाजापुर से लिखने वाले हैं एमएम राजावत, राज मधु राजावत, शशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, कुरवाई ज़िला विदिशा से लिखने वाले हैं रियासत खान, सगीर खान, जफर खान, निकलेश सक्सेना और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत है।

को लिखा है और राजेश शोषण का संगीत। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महादेव घाट अम्बलेश्वर से, लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, भोपाल गौतम नगर से लिखने वाले हैं पंडित मनवेश शर्मा, दीपू शर्मा, विनायक शर्मा, और भोपाल कोलार से लिखने वाले हैं अक्षता, अनुष्का शर्मा, नरेश, ममता जैन, हेमा, करुणा और अमन। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं ये राइटिंग कुछ साफ सी नहीं है, तो चलिए हम दूसरा पत्र शामिल कर लेते हैं। करुला मुबारकबाद से लिखने वाले हैं अयूब खान, एरम, गुड़िया, शोएब खान और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गौतम नगर जिला नांदेड़ से लिखने वाले हैं प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम खुदा खुदगर्ज़।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं कार्यक्रम संग्रहालय से में। धारावाहिक हंसना है हंसना मना है इसकी छठवीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: एक संस्था ने सेठ जी के सम्मान करने का विचार अपने मन में लिया, तो साहब दो चार पांच लोग दरवाजे पहुंच गए। सेठ जी बड़े पैसे वाले थे, सम्मानी व्यक्ति थे, लेकिन उनका सम्मान आज के पहले कभी हुआ नहीं था। आज तक किसी ने उनको माला नहीं पहनाई थी। खैर, ये संस्था वाले पहुंच गए और सेठ जी से कहा, सेठ जी ऐसा है कि हमने कई बार आपसे चंदा मांगा, 50 मांगा, 100 मांगा, 200 मांगा, और आपने बड़े प्रेम से हमको दे दिया। इसके लिए आप हमारा धन्यवाद स्वीकार करें, और इस बार हम चाहते हैं कि आपका सम्मान किया जाए, है ना। तो चंदा तो खैर आप देंगे, लेकिन थोड़ा इस बार चंदा आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान में करीब करीब 150 मालाएं हम आपको पहनाएंगे। उसमें बड़ी मालाएं, छोटी मालाएं, आपको तो इतनी माला पहनाई जाएगी सेठ जी कि आपका सिर्फ छोड़ा थोड़ा सा मुंह भर दिखेगा। हाँ, इतनी माला है। अरे सेठ जी बड़े ग्लैड, उन्हें 150 माला का पैसा दे दिया और ऊपर से और भी बहुत सारा चंदा उंदा दे दिया। ठीक है साहब, अनाउंसमेंट हो गया, 27 तारीख को रामलीला मैदान में फलाने फलाने सेठ जी का नगर सम्मान किया जाएगा। चलो साहब, पहुंच गए सब लोग, तालियां बजी, मालाएं पहनाई गई, और ये हुआ वो हुआ, सब जो कुछ होना था। लेकिन क्या देखा गया, जो फोटोग्राफर फोटो खींच रहे थे वो सेठ जी के चेहरे को बार बार पढ़ रहे थे। तो चेहरे को पढ़ के एक फोटोग्राफर उनके पास जाता है और कहता है, क्यों सेठ जी, एक बात बताइए, आपका इतना सम्मान हो रहा है, आप तो बड़े खुश होंगे। तो सेठ जी बोलते, क्या खाक खुश होंगे हैं? अरे इन लोगों ने मुझे 150 मालाएं पहनाने का वादा करके पूरा 150 माला का पैसा लिया था मुझसे, लेकिन अभी तक, और क्या आप तो बिल्कुल हो गई बात खत्म, सिर्फ 35 मालाएं पहनाई है। रेडियो से विज्ञापन, टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं, क्यों दुकानदार देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके, उनका नाम हो, पैसे ज्यादा मिले उनको। वैसे भी आजकल रेडियो गांव गांव तक सुना जाता है, यहाँ से सैकड़ों हजारों मील तक लोग रेडियो को बड़े प्यार से पूरी मोहब्बत से सुनते हैं, और विज्ञापन जब गांव गांव पहुंचेगा तो स्वाभाविक भाई सामान तो बिकेगा, दुकानदार का नाम, व्यापार का नाम, सब कुछ। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक श्रीमान जी हमारे घर पहुंचे और मुझसे कहने लगे, भाई साहब ऐसा है कि अभी मैंने रेडियो में विज्ञापन सुना, टेलीविजन पे दूरदर्शन वाले भी विज्ञापन देते हैं, साहब ये सामान खरीदो तो वो फ्री मिलेगा, ये खरीदो तो वो फ्री मिलेगा, तो साहब ऐसा कुछ ऐसा विज्ञापन आप हमारे लिए भी बना दें तो हम भी रेडियो से दे देंगे, टेलीविजन की भी कोशिश करेंगे। मेरा तो उस समय बड़ा दिमाग खराब था, प्रोग्राम वगैरह के चक्कर में थोड़ी व्यस्तता थी, कुछ सिर में दर्द भी था। हमने ठीक है बैठिए, बना देता हूँ विज्ञापन, लेकिन बार बार नहीं बोलना आप, एक बार में इसको फाइनल करना। अरे कहले, आप तो जो बना दोगे आप तो दे दो, मैं तो उनको पहुंचा दूंगा, अरे मेरा माल बहुत बिकेगा, आप विज्ञापन बनाइए। तो फिर मैंने विज्ञापन क्या बनाया, जरा सुनिए, मैंने विज्ञापन बनाया, खुशखबरी खुशखबरी, 90 वर्ष के बुजुर्ग पति पत्नी को, 90 वर्ष के बुजुर्ग पति पत्नी को 1 किलो बिस्कुट बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, बशर्ते कि वे अपने माता पिता के साथ हमारी दुकान में पधारे।
0: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
2: वैराग्य का ये आइटम कि जिसमें एक बहुत ही अच्छा युवक है, संस्कारिक है, और वो एक संत के पास जाता है। संत पहाड़ी पर रहते हैं और बब्बा बजरंग के पुजारी बिल्कुल गृहस्थ आश्रम से दूर। बड़ा उनका ज्ञान उसने लिया और अपने जीवन को धन्य किया। एक दिन वो लड़का गुरुजी से विनम्र भाव से प्रार्थना करता है। क्या कहता है, गुरुजी वो हम आते हैं तो, हाँ हाँ बोलो वत्स, क्या बात है? नहीं, हम आते हैं तो रास्ते में लड़की रहती है तो वो हमको बहुत देखती है, और मतलब कई प्रकार की

0: मतलब बात करती है और हम कहाँ तक सुने गुरु जी। वत्स कदापि नहीं, ऐसा करना ही नहीं। ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये तो माया जाल है, इसमें फंस जाओगे फिर कुछ नहीं कर सकते। एक काम करो, तुम रास्ता बदल दो, दूसरे रास्ते से आया करो। अब साहब वो दूसरे रास्ते से आने लगा, दूसरे रास्ते से कुछ दिन आया, फिर वही शिकायत, गुरु जी उसको इस रास्ते का भी पता हो गया है। अच्छा तुम तीसरे रास्ते से आओ, तीसरे रास्ते से आने लगा, पूरे रास्ते जब बंद हो गए। एक दिन गुरु जी से कहा, गुरु जी अब वो नहीं मान रही और वो मतलब प्रपोज कर रही शादी के लिए। कदापि नहीं, एक बार यदि शादी के मोह जाल में फंस गए तो समझ लो जिंदगी खत्म। वैराग्य का आनंद अलग है, कोई कहां उसमें आनंद है। थोड़े दिन बाद देखा कि वो लड़का कोर्ट मैरिज करके लड़की के साथ गुरुजी के पास पहुंचा, प्रणाम किया, बहू ने भी चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने पूछा कि ये गुरुजी आपकी शिष्या कह लो, बहू कह लो, अब वो माने नहीं और आखिर हमें अब विवाह करना पड़ा। और वैसे भी गुरुजी आजकल शासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर दो जातियों का मिलन हो बहुत अच्छी बात है। और इसमें गुरुजी हमने एक कौड़ी नहीं ली है, मतलब समझ लीजिए आप उस बच्ची के घर में, ये भी एक बहुत खुशी की बात है। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन अब तुमने कर ली है तो चलो ठीक है, आनंद मनाओ। एक चीज अवश्य है जी गुरु जी, अब तुम्हारा यहाँ पर आना स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, तुम गृहस्थ के माया जाल में फंस जाओगे। नहीं गुरु जी, हम तो जैसे रोज आते थे वैसे आएंगे। मानो मेरी बात, मानो मुझे तो दुनिया का अनुभव है ना, मानो। अब साहब वो धीरे धीरे एक दो दिन टालने लगा, फिर 15 दिन में आने लगा, हफ्ते में आने लगा, करते करते वो महीने में आने लगा। करीब कुछ महीनों के बाद वो पहुंचा तो गुरु जी ने कहा, बहुत दिनों में आना हुआ, कहो सब ठीक तो है, कुशल तो है। गुरु जी आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, सब बढ़िया चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार से आनंद है। और मेरी पत्नी कैसी है? गुरु जी बोले, आपकी कृपा से बहुत बढ़िया है, तुम्हें स्नेह करती है, प्रेम करती है। गुरु जी प्रेम? अरे प्रेम तो गुरु जी पल पल पे छलकती है, जान देती हमारे ऊपर। अच्छा इतना स्नेह करती है गुरु जी, इतना स्नेह कह नहीं सकते आपसे, कहो तो जान दे हमारे लिए। अच्छा एक काम करो जी गुरु जी, उसकी परीक्षा ले लो। हाँ परीक्षा में क्या करना क्या होगा, तुम 3 दिन आओ, तो तुम्हें योग सिखाऊंगा, योग भगाए रोग, योग से रोग भी दूर होते हैं, योग से परमात्मा की भी प्राप्ति होती है, योग से ज्ञान भी बढ़ता है, योग से परीक्षा भी होती है। अवश्य गुरु जी। 3 दिन वो आया साहब, गुरु जी ने योग सिखाया और योग में ये सिखाया गुरु जी ने कि आप मरणासन्न हो जाएंगे, यानी मरे जैसे हो जाएंगे, मरेंगे नहीं और लोग समझेंगे मर गए। योग का कमाल है साहब ये, क्योंकि ऋषि मुनि हमारे जो तपस्वी होते थे वो कई कई 6-6 महीने के लिए चले जाते तपस्या में, लोग सोचते थे समाधि ले ली लेकिन फिर भी जिंदा। बात तो गुरु जी ने उसको सिखाया। अब कहा गुरु जी आदेश क्या है, गुरु जी ने कहा एक काम करो, तुम घर जाओ, पत्नी से कहना क्या बनाया, जो खाना बनाया है वो नहीं खाना, दूसरा कुछ बनवाना, और तब तक जब तक वो बनाए तुम लेट जाना, हम आएंगे और फिर रामलीला चालू। ठीक है गुरु जी। अब साहब वो घर गया और पूछा, हाँ क्या बना आज?
1: आज मतलब हमने सोचा कि दलिया बनाए।
0: अरे तुम यार दरिया बनाया तुमने। दरिया रिया नहीं था, मतलब एक काम करो अच्छी चीज बनाओ, सतुआ घोर। अरे सतुआ नहीं घोर, सतुआ दरिया तुम
1: तो आप बताओ का परमल की सब्जी।
0: अरे वो तो मरीजों को खिलाते परमल की सब्जी।
1: आप ही बताओ क्या बना।
0: अरे यार तुम एक काम करो, तुम और कुछ बढ़िया सा आइटम बनाओ ना तुम।
1: एक काम करो आप साबुदाने खिचड़ी।
0: अरे यार तुम एक काम करो, सुनो मेरी बात।
1: हाँ आप कहो तो, आप तो कहो तो क्या खाएंगे हम, वो ही बना दे 56 भोग बना दे, कहो तो आप
0: 56 भोग रहने दो, तुम पूड़ी और खीर बनाओ और आज हम खीर पूड़ी खाएं।
1: दूध तो
0: तुम मंगवा लो दूध, बढ़िया खीर शानदार, आज हमारा बहुत दिल खुश है, अगर आज तुमने खुश कर दिया तो समझ लो तुम जिंदगी भर खुश।
1: कैसी बात कर रहे हैं आप, अब भी बनाते हैं खीर।
0: फौरन दूध दूध उसने अरेंज किया और खीर बनाई, पूड़ी बनाई, खीर बन रही थी, पूड़ी बन रही थी। यहाँ पर ये गांव में मकान था इनका, पर्ची थी, पर्ची में खंभा लगा था और खंभे में पैर फंसा के ये समाधिस्ट हो गए, समाधि में लीन हो गए। वहाँ खीर बनाने में इनकी पत्नी लगी और जैसे ही खीर बनी उसने आवाज लगाई, अरे क्यों चलो आओ खीर बनाई, कोई आवाज नहीं।
1: अरे हमने कहा खीर बन गई, आइए प्लीज जल्दी आइए, खीर बन गई,
0: कोई आवाज नहीं। 3-4 आवाज दी, जब कोई आवाज नहीं, उसने कहा कहीं निकल तो नहीं गए टेल ने, आए देखें, देखा उसने तो ये अपने मरणासन पड़े। उसको उठाया, अरे उठिए उठिए, काहे को उठे, वो तो समाधिस्ट थे। तब उनकी नब्ज देखी और देखा कि

ये तो नहीं रहे, अब क्या करें। उसने विचार किया, महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। उसने विचार किया कि देखो ऐसा है, अगर अभी हम रोते तो सारे गांव मोहल्ले के लोग आ जाएंगे और जो बनी बनाई खीर है पंडित तो उसका दुरुपयोग करेंगे। तो इसके पहले कि पंडित इस खीर का दुरुपयोग करें, अपन इसका सदुपयोग कर क्यों ना कर लें। फौरन वो गई, पंखे में खीर ठंडी करी और बिल्कुल सपाटे से उसने पूरी खीर पोंछ के खाई और गंजिया मांझ के धर दी उसने बिल्कुल, और फिर वहां पर आई और आने के बाद उसने पूरी रामलीला शुरू। मेरे को छोड़ गए, कहां चले गए, मैं इनको कितना प्यार करती थी, कहां चले गए मेरे स्वामी, कहां चले गए। अब ये आवाज साहब सुनी तो सासू माँ ने सुनी और वो चली आई। कहा होगा बेटा, काय के लाने रो रही, कहा होगा ये नहीं रहे, भगवान के पास चले गए। माँ ने देखा बेटा जो है उसकी नब्ज नहीं चल रही। अरे बेटा कहाँ चले गए, अरे राम कहाँ चले गए, बचपन की हम हो गए, भगवान हमें उठा ले तो इन्हें कहा उठा, अरे राम। इतने में दद्दा ने सुना, दद्दा भी आए, अरे कहा होगा, अरे लड़का नहीं रहो।

0: सबने कहा गुरु जी ऐसा कुछ करो कि हम आज जिंदा हो जाए। अब तीनों लोग ने कहा, बहू ने क्या कहा, सास जी ने क्या कहा और अब्बा जी ने क्या कहा, अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें। सुनिए साहब, बहू ने पहले क्या कहा, गुरु जी कैसे करो, हाँ कुछ भी करो गुरु जी, हमारे प्राण ले लो लेकिन इनको जिंदा कर दो गुरु जी, मेरे को बहुत चाहती थी मेरे प्राण ले लो गुरु जी लेकिन इनको जिंदा कर दो। अवश्य अवश्य मैं यत्न करूंगा। दादी अम्मा ने कहा, मतलब बहू की सास ने, अरे गुरु जी, अरे राम, हमारे तो दिन कहे भाई लड़का जलोगो जीवे को का फायदा गुरु जी, अरे राम, अरे अरे गुरु जी, गुरु जी हमारे ले लो, अरे राम परमात्मा लगे तो हमारे प्राण ले लो लेकिन लड़का को, अरे लड़का को जिंदा कर दो गुरु जी, अरे अम्मा की आत्मा तुम्हें कमाल, अरे राम, अरे गुरु जी हमें लगे तो ले लो लड़का जिंदा कर दो गुरु जी। बब्बा ने बोला, अरे गुरु जी दुकरिया को रहन दो, बहू को भी रहन दो, तुम तो हमारे प्राण ले लो, 68 के हो गए, अब तो चला चली की बेरा है, वैसे भी हमारा 2-3 दोस्त चले गए, हमारा नाम बेटिंग में, हमें ले लो गुरु जी, अरे राम, अरे। ये चर्चा चल रही थी। गुरु जी ने कहा, आप लोग ना रोएं, अवश्य बच्चे की जान आ जाएगी, जीवित हो जाएगा, एक काम करें, पवित्र गंगा जल आप बुलवाएं, मैं अभी कुछ प्रयोग करता हूं। गंगा जल साहब बुलवाया गया, मंगवाया गया गंगा जल रखा, गुरु जी ने गंगा जल अपने कमंडल में लिया और कुछ मंत्रोच्चारण किया, और मंत्रोच्चारण करने के पश्चात में उन्होंने उस जल को पीने के लिए पीने योग्य बनाया।
1: ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्यात्या च गायंडकी पूर्ण पूर्ण जलई समुद्र सहिता कुर्यात सदा हरिमंगलम।

अवतरित हो मां, आश्रय दो मां, प्राण दो मां। अब साहब ने ये पढ़ा और पढ़ने के तत्पश्चात लोगों को बड़ी आशा जागी कि अब शायद बच्चा जीवित हो जाएगा। अब गुरु जी ने कहा, देखिए ऐसा है, ये पवित्र गंगा जल जो मंत्रोच्चारित हो चुका है, इसे जो पिएगा उसके प्राण निकल जाएंगे, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा सबसे पहले कि देखिए ऐसा है, सबसे ज्यादा जो प्रेम करता है वो इसको पहले पिए। तो बेटा बहू, तुम तो जान से ज्यादा चाहती थी, तुम पी लो। तो बहू ने कहा, नहीं, वो कैसे पीले, पहले तो सबसे पहले पप्पा जी का नाम मारे। हमारा नाम तो वेटिंग में है। बब्बा जी से कहा कि आप पी लो। बब्बा जी कहा, अरे बेटा हम तो जरूर पी लेते, हमें तो जाने हैं आज नहीं कल, लेकिन अगर हमने पी लो तो जेड कर गया को कान देखे। अरे वो तो बाहर कर दे, रोटी पानी कौन दे है। अरे राम, हम नहीं पी रहे बेटा, गुरु जी हम नहीं पी रहे, हमें माफ करे परमेश्वरी, हम नहीं पी रहे गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि सेकंड अपॉर्चुनिटी दादी जी को दे। दादी से कहा कि आप पी लो, माता जी आप ग्रहण करें जल, अभी आप कह रहे थे कि हमारी जान ईश्वर ले ले लेकिन बच्चा जीवित हो जाए। अरे अरे राम, अरे अरे हम तो पी लेते गुरु जी, लेकिन का बताए, अगर जैसे हमने जल पी लो फिर डोकड़ा को का है। नहीं तो आपके इनके लिए, बब्बा जी के लिए तो बहू है। अरे बहुओं की तो का बात है गुरु जी, हम चल बसे तो वे न्यारी हो जाए, है डुकरा को कौन देखे। हम नहीं पी रहे गुरु जी, हमें नहीं पीने। गुरु जी ने तीसरा ऑप्शन उसकी पत्नी से कहा कि अब दोनों जन नहीं पी रहे इसलिए आप पी लीजिए। तो उसने क्या कहा, गुरु जी मैं नहीं पी सकती। अभी तो तुम कह रही थी कि मैं प्राण दे सकती हूँ, पी सकती हूँ, सब कर सकती हूँ उनके लिए। गुरु जी मैं जरूर पी लेती, लेकिन मेरी मेरी सहेली की एक शर्त लगी थी कि देखो जो भी ये जो जाता है लड़का ना, जो कि ब्रह्मचारी है, उससे जो भी मतलब अपने तरफ मामला पूरा सेट हो जाएगा ना, मैं वो जीत जाऊंगी। तो हमने 10,000 की शर्त दी थी गुरुजी, लेकिन ना मेरी तो शादी हो गई, अगर मैंने गुरुजी पी लिया ना तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन गुरुजी इनको इनके हमारे जैसे कई

0: इतनी खराब नहीं दिखती हूँ, मेरी उम्र ही क्या हुई है। अगर मान लीजिए ये मर गए तो मरे रहने दीजिए, मुझे इनके जैसे कई हीरो मिल जाएंगे। इतनी बात गुरुजी ने सुनी तो फौरन पीछे से एक आवाज आई,
1: कहा गुरुजी?
0: हाँ पुत्र बोलो।
1: तो भाई काले पियो।
0: गुरुजी ने कहा, हाँ पुत्र मैं अवश्य पीलूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, मैं भी थोड़ी देर से पीऊंगा। गुरुजी ने गटगटा के पानी पिया।
1: कहा गुरुजी जिंदा नहीं हो रहा भैया, अब तुम तो जाओ। गुरुजी और कितनी देर जियो यार, जल्दी करो।
0: अब साहब गुरुजी ने कहा, नहीं इसका विधान है, इसको ले जाना पड़ेगा और स्मशान भूमि में एक और संस्कार करेंगे, तब मेरे प्राण निकलेंगे इसके आएंगे। ये जो खंबे में लात इसकी फंसी है, टांग फंसी है, इसको निकालिए ले चले। अब वो साहब टांग इतनी जकड़ गई थी कि खंबे से निकल नहीं रही थी। तो दो ऑप्शन थे, पहला कि खंबा काट दो, और तो दूसरा। तो साहब जब उनने कहा कि दूसरा ऑप्शन, तो उसने पत्नी से कहा उसकी, तो कि अब क्या करें, खंबा काट दें कि? तो उसने कहा, गुरुजी अभी 3,500 रुपये दे के छपवाया है, अगर आपने खंबा काटा तो ये छत घर घर आ जाएगी, पूरी पूरी गिर जाएगी मचान। आप एक काम करो, अब तो जी चले गए हैं आप तो। फौरन साहब उठे और दो तीन अपने हाथ दिए और खूब लड़ो, खूब पिटाई।
1: क्या लगा है तुम तो बहुत चाहते जी जाती
0: नहीं तो ऐसे क्या था? अच्छा तुम तुम्हारी तो बहुत उनने धुनाई की और गुरुजी ने एक ही बात कही।

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
0: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
2: एक बार क्या हुआ, एक चौराहे में एक आदमी खड़ा हो गया, दूसरे आदमी को पीट रहा था। बहुत देर हो गई, घंटा भर हो गया पीटते पीटते, कुछ लोगों से रहा नहीं गया, तो उन्होंने बोला भाई क्या बात है यार, क्यों मार रहे हो इसे, जब से देख रहा हूँ पीटे जा रहे हो पीटे जा रहे हो। अरे समझ में नहीं आता यार, क्या आदमी है यार, इसने मेरे को 2 साल पहले गेंडा कहा था, 2 साल पहले गेंडा कहा था, आज आप इसे पीट रहे हो, क्या बताऊं यार, आज ही चिड़ियाघर में जाके गेंडा देख के आया हूं। ऐसी एक बड़ी प्यारी सी बात, एक पहलवान ज्ञापन के दफ्तर में पहुंचा और जाके सीधे मुख्य संवाददाता को उसने मारना चालू किया। लोग परेशान हो गए, बोले क्या बात हो गई, क्यों भाई क्या बात है पहलवान जी, क्यों मार रहे हो। अरे इस आदमी ने मेरा सारा कचरा कर दिया, मेरी अच्छी खासी अगरबत्ती की फैक्ट्री थी, मैं यहाँ विज्ञापन देने आया, पेपर में इसने पूरा विज्ञापन उलट दिया। बोले क्यों क्या हो गया, क्या हो गया, आप क्या पूछ रहे हैं, देखिए मैंने विज्ञापन दिया था पहलवान छाप अगरबत्ती, और उसने पेपर में छाप दिया अगरबत्ती छाप पहलवान। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के सामने साइकिल चला रहा था, शायद पहली बार साइकिल चला रहा था, चलाते चलाते अचानक क्या किया, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसने एक हाथ छोड़ दिया, और हाथ छोड़ के अपने दोस्त को बोलता है, अरे चिंटू चिंटू देख देख मेरा हाथ गायब, देख देख मेरा हाथ गायब। थोड़े देर बाद उसने क्या किया, दूसरा हाथ भी छोड़ा और बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों हाथ गायब, मेरे दोनों हाथ गायब। उसने फिर क्या किया, पैर भी छोड़ दिए, फिर बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों पैर भी गायब, मेरे दोनों पैर भी गायब। धड़ाम से जाके आगे गिरा, जाके बोला,

0: ना दोनों दांत भी गाया, मेरे दांत भी गाया।
1: हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है बैजनाथ, उनके घर एक दिन में पहुंचा। बैजनाथ ने बोला आओ रजनीकांत जी, आओ बैठो बैठो। तो साहब हम बैठे, चाय आई, कॉफी आई, बड़ा आनंद आ रहा था। यहाँ वहाँ की चर्चाएं हुई, अचानक हमारे मित्र बैजनाथ का लड़का, बड़ा प्यारा सा बच्चा, अपने पिता के पास यानी हमारे मित्र बैजनाथ के पास जाके बोलता है, पापा पापा हम बाहर जाएं पापा। तो उनके पिताजी ने बोला क्यों भाई, क्यों बाहर जाएं? पापा पापा वहाँ बाहर बंदर आया, हमको उसको देखना है। तो बैजनाथ बोलते हैं बेटा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी अंकल जी घर में आए हैं, वो बैठे हैं और तू बंदर देखने बाहर जा रहा है। मैं चला जा रहा था, अचानक रास्ते में क्या देखता हूँ, चार पांच बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से एक जगह पर इकट्ठा हैं। मैं पहुंचा, मैंने देखा, हमने क्यों बेटा क्या हो रहा है? 10 का नोट पड़ा हुआ था जमीन में, चारों पांचों बच्चे बोल रहे थे आपस में कि जो सबसे अच्छा वाला बढ़िया वाला झूठ बोलेगा ना, ये 10 का नोट अंकल जी उसको मिल जाएगा, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं। तो मेरे को लगा, हमने कहा देखो जरा जरा से छोटे छोटे बच्चे ये आपस में ये विचार कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसको 10 रुपए का नोट दिया जाएगा, उसको मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बच्चों को समझाया, देखो बेटा झूठ बोलना बहुत खराब बात है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो एक लड़का बोलता, अंकल जी जीत गए, अंकल जी जीत गए, 10 रुपए अंकल जी को मिल गए। एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर थे, दिमाग के डॉक्टर, उनके पास सुबह सुबह एक मरीज पहुंचा था, उसको कुछ परेशानी थी, क्या परेशानी वो हम सुनते हैं। ये मरीज आया,
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, आजकल वो मतलब मतलब कहने का डॉक्टर साहब,
1: क्या मतलब कहने का, अच्छे से बताइए क्या मतलब, मतलब मतलब क्या है, क्या हो गया आपको?
2: डॉक्टर साहब मेरा मतलब कि मतलब ऐसा कि मतलब डॉक्टर साहब,
1: ओहो हमारे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मतलब क्या मतलब, मतलब इस तरीके से बताइए आपको क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है आपको?
2: डॉक्टर साहब बात यह है कि आजकल मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो चली है, मैं जो भी कहा किया करता हूँ वो सब बिल्कुल तुरंत ही भूल जाया करता हूँ, बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब।
1: ओहो यानी याददाश्त कमजोर हो गई है
2: साहब,
1: जो कहते हैं करते हैं भूल जाते हैं,
2: भूल जाते डॉक्टर साहब, बिल्कुल भूल जाते हैं, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब।
1: एक मिनट एक बात बताइए
2: जी,
1: ये बीमारी आपको कब से है
2: डॉक्टर साहब? कौन सी बीमारी?
1: एक पागल खाने की कहानी सुना रहा हूँ। एक नए डॉक्टर पूरे पागल खाने का मुआयना कर रहे थे, पुराने डॉक्टर साहब उनको सब समझा रहे थे कि कौन पागल कैसा है, किसकी तबीयत कैसी है, कौन क्या है, वगैरह वगैरह। ये नए डॉक्टर हैं और ये पुराने डॉक्टर, सुनते हैं आगे क्या है।
2: डॉक्टर शर्मा ये पागल गंगाराम है, ये लड़की से प्यार करता था,
1: ओहो
2: बेचारा,
1: ओहो
2: शादी करना चाहता था।
1: कौन कौन कौन शादी करना चाहता था?
2: ये गंगाराम नाम का पागल,
1: ये जो पागल है इसका नाम क्या बताया आपने?
2: गंगाराम।
1: अच्छा ये क्या करना चाहता था?
2: ये डॉक्टर साहब एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
2: मगर लड़की ने धोखा दे दिया और ये पागल हो गया।
1: ओहो यानी गंगाराम जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसने उसको धोखा दे दिया और इसको कुछ ऐसा चोट पहुंची दिमाग में तो ये पागल हो गया।
2: पागल।
1: अच्छा चलो आगे चलते हैं।
2: बेचारा
1: ये सामने जो ये जो खड़ा हुआ ये कौन है?
2: वो वाला
1: डॉक्टर
2: साहब वो तो पागल लटोरे लाल है।
1: अच्छा इसका नाम क्या रखा आपने? नहीं इसका नाम क्या है? लटोरे लाल।
2: ये लटोरे लाल।
1: अच्छा अच्छा इनको क्या तकलीफ है, कैसे पागल हो गई है?
2: इसने उसी लड़की से शादी की है जिस लड़की से गंगाराम प्यार करता था। एक फिल्म की शूटिंग की तरफ लिए चल रहा हूँ, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जो हीरो के डायलॉग रहते हैं तो हीरो समय पर स्टूडियो नहीं आता है जिसके कारण डायरेक्टर साहब को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अचानक एक ऐसे आदमी को पकड़ लिया जाता है जो जल्दबाजी में जिसको पकड़ कर लाया जाता है वो आदमी अपना तबीज बेचकर पेट पालने वाला एक मदारी और जमूरी का खेल दिखाने वाला शख्स होता है, उससे वो डायलॉग बता दिया जाता है। वो डायलॉग कुछ इस तरह था कि लैला लैला तेरी लंबी लंबी जुल्फों में हो जाने को जी चाहता है, लैला तेरे मोती जैसे दांत इनके सामने सूरज भी मान पड़ जाता है, लैला तेरी लंबी लंबी जुल्फों में हो जाने को जी चाहता है, डूब जाने को जी चाहता है। लेकिन जैसे ही मदारी को उस डायलॉग को बोलने के लिए शॉट पर लाया जाता है, मदारी पहले जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया वैसा डायलॉग बोलने का प्रयास करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से में।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। भारत कल से केरल के कोच्चि में शुरू होने वाली दो दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान भी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी एवं अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in/results.aspx पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात 10 बजे नॉटिंघम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

नमस्कार साथियों, कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। कैसी हैं आप? बारिश की बूंदों ने कर दी न मन तरोताजा। जरूरी भी है सखियों, मन अच्छा होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। और इन दोनों के साथ ही सखियों, खुद पर भरोसा और अपने दम पर आगे बढ़ने की चाह का होना भी जरूरी है। ये वो गुण है सखियों, जिन पर सफलता की नींव रखी जाती है। गौर फरमाइएगा, खुद पर हो भरोसा तो हर राह आसान हो जाती है। खुद पर हो भरोसा तो हर राह आसान हो जाती है। आत्मनिर्भरता की धूप में हर मुश्किल पिघल जाती है। सखियों, आत्मनिर्भरता का भाव जीवन में सबसे बड़ा संबल है। जी हाँ, आत्मनिर्भर नारी सशक्त समाज का अभिप्राय है महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र होना। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो वे केवल अपने परिवार को ही नहीं सखियों, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की मुख्य धुरी बनती हैं। क्या सोच रही है? यही ना कि जीवन में आत्मनिर्भर होना यानी सशक्त होना बहुत जरूरी है। सही सोच रही है। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योजना की। जी हाँ, हमारी मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का यदि आप लाभ लेना चाहती हैं, तो ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। जी हाँ सखियों, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों की गर्भवती महिलाओं और श्रमिक पत्नियों के लिए संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत सुरक्षित मातृत्व, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए कुल 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सखियों, इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण और उचित पोषण को बढ़ावा देना है। वित्तीय सहायता की बात करें तो सखियों, पहली और दूसरी संतान के समय 16,000 रुपए की राशि दो किश्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सामान्य प्रसूति के समय 4,000 रुपए और संस्थागत प्रसव के बाद 12,000 रुपए। पात्रता मानदंड की बात करें तो सखियों, महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए। महिला या उसके पति का असंगठित कर्मकार मंडल या भवन और अन्य स्वनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक होना अनिवार्य है। सखियों, महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज में श्रमिक पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जो आधार से लिंक हो, गर्भावस्था का मेडिकल प्रमाण पत्र, डॉक्टर की पर्ची और जन्म के बाद शिशु का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके साथ ही सखियों, आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या ई उपार्जन एमपी लेबर डिपार्टमेंट के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से कर सकती हैं। और अब सुन लेते हैं प्यारा प्यारा भीगा भीगा सा एक गीत।

0: गीत हमने सुन लिया सखियों, अब भरते हैं हौसलों की उड़ान।
1: उड़ान खुशियों की, उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की, मेरी उड़ान।
2: सखियों, आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, परिवार नियोजन और सरकारी योजना

0: योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाती हैं, विशेष रूप से स्वयंसेवी के रूप में कार्य करती हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही जिम्मेदार कर्तव्यनिष्ठ आशा कार्यकर्ता इंदु बाला चौहान हमारे साथ हैं श्रृंखला मेरी उड़ान में। आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार इंदु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार।
0: इंदु जी, सर्वप्रथम तो आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएं, कितने घरों को आप कवर करती हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य कड़ी है। आशा कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारियां हैं समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीकाकरण और परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना, गर्भवती महिलाओं का पंजीयन व संस्थागत प्रसव कराना, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना और टीकाकरण में भाग लेना, और समुदाय में ORS के पैकेट वगैरह बांटना, आयरन की गोलियां देना, कंडोम बांटना, ये सब जो है आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य जिम्मेदारियां हैं।
0: बहुत ही अच्छी आपने हमें जानकारी दी इंदु जी, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण में आप कैसे मदद करती हैं?
1: हम आशा कार्यकर्ताएं गर्भवती और बच्चों के टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। हम लोग घर घर जाकर सर्वेक्षण करती हैं और गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनका पंजीयन करवाती हैं, और जो बच्चे हैं जिनको रूटीन टीकाकरण लगना है, जैसे जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को जो टीकाकरण होते हैं, तो इन लोगों का जो है टीकाकरण केंद्र तक लेके जाते हैं हम लोग अपने समुदाय में से, ताकि बच्चों को जो है जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। और गर्भवती महिलाओं को भी टिटनेस का टीका लगना, उनका पंजीयन ऑनलाइन आजकल एंट्री हो गई है मैडम, तो वो सब कुछ हम लोग का जो है जिम्मेदारियां है सब।
0: इंदु जी, हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, और अब बात करते हैं समस्याओं की। फील्ड में काम करते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप बताएं प्लीज।
1: जी हाँ, वैसे तो जो भी काम करते हैं तो शुरुआत में बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। वैसे ही हम आशा कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारी समस्याएं बनी रहती है। जैसे सरकार अगर कोई स्वास्थ्य योजना चलाती है तो लोगों को इसके बारे में समझाना, तो ज्यादा लोग शिक्षित नहीं रहते हैं तो वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो वो हमको मतलब लोगों को समझाना पड़ता है क्या लाभ है इन सब चीजों के और ये योजना क्यों चला रही है सरकार, तो आपको क्या लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम आशा कार्यकर्ता बहुत सारी ऐसी है जिनको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे मैं हूँ तो मुझे तो परिवार की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला है, मेरे हस्बैंड जो है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी ड्यूटी के लिए, लेकिन बहुत सारी आशा बहनें हमारी जिनको परिवार में जो है आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये सब समस्याएं जो है बनी रहती हम लोगों के। लेकिन फिर भी हम लोग को मेन उद्देश्य हमारा क्या है, समाज सेवा है आशा कार्यकर्ता के रूप में, तो हमें बस खुशी मिलती है।
0: क्या बात है इंदु जी, आपने बहुत ही सहज तरीके से अपने मन की बात रखी, और वास्तव में ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप समाज सेवा कर रही हैं। यदि हमारी कोई सखी जो आशा कार्यकर्ता बनना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको किन औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा?
1: वैसे आशा कार्यकर्ता मैं बनी थी तो 12th पास से ही मैंने जो है फॉर्म भरा था। अपने जोन है स्वास्थ्य विभाग का जोन, जैसे अपने इंदौर जिला में 4 मुख्य जोन है, तो जो वार्ड वाइज जो जोन है अपना नंदा नगर जोन लगता हम लोग का, तो वहां जाके मैंने फॉर्म भरा था और फिर मेरा लगभग 6 महीने बाद में ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया था। आपने जैसे अभी पूछा कि अगर कोई बहन अगर हमारी आशा कार्यकर्ता बनना चाहती है, तो उसके लिए जो है मैंने 12th पास से ही मैंने फॉर्म भरा था, मेरी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन अब जो है उसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है हमारी कोई सी भी बहन अगर आशा कार्यकर्ता बनना चाहे तो, और उसका मृदुभाषी होना बहुत जरूरी है। अगर फील्ड में जाएंगे अपनी बात रखना आना चाहिए, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई बात नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए अपना व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए कि सरकारी योजनाओं को हम जो है सही तरीके से लोगों को बता सकें और लोग का लाभ उठा सकें, अपनी बात को उनके मन तक पहुंचा सकें, लोगों को जो है जागरूक कर सकें, ये जज्बा होना चाहिए, तो वो जो है आशा कार्यकर्ता की ड्यूटी कर सकती है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता जरूरी नहीं है कि पेमेंट आया तो ही या पेमेंट के लिए ही नौकरी करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है हम लोग के इसमें, तो बस एक सेवा भाव होना बहुत जरूरी है, सबसे मेन पॉइंट है। और अगर किसी की मदद हो रही है हम आशा कार्यकर्ताओं की वजह से, तो दिल में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने ही अनुभव किया हकीकत में, बहुत बार बहुत खुशी मिलती है हकीकत में।
0: क्या बात है, तो आपके चेहरे से हम देख रहे हैं खुशी झलक।
1: हाँ जी जी, धन्यवाद।
0: इंदु जी, ये बताइए कि सही समय पर सहयोग प्रोत्साहन राशि आपको मिलती है, आप संतुष्ट हैं?
1: हाँ जी मैम, प्रोत्साहन राशि तो मिलती है समय पर, थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन आ जाता है पेमेंट, हम लोग खुश हैं।
0: क्या बात है। अब ये बताइए इंदु जी कि HPV टीका प्रदेश की हमारी 14 वर्षीय बेटियों को लगाने का आग्रह किया जा रहा है, तो इस विषय में भी आप हमारे साथियों को जानकारी दें।
1: हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अभी जो है सरकार ने HPV का टीका निकाला है जो कि 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को लगना है। यह टीका सर्वाइकल कैंसर जैसे जिसे बच्चे

0: रक्तदानी के मुंह का कैंसर भी कहते हैं, तो उससे जो है बचाव के लिए ये टीका है। तो मैं एक आशा कार्यकर्ता के रूप में सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि वे अपने घरों में जो भी 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाएं हैं, उनको ये टीका अवश्य लगवाएं। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल निःशुल्क है टीका, और बालिका का जो है आधार कार्ड साथ में लेके जाएं और इस सरकारी सुविधा का लाभ उठाएं।
1: क्या बात है इंदु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक और सवाल हम आपसे करते हैं कि एक स्वस्थ भारत के निर्माण में आशा कार्यकर्ता की क्या भूमिका है?
0: एक आशा कार्यकर्ता समुदाय में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, जो समर्पण, निस्वार्थ सेवा और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती है। और आशा कार्यकर्ता पहले लोग जो है दूर दराज क्षेत्रों में जाकर, घर घर जाकर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाते हैं, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करती है, जो सामाजिक सेवा और जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने का बहुत बड़ा उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग जो है आशा कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है, और इस तरह से हम लोग एक स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देती हैं।
1: इंदु जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे सखियों को। निश्चित रूप से हमारी बातचीत से लाभ पहुंचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी, आप अपनी फरमाइश का अगर गीत बताएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: हाँ जी, बालिकाओं की बात हो रही है तो मैं चाहूंगी रोजा फिल्म से गाना है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, सुना दे दीजिए।

कि रूप लावण्य में बातें हो रही हैं खुशबू की, जी हाँ इत्र की, परफ्यूम की, जो आपके रूप लावण्य को अनुपम बनाता है। सखियों, इत्र या परफ्यूम का सही इस्तेमाल हमारे व्यक्तित्व और सुंदरता में चार चांद लगा देता है, साथ ही ये हमारे अंदर आत्मविश्वास भी भर देता है और दूसरों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। सखियों, सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए इत्र का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इत्र हमेशा शरीर के उन हिस्सों पर लगाना चाहिए जहाँ रक्त का प्रवाह त्वचा के करीब होता है और थोड़ी गर्माहट रहती है। गर्माहट से सखियों खुशबू प्राकृतिक तरीके से फैलती है। कलाई, गर्दन और कॉलर बोन के साथ कानों के पीछे इत्र जरूर लगाएं। इत्र या परफ्यूम लगाने के बाद उसे कभी भी हाथों से रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सखियों

खुशबू के प्राकृतिक तत्व टूट जाते हैं और उसकी महक बदल जाती है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें सखियों कि इत्र त्वचा पर धीरे धीरे स्प्रे करें या थपथपाकर छोड़ दें। अपनी सुंदरता और खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इत्र लगाने से पहले त्वचा पर कोई अनसेंटेड बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन जरूर लगाएं, क्योंकि इससे इत्र या जो परफ्यूम है उसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहेगी। सखियों, इत्र और परफ्यूम का चयन हमेशा मौसम के अनुसार करें। यदि आप ऐसा करेंगी तो महफिल में आपकी तारीफ में वाह वाह होगी। और चलिए अब गीत सुनकर भी आप वाह वाह कह उठेंगी।

ऐसा क्यों बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो झटपट चीज कॉर्न चाट तैयार कर सकती हैं। ये स्वाद में लाजवाब, पौष्टिक और बनाने में आसान होती है। तो बस झटपट सामग्री नोट कर लें। स्वीट कॉर्न 1 कप उबले हुए, 1 छोटा बारीक कटा प्याज, 1 टमाटर कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और मक्खन सखियो 1 बड़ा चम्मच, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, मसाले स्वादानुसार, नमक आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, चीज कद्दूकस किया हुआ स्वादानुसार और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। और बनाने की विधि तो बहुत आसान है सखियो। जी हाँ, एक पैन में मक्खन गर्म करें, इसमें उबले हुए कॉर्न डालें और 2-3 मिनट तक भुनें। अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो भी हमने काट कर रखा था मिला दें और इसमें अब लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। 1-2 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें। अब ऊपर से नींबू का रस निचोड़ दें और इसे एक सुंदर बाउल में निकालें और ऊपर से कद्दूकस की हुई चीज और हरे धनिया से गार्निश करके गर्मा गर्म परोसे और सबका दिल जीत लें। और चलिए अब हम आपका दिल जीतते हैं और सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गीत हमने सुन लिया सखियों, और अब कर लेते हैं काम की कुछ बातें। बारिश के मौसम में बिजली के उपकरणों और तारों से सुरक्षित रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी हां सखियों, बिजली चमकने पर या भारी बारिश के दौरान टीवी, कंप्यूटर और फ्रिज जैसे कीमती उपकरणों को मेन प्लग से निकाल दें। सीधे मेन लाइन से जुड़े कंप्यूटर का इस्तेमाल कभी न करें। गीले हाथों या नमी वाले हाथों से कभी भी स्विच, सॉकेट या किसी भी उपकरण को न छुएं। जमीन पर या पानी की संभावना वाली जगहों पर एक्सटेंशन कॉर्ड का उपयोग बिल्कुल न करें। अपने घर की अर्थिंग और MCB की जांच किसी प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन से जरूर करवाएं, ताकि करंट का खतरा न रहे। साथ ही सखियों, भारी बिजली के झटकों और वोल्टेज स्पाइक से उपकरणों को बचाने के लिए घर में सर्ज प्रोटेक्टर जरूर लगवाएं। तो सखियों, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो बारिश के मौसम में आप सुरक्षित रहेंगे। अरे, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें बातों बातों में पता ही नहीं चला। चलिए आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। अब दुर्गेश नंदनी को दे अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इसमें आज आप सुनेंगे मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री और साथियों के स्वर में ये निमाणी लोक रचना।

और अब सुनते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में निमाणी लोकगीत मनीषा हरवल्लभ शास्त्री और साथियों के स्वर में।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इसमें पहले सुनिए रत्ना चक्रवर्ती के स्वर में भजन।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे

0: हर भारतीय को समर्पित करता हूं, मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: ये गीत था फिल्म चांदनी से, जिसके लिए आवाज़ थी सुरेश वाडकर, अनुपमा देशपांडे की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था शिव हरि का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: पीपल

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग अदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को अब तक 25 से अधिक देश अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाज चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई के इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने पर खुशी व्यक्त की।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल NS राजासुब्रमण्य सहित सेना और नौसेना प्रमुख भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनका शौर्य सदैव राष्ट्र सेवा की ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए, तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, वे मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढेंचा या सनई की बुआई हरित खाद के रूप में कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण करने और 70% से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का ही उपयोग करने की सलाह दी है। प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊगंज जिले के बिझोली गाँव में एक किराए के मकान में चल रही अवैध सिंथेटिक ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। विंध्य क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,28,00,000 रुपए मूल्य का मादक पदार्थ, रसायन उपकरण और वाहन जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के तार मुंबई, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य शहरों तक जुड़े होने का खुलासा हुआ है। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच एक ट्रिप विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 जुलाई को दिल्ली से रवाना होकर 27 जुलाई को अशोकनगर पहुंचेगी, जबकि वापसी में 30 जुलाई को अशोकनगर से चलकर 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, कैंट, ग्वालियर और झांसी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 24 को

वृक्ष लगाए जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक करीब 7 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से केवल 1% कम है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के निदान वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ने से फंसे 2 पर्यटकों को प्रशासन ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला। शिवपुरी में स्टेट बैंक RCT द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए CCTV और सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन का 13 दिवसीय निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग कैंप 9 जुलाई से शुरू होगा। नर्मदापुरम के इटारसी स्थित तवा नदी पुल की मरम्मत के चलते 16 जुलाई तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मैहर नेशनल हाईवे 30 पर डिगरा गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
2: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
3: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
4: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय

0: प्रयोग खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास, ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन साथियों की। भाटापारा छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र वर्मा। बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित। औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। इन सभी साथियों ने सुना चाहा है फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार आशा भोसले की। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है एसडी बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है तेरे घर के सामने, और इस प्यारे से गीत को आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी ने, और गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है एसडी बर्मन का, और सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोनले, आरती जोनले, अमलेश्वर महादेव घाट छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, और कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख मंसूरी, ये सभी साथी हैं, और ये साथी सुनना चाहते हैं तेरे घर के सामने, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

ये अगली पसंद जो भेजी है हमारे ये साथी हैं सिंहपुर बड़ा से, राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची नेमा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जासमीन, प्रयागराज भट्ट, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, स्वाति माखीजा। आप सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं अनारी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर मुकेश की, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, रितक, ऋतिक, कुणाल, केतन। और ये साथी हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है असली नकली इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदमीका, बलविंदर बिरख, जैतेंग बिरख, मीका बिरख। इन साथियों ने सुनना चाहा है तीन देवियाँ, इस फिल्म का ये गीत जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर किशोर कुमार की, गीतकार है मजरू, संगीत है SD बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत है जीने की राह इस फिल्म से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनना चाहते हैं बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली, मीनू राज श्रीमाली, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा।

अगला गीत है लिया है हमने फिल्म आराधना से, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार लता मंगेशकर की। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नी नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा सोनम बोड़खे और रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, बेबी अर्जू जाजोरिया। तो सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर ये गीत।

0: ये था कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश

के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर रांची के सिमलिया स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक जुटे और केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आपको बता दें आज शाम की सभा में कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं वो प्रसारित होंगे। शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। शाम 5:33, 6:55, रात 8:15 और रात 10:00 सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6:00 सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर सुनिए उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग रजनी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित जगन्नाथ और साथियों द्वारा राग मधु कौंस में शहनाई वादन।

और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा होगा 7:21 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता खरीफ दलहनी फसलों की उन्नत खेती डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक से।

ये थी जानकारी हमारे शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडिया में 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। 3:02 में है हमारी ये सभा, यहीं संपन्न होती है, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है और इस कार्यक्रम में पहले सुनिए मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री और साथियों के स्वर में निमाड़ी लोक रचना।

ये था लोक संगीत का कार्यक्रम और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। पहले सुनिए रत्ना चक्रवर्ती के स्वर में भजन।

सरफरोश फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी कुमार सानू, अलका याग्निक की, गीतकार थे समीर, संगीत था जतिन ललित का।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था जतिन ललित का।

0: मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर एस पी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में, और इसके साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सभी मंत्रालयों से अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। और भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दुर्लभ वन्यजीव सेंडबोआ की तस्करी से जुड़े लगभग 10 वर्ष पुराने मामले में दो आरोपियों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आप सुन रहे थे इस घंटे

0: की खास खबरें।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम शब्द सागर।
2: नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम्। जब शब्द नहीं थे, जब भाषा नहीं थी, जब सभ्यताओं के नाम तक नहीं थे, तब भी एक लय थी, एक स्पंदन, एक कंपन, एक दिव्य गति, और उसी गति से जन्मा था सृष्टि का नृत्य। भारतीय चिंतन कहता है कि यह ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह निरंतर गतिमान है। नक्षत्र घूम रहे हैं, ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, श्वास चल रही है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि स्वयं एक नृत्य है। और इस विराट नृत्य के अधिष्ठाता हैं श्री महादेव नटराज जी। कहा जाता है कि जब नटराज जी ने अपने आनंद तांडव की पूर्णता पर डमरू का निनाद किया, तब वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह सृष्टि की प्रथम अभिव्यक्ति थी, जिससे 14 माहेश्वर सूत अ ई ऊं रिलिक एऊं एऊच हयवरट लण यम गण नम झभय घड़ धश जब गड़ दश खफ छट थ चट तव कपय शशसर हल प्रकट हुए। विचार कीजिए, जिस संस्कृति ने नृत्य को केवल गति का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे ध्वनि, भाषा, व्याकरण और अभिव्यक्ति की उत्पत्ति से जोड़ दिया हो, उस संस्कृति का शास्त्रीय नृत्य स्वाभाविक रूप से सीमाओं में कैसे बंध सकता है? शायद इसी कारण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जन्म किसी रंगमंच पर नहीं हुआ, उसका जन्म चेतना में हुआ। और जो कला चेतना में जन्म लेती है, वह भूगोल की सीमाओं में नहीं रहती। इसीलिए आज जब भारत का शास्त्रीय नृत्य वैश्विक मंच पर पहुंचता है, तो वह केवल घुंघरुओं की ध्वनि नहीं ले जाता, वह अपने साथ सहस्राब्दियों की सांस्कृतिक स्मृति, दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक दृष्टि भी लेकर जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल शरीर की गति नहीं है, यह नृत्य है जहाँ लय और ताल का शुद्ध सौंदर्य प्रकट होता है। यह नृत्य है जहाँ गति भावनाओं से संवाद करती है। और यह नाट्य है जहाँ संपूर्ण जीवन मंच पर जीवंत हो उठता है। इसीलिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि किसी विदेशी दर्शक को संस्कृत का एक भी शब्द न आता हो, यदि उसने कभी रामायण न पढ़ी हो, यदि वह श्री राधा, कृष्ण, शिव या पार्वती के नामों से भी अपरिचित हो, फिर भी यदि किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति के अंत में उसकी आंखें नम हो जाएं, तो यह केवल कला की सफलता नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की वैश्विक विजय है। गीतेन प्रियते देवो, नृत्येन प्रियते जनः, उभाभ्याम प्रियते लोको, धर्म कामार्थ सिद्धये। गीत से देवता प्रसन्न होते हैं, नृत्य से जनमानस प्रसन्न होते हैं, और दोनों मिलकर संपूर्ण लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि लोक मंगल है। और जब कोई कला लोक मंगल से जुड़ जाती है, तब वह समय और भूगोल की सीमाओं से परे चली जाती है। यही भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक सफलता का रहस्य है। उसने कभी अपनी जड़ों को त्याग कर विश्व को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। उसने स्वयं को बदल कर नहीं, स्वयं को समझ कर विश्व का सम्मान प्राप्त किया। और यही किसी भी संस्कृति की

वास्तविक शक्ति होती है। वैश्वीकरण का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, वैश्वीकरण का अर्थ अपनी पहचान को इतना प्रखर बना देना है कि संपूर्ण विश्व उसे समझना चाहे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य ने विश्व को केवल अपनी कला नहीं दिखाई, उसने विश्व को भारतीय दर्शन का परिचय कराया। उसने बताया कि शरीर भी प्रार्थना कर सकता है, मौन भी बोल सकता है, गति भी ध्यान बन सकती है और नृत्य भी मोक्ष का मार्ग हो सकता है। अंततः भारतीय शास्त्रीय नृत्य किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर मात्र नहीं है, यह मानवता की साझा चेतना की धरोहर है। यह उस सत्य का साक्ष्य है कि मनुष्य केवल तर्क से नहीं जीता, वह सौंदर्य, संवेदना और आध्यात्मिकता से भी जीता है। गंगा के तटों पर विकसित कथक से लेकर तमिल भूमि के भरतनाट्यम तक, उड़ीसा की त्रिभंगीमयी ओडिसी से लेकर आंध्र की कुचिपुड़ी तक, केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम से लेकर मणिपुर के कोमल मणिपुरी तथा असम के आध्यात्मिक सत्रिया तक, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रत्येक धारा अपनी क्षेत्रीय विशिष्टता के साथ एक ही सांस्कृतिक महासागर में प्रवाहित होती है और वह महासागर है भारतीयता। जब 20वीं शताब्दी में विश्व तेजी से बदल रहा था, औपनिवेशिक दृष्टिकोण भारत को रहस्य और रोमांच की भूमि के रूप में देखता था, परंतु कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्होंने विश्व को बताया कि भारत केवल रहस्य नहीं, एक परिष्कृत सांस्कृतिक सभ्यता है। इन अग्रदूतों में प्रमुख नाम था श्री उदय शंकर जी का, जिन्होंने पश्चिमी मंचों पर भारतीय नृत्य की आत्मा को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय नृत्य संग्रहालय की वस्तु नहीं है, वह जीवित है तथा विकसित हो सकता है और वह विश्व से संवाद भी कर सकता है। फिर आईं श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी, जिन्होंने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया। उनके प्रयासों से भारतीय नृत्य विश्वविद्यालयों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सांस्कृतिक विमर्श का विषय बना। इसके बाद श्रीमती यामिनी कृष्णमूर्ति जी, श्रीमती मृणालिनी साराबाई जी, श्री बिरजू महाराज जी, श्रीमती सोनल मानसिंह जी, श्री केलुचरण महापात्र जी जैसे महान कलाकारों ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय नृत्य केवल परंपरा नहीं बल्कि उच्च कोटि की कलात्मक बौद्धिकता है। आज विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भारतीय नृत्य पर शोध हो रहे हैं, वैज्ञानिक ताल और गणित के संबंध का अध्ययन कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रस सिद्धांत को मानव भावनाओं की गहनतम व्याख्या मान रहे हैं तथा आध्यात्मिक खोजी नृत्य को ध्यान की एक विधि के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि भारतीय नृत्य में गणित भी है, दर्शन भी है, मनोविज्ञान भी है और आध्यात्मिकता भी है। जब कथक का कलाकार 16 मात्रा के चक्र में घूमता है, जब भरतनाट्यम की रेखाएं ज्यामिति का जीवंत रूप बनती हैं, जब उड़ीसी की त्रिभंगी मानव शरीर को मूर्ति कला में बदल देती है, तब दर्शक केवल नृत्य नहीं देख रहे होते, वह समय, स्थान, शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को देख रहे होते हैं। आनंदादेव खल विमानी भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति भी संविशन्ति। आनंद से ही सब उत्पन्न होते हैं, आनंद से ही जीते हैं और अंततः आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य उसी आनंद की यात्रा है, उसी अनंत लय का स्पर्श है, उसी दिव्य संवाद का माध्यम है जो मानव को मानव से और मानव को परमात्मा से जोड़ता है। आज जब भारतीय शास्त्रीय नृत्य वैश्विक मंच पर अपने चरण रख रहा है, तब वह केवल भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, वह संपूर्ण मानवता को यह स्मरण करा रहा है कि प्रगति और परंपरा विरोध

0: विरोधी नहीं है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता शत्रु नहीं है, और कला, कला वह पुल है जिस पर चलकर संसार एक दूसरे को समझ सकता है। तो आइए इस अनंत परंपरा को प्रणाम करें, उन गुरुओं को प्रणाम करें जिन्होंने इसे जीवित रखा, उन कलाकारों को प्रणाम करें जो इसे विश्व तक ले गए, और उस दिव्य लय को प्रणाम करें जो युगों से सभी प्राणियों को नचा रही है। यतो हस्तस ततो दृष्टिर, यतो दृष्टिस ततो मनः, यतो मनस ततो भावो, यतो भावस ततो रसः। अर्थात जहाँ हाथ जाते हैं वहीं दृष्टि जाती है, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन एकाग्र होता है, जहाँ मन होता है वहीं पवित्र भाव का जन्म होता है, और जहाँ भाव होता है वहीं।
1: कोई बड़ी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। नल के शोर में पहले मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, पर बाद में एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से नल बंद किया। तब अंदाज़ा हुआ कि कोई दरवाज़ा पीट रहा है। क्या बात है, कई घंटों में नहाना बंद करो, गुड़िया आईएस में आ गई है क्या? मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गई। देखा घर में हंगामा था। ओह, तो मैं एक आईएस बेटी की माँ बन गई हूँ। एकाएक कितनी खुशियाँ मेरी झोली में कैसे आ गई। मैंने गुड़िया को खींच कर सीने से लगा लिया, उसका माथा चूम लिया। उसके पापा लगातार फ़ोन लगा लगा कर अपने दोस्तों को खबर दे रहे थे। सारा घर सिमट कर एक कमरे में आ गया था। इस ढेर सारी जश्न भरी खुशी के वातावरण में मुझे उस दिन की बरसती निराश गुड़िया की आंखें याद आ रही थी। हमारे बंगले के एनेक्सी में रहने ट्रेनिंग में दिनेश आया था। नहायत शर्मीला सा सीधा साधा लड़का था वह। सब लोग उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे थे। रसोई में जाकर मैंने दो तीन डिश बनाई। कम से कम पहली बार खाना खा रहा है तो ज़रा ढंग से खा ले। जब वो जाने लगा तो हम लोग बाहर बगीचे तक छोड़ने आए। अचानक मैं अंदर की तरफ वापस उन लोगों की बातें करता छोड़ मुड़ी तो देखा बरामदे में गुड़िया खड़ी थी और दिनेश को देख रही थी। बाहर क्योंकि लाइट नहीं जल रही थी इसलिए उसने मुझे लौटते नहीं देखा। अचानक मुझे पास देख वह हड़बड़ा से गई। मैं भी क्षण भर को सोच में पड़ गई, क्या वास्तव में क्षण भर में कोई अपना लगने लगता है? दिनेश हमारे घर आता जाता था। इधर मैंने महसूस किया था कि गुड़िया अचानक बड़ी हो गई है, उसकी आंखों में बचपने की ठुमक कम हो गई है। अब उसकी जगह लाज के साए उतर आए थे, और जैसा कि मैं बड़ों के मुंह से सुनती आई थी कि लड़की जब सियानी हो जाए तो माँ की नींद उड़ जाती है, अचानक मुझे लगने लगा था गुड़िया अब गुड़िया नहीं रही थी, सियानी हो गई थी। अब मैं बड़ी ही बारीकी से गुड़िया का अध्ययन करने लगी थी। मेरी आंखें सदा उसका पीछा करती। एक सियानी लड़की की माँ होने का एहसास मुझे हर क्षण सताने लगा था। गुड़िया अब ढंग से सजने संवरने लगी थी। घंटों शीशे में अपने को निहारती, घंटों में नहा कर निकलती। दिनेश का हमारे घर आना जाना बढ़ गया। वह कभी किताब के बहाने, कभी कैसेट सुनने के बहाने अक्सर घर में आ जाता। उस दिन टीवी पर कोई फिल्म आने वाली थी। दिनेश, गुड़िया, नीतू सब कमरे में बैठे फिल्म आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी तैयार होकर कमरे में आई। दिनेश ने उठकर मुझे नमस्ते की और मेरी नज़र एकदम से उसके नए स्वेटर पर गई। अरे, तुमने तो बहुत प्यारा स्वेटर पहन रखा है, मैंने कहा। फिर गुड़िया से बोली, देख गुड़िया, उस दिन मैं तेरे पापा के स्वेटर के लिए यही नमूना तो बनाने को कह रही थी। मैंने गुड़िया को देखा, पर उसकी हालत देखकर मुझे लगा मैंने कोई गलत बात कह दी है। मुझे दोनों को देख बड़ी हैरानी हुई, भला मैंने इसे क्या कह दिया। तभी फिल्म शुरू हो गई। सब फिल्म देखने लगे पर मेरा मन फिल्म में नहीं लगा। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और पलंग पर लेट गई। क्या दिनेश का स्वेटर गुड़िया ने बनाया है, पर कब? ढेर सारे प्रश्न मुझे तंग कर रहे थे। सहसा मुझे याद आया, कुछ दिन पहले गुड़िया ने कहा था, मम्मी मुझे एक नए डिज़ाइन का सलवार सूट सिलवाना है, कॉलेज में लड़कियों ने सिलवाया है। मैंने हाँ भर दी तथा उसे पैसे भी दिए थे। कि अपने दोस्त के साथ जाकर पसंद का कपड़ा ले लें। बाद में मैं व्यस्त हो गई और पूछना भूल गई। काफ़ी दिन हो गए, सूट सिलकर नहीं आया। मेरे भी दिमाग से बात निकल गई। एक दिन डिज़ाइन की किताब में स्वेटरों को डिज़ाइन देख रही थी। एक डिज़ाइन पर मेरी नज़र ठहर गई। मुझे डिज़ाइन पसंद आ गया। सोचा इनके लिए नया स्वेटर बना दूँ। देख गुड़िया, तेरे पापा के स्वेटर के लिए डिज़ाइन कैसी रहेगी? अच्छी है मम्मी, कहते हुए गुड़िया ने वह किताब उठा ली। तो गुड़िया ने अपना सूट का कपड़ा नहीं लिया और ऊन ले आई। चुपके चुपके अपने कमरे में स्वेटर बनाती रही। बातें मेरे सामने खुलती जा रही थी, यानी चिड़िया के पंख तैयार हैं, वह अपना नया घोंसला बनाना चाहती है। मैं देखती गुड़िया रात रात भर अपने बिस्तर पर जागती रहती। एक दिन जब मैं उसके लंबे बालों में तेल डाल रही तो मैंने उससे पूछा, गुड़िया दिनेश कैसा लड़का है? पहले तो सकपका गई, जैसे चोरी पकड़ ली गई हो। फिर वो सहज होकर शर्मा गई। तुझे पसंद हो तो बोल, तेरे पापा से बात करूं। मम्मी कहकर उसने मेरी गोद में अपना सर छुपा लिया। एक दिन जब ये दाढ़ी बना रहे थे, मैंने बाथरूम में टावल देते हुए उनसे कहा, क्या आप गुड़िया के लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए? क्या सोचना चाहिए? यही कि वह बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है। ठीक है, देखते हैं, सोच लेंगे। बात को टालते हुए उन्होंने दाढ़ी बनाकर वॉश बेसिन से ब्रश जल्दी से धोया। दिनेश कैसा लड़का रहेगा? मैंने जल्दी से उनके दरवाज़ा बंद करने के पहले अपनी बात कह डाली। क्या? वे जैसे चौंके और शीशे में अपनी शक्ल घुमा घुमा कर निरीक्षण करते रहे, दाढ़ी सही बनी है कि नहीं। मार दिया ना छक्का? उन्होंने पलट कर मुझे हैरानी से देखा। तुम औरतें होती बड़ी तेज हो। सही में मेरा ध्यान तो कभी दिनेश की तरफ गया ही नहीं। IAS लड़का मिल जाए, इससे अच्छा और क्या होगा? बाहर आकर मैं प्रसन्न थी। आखिर एक दिन मैंने नौकर को भेजकर दिनेश को दही बड़ा खाने के बहाने बुला लिया। जब वो आ गया तो दही बड़े की प्लेट उसके सामने रखकर मैंने उससे कई प्रश्न कर डाले। घर में कौन कौन है, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितनी बहनों की शादी हो गई, क्या तुम्हारी शादी तय हो गई? नहीं आंटी, नहीं, कहते वो शर्मा गया। भाई मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि पता है मसूरी से ही लड़कों का हाका शुरू हो जाता है। वहाँ तो सुना है लोग लड़की और गठरी दोनों लिए घूमते हैं, लड़कियों से भी चक्कर चल जाता है। हाँ आंटी, एकदम सही सुना, वो हंसा। हाँ तुम्हारे अंकल कहते हैं जो लड़कियाँ अच्छी रहती हैं उनकी शादी तो साथ के लड़कों से हो जाती है। तुम्हें गुड़िया कैसी लगती है? मैंने अचानक उसके कप में केतली से चाय डालते पूछा। जी, वह जैसे चोरी करते अचानक पकड़ा गया। आंटी आपने मेरी प्रॉब्लम समाप्त कर दी। मैं कितने दिनों से लगातार यही बात सोच रहा था, पर आपसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अच्छा, हम अंतर्यामी जो ठहरे? मैं हंसी। दिनेश खुश खुश घर से गया। मैं सारा दिन खुश थी। बिटिया इतनी जल्दी निपट जाएगी यह तो सोचा ही नहीं था। साथ ही मिसेज वर्मा, मिसेज शर्मा को देखो कितनी परेशान है। शाम को ये ऑफिस से लौटे तो टेलीफोन फाइल देखने के बजाय मुझे खोजने लगे घर में। मुझे तलब करते ही पूछा, भाई क्या हुआ, कुछ दाना पानी चिड़िया को फेंका? चिड़िया? मैं ठुमकी। शेर कहो, शेर को दाना फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपना शिकार खाने खुद ही आता है। रियली? वह अचंभे में पड़ गए। चलो इस बात पर बढ़िया चाय पिलाओ। वह शाम बड़ी अच्छी गुजरी। शादी के बाद की मुझे याद नहीं कि इससे बढ़िया कोई शाम कहीं हो। मैं ढेर ढेर सपने बुनने लगी थी। गुड़िया को दुल्हन बनी देखना, दिनेश को दूल्हा बना, खूब बनने गाए जा रहे हैं, बारात आई है, समधिनों के लिए गालियाँ गाई जा रही हैं, सब दूल्हा दुल्हन को ही देख रहे हैं। हाय कैसी राम सीता की जोड़ी है, भावरे पड़ रही है। हाय ये क्या, मैं क्यों भावर देख रही हूँ? कहते हैं बेटी की भावर और नदी में बाढ़ पर आई भावर को नहीं देखना चाहिए। गुड़िया विदा हो रही है और मेरे गले से झूल कर रो रही है। बंगला जो ढेर ढेर पेड़ों से घिरा था, बाहर की चकचक से दूर उसकी शांति मुझे अच्छी लगती थी। मैं घर का काम निपटा कर यहीं आकर बैठ जाती थी। घंटों गुमसुम बैठी यहाँ की हलचल देखती रहती। अशोक और मौलसिरी की घनी छाया ने वहाँ ठंडक बना रखी थी।

गुड़िया और दिनेश अब खूब फ्री हो गए थे या मैंने उन्हें फ्री कर रखा था। शाम जैसे जैसे होने लगती न जाने कहाँ से ढेर ढेर चिड़िया के झुंड वहाँ आने लगते और अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने लगते। मनुष्य का आतंक हर जगह है पर यहाँ चिड़ियों उसके आतंक ने मनुष्य को भी डरा रखा है। सोचते मुझे हंसी आ गई। गुड़िया और दिनेश मेरे पास आकर बैठ जाते और तब हम तीनों मिलकर भविष्य के सपने बुनते। देखो तुम्हारी पहली पोस्टिंग कहाँ होती है, मैं दिनेश से कहती। शादी पोस्टिंग के पहले ही हो जाए तो ठीक रहेगा, जब तुम वापस मसूरी को जाओगे तो दोनों साथ जा पाओगे। एक दिन जब मैं बैठे बैठे गुड़िया की शादी का प्लान बना रही थी तो गुड़िया का पापा मेरे पास आकर बैठ गए। तुमने दिनेश और गुड़िया को इतनी छूट दे रखी है, क्या ठीक है? क्यों, क्या हुआ, इसमें बुरा क्या है? मान लो ये शादी नहीं हुई तो क्यों नहीं हो पाएगी, मैंने चिढ़ कर कहा। कोई हमारा ज़माना तो है नहीं जब चाहने वालों के लोग दुश्मन हो जाते थे, खुद माँ बाप दुश्मन हो जाते थे। फिर भी अरे घर बैठे IAS लड़का मिल गया, यह क्यों नहीं सोचते? अचानक दिनेश के घर से टेलीग्राम आया कि उसकी माँ बीमार है। दिनेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। दिनेश को परेशान देखकर गुड़िया भी परेशान थी और सारे दिन लगी रहती। माँ बाप को दिखाने के लिए दिनेश ने गुड़िया की कई फ़ोटो रख ली है। गुड़िया के पापा दिनेश को बार बार ताकीद करते रहे कि जाते ही माँ की खबर के फ़ोन करना, फिर मौका लगते ही शादी की बात कर लेना। सब दिनेश को छोड़ने स्टेशन तक गए। ट्रेन छूटी तो हम लोग दिनेश को बुला कर मुड़ गए, पर गुड़िया दूर तक जाती ट्रेन को देखती रही, हाथ हिलाती रही। अपना ही घर जैसे पराया हुआ था, अजीब सा खाली खाली घर कोने कोने में समा गया था। गुड़िया अपने कमरे में पड़ी रहती, कभी खाती कभी नहीं खाती। हम लोग दिनेश का इंतज़ार कर ही रहे थे और सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि पता नहीं उसकी माँ का क्या हाल है। ऐसे संकट से भरे दिनों में अचानक दिनेश की लगभग एक माह बाद चिट्ठी आई। पहले तो सारा घर चिट्ठी के समाचार से खुशी से पागल हो गया, पर जब गुड़िया ने चिट्ठी पढ़ी तो वह लगभग चीख कर सोफे पर बैठ गई। मैंने जल्दी से गुड़िया के हाथ से चिट्ठी ली और पढ़ी तो मेरी तबीयत फिर ख़राब होने लगी। दिनेश ने लिखा था उसकी मम्मी का देहांत हो गया और मरते मरते मम्मी की इच्छा उसे पूरी करनी पड़ी। उनकी बहन की अनाथ लड़की से उसे शादी करनी पड़ी। मम्मी ने तुरंत पंडित को बुलाकर अपने सामने फेरे डलवा दिए। दिनेश ने बहुत बहुत माफ़ी मांगी थी। गुड़िया अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, मैं भी अपने पलंग पर लेट गई। अब दिनेश के बिना इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे भी दफ्तर से बदहवास से भागे आए और आते ही गुड़िया के कमरे की तरफ भागे, पर उसका कमरा अंदर से बंद था। काफ़ी खटखटाने पर भी नहीं खुला तो फिर मेरे पास आकर पलंग पर बैठ गए। इतना दुख करने से कैसे होगा, उन्हें समझाने की गरज से कहा। चुप रहो, मैं चीखी, तुमने भी तो बस लड़कियों के साथ खिलवाड़ी किया है ना, कभी प्रेम किया हो तो समझ दर्द को, तुम तो हर बात में मुझे ही दोष देने लगती हो। वह दुखी हो उठे, आखिर मैं भी तो उसका बाप हूँ ना। उनका इतना बोलना था कि मैं मुंह में रुमाल ठूंस कर फूट फूट कर रो पड़ी। पहले प्रेम की चाहत कितनी होती है, मन को उसको पहले सपने के टूटने का कितना दर्द होता है। इंसान जिंदगी भर के लिए कमज़ोर हो जाता है, यह बात मैं जानती थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास चुप सी खड़ी बगीचे की हलचल देख रही थी। जिस दिन से दिनेश की चिट्ठी आई थी मैं गुड़िया से बोली नहीं थी। जाना एकाएक कहाँ से मुझ में हिम्मत आ गई। बाथरूम में जाके मुँह हाथ धोया, अलमारी से निकाल कर बढ़िया से साड़ी पहनी, बालों को खोल कर जूड़ा बनाया, यानी अपने को हर तरह से दुरुस्त किया। कमरा खोला तो देखा वह मनहूस सूरत बनाए छत को एकटक देख रही थी। उसे देख कर मेरा मन फिर भावुक होने लगा। अपने को संभाला और उसे पुकारा, गुड़िया। मेरी आवाज़ पर वो जैसे डाल के तोड़े हुए फूल की तरह मेरी गोद में तड़प कर गिर गई। मम्मी अब मैं क्या करूँ, मेरी गोद में चिपकी हुमक हुमक कर रो रही थी। गुड़िया, दिनेश की इस बुजदली का यही तमाचा भरा जवाब होगा कि अब तुम खुद IAS बनकर दिखाओ। जो व्यक्ति खुद स्वावलंबी होगा वही दुनिया का अच्छा आनंद प्राप्त कर सकता है। छोटी छोटी विपत्तियां तो हमेशा इंसान को कमज़ोर कर देती है, इनसे परे हो जाओ, अपने को

0: ठोस बना लो। क्या सच? गुड़िया ने चौंक कर मेरी ओर मुंह उठाया। मैं क्या आईएएस बन सकती हूँ माँ? उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू भरे थे, इसके बावजूद उनमें चमक थी। हाँ क्यों नहीं, मैंने उसमें आत्मविश्वास भर दिया। गुड़िया की भीगी आंखों में नई राहत, नई चमक तैर गई और उसकी आंसू भरी आंखें मुस्कुरा उठी थी।
1: शब्द सागर में अभी आप सुन रहे थे कहानी क्यों नहीं। कहानीकार थी मेहरुन्निसा परवेज। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
2: राम ये नाम इस महादेश की चेतना में रचा बसा है। प्रभु श्री राम की कथा रामायण हम सब ने सुनी या पढ़ी है, और उस कथा को हम सबको दिखाने वाले थे श्री रामानंद सागर जी।
3: मंगल पावन सरस सुहावन।
2: लगभग 36 साल के बाद रामानंद सागर का परिवार फिर लेकर आ रहा है एक अद्भुत राम कथा काकभूषणी रामायण।
3: दुविधा शंका दोष मिटाती।
2: उनकी अनसुनी कथाएं जिसके सूत्रधार राम भक्त सिद्ध काकभूषणी स्वयं है। काकभूषणी को तो जानते होंगे आप लोग। जी हाँ, ये श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जिन्होंने अब तक अनेकों युगों में 14 बार राम

अमर है, अजर अमर है, अजर अमर है। राम रसायन और भक्ति के रस में डूबने के लिए आप सब तैयार हो जाइए और इस रामायण को भी वैसे ही प्रेम दीजिए जैसे आपने रामानंद सागर जी की रामायण को दिया था। जय श्री राम।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए आप सुनते हैं संग्रहालय से इस कार्यक्रम में हंसना मना है इस धारावाहिक की छठवीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: एक संस्था ने एक सेठ जी के सम्मान करने का विचार अपने मन में लिया। सब पांच लोग के दरवाजे पहुंच गए। सेठ जी बड़े पैसे वाले थे, सम्मानी व्यक्ति थे, लेकिन उनका सम्मान भी हुआ नहीं। आज तक किसी ने उनको माला नहीं पहनाई थी। खैर, ये संस्था वाले पहुंच गए और सेठ जी से कहा, सेठ जी ऐसा है कि हमने कई बार आपसे चंदा मांगा, 50 मांगा, 100 मांगा, 200 मांगा, और आपने बड़े प्रेम से हमको दे दिया। इसके लिए आप हमारा धन्यवाद स्वीकार करें और इस बार हम चाहते हैं कि आपका सम्मान किया जाए, है ना। तो चंदा तो खैर आप देंगे, लेकिन थोड़ा इस बार चंदा आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान में करीब करीब 150 मालाएं हम आपको पहनाएंगे। उसमें बड़ी मालाएं, छोटी मालाएं, अरे आपको तो इतनी माला पहनाई जाएगी सेठ जी कि आपका सिर्फ छोड़ा थोड़ा सा मुंह भर दिखेगा। हाँ, इतनी माला है। अरे सेठ जी बड़े ग्लैड, उन्हें 150 माला का पैसा दे दिया और ऊपर से और भी बहुत सारा चंदा उंदा दे दिया। ठीक है साहब, अनाउंसमेंट हो गया, 27 तारीख को रामलीला मैदान में फलाने फलाने सेठ जी का नगर सम्मान किया जाएगा। चलो साहब, पहुंच गए सब लोग, तालियां बजी, मालाएं पहनाई गई और ये हुआ वो हुआ, सब जो कुछ होना था। लेकिन क्या देखा गया, जो फोटोग्राफर फोटो खींच रहे थे वो सेठ जी के चेहरे को बार बार पढ़ रहे थे। तो चेहरे को पढ़ के एक फोटोग्राफर उनके पास जाता है और कहता है, क्यों सेठ जी, एक बात बताइए, आपका इतना सम्मान हो रहा है, आप तो बड़े खुश होंगे। तो सेठ जी बोलते, क्या खाक खुश होंगे हैं? अरे इन लोगों ने मुझे 150 मालाएं पहनाने का वादा करके पूरा 150 माला का पैसा लिया था मुझसे, लेकिन अभी तक, और क्या, आप तो बिल्कुल हो गई बात खत्म, सिर्फ 35 मालाएं पहनाई हैं। रेडियो से विज्ञापन, टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं, क्यों दुकानदार देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके, उनका नाम हो, पैसे ज्यादा मिले उनको। वैसे भी आजकल रेडियो गांव गांव तक सुना जाता है, यहाँ से सैकड़ों हजारों मील तक लोग रेडियो को बड़े प्यार से पूरी मोहब्बत से सुनते हैं। और विज्ञापन जब गाँव गाँव पहुंचेगा तो स्वाभाविक भाई सामान तो बिकेगा, दुकानदार का नाम, व्यापार का नाम, सब कुछ। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक श्रीमान जी हमारे घर पहुंचे और मुझसे कहने लगे, भाई साहब ऐसा है कि अभी मैंने रेडियो में विज्ञापन सुना, टेलीविजन पे दूरदर्शन वाले भी विज्ञापन देते हैं कि साहब ये सामान खरीदो तो वो फ्री मिलेगा, ये खरीदो तो वो फ्री मिलेगा। तो साहब ऐसा कुछ ऐसा विज्ञापन आप हमारे लिए भी बना दें तो हम भी रेडियो से दे देंगे, टेलीविजन की भी कोशिश करेंगे। तो मेरा तो साहब उस समय बड़ा दिमाग खराब था, प्रोग्राम वगैरह के चक्कर में थोड़ी व्यस्तता थी, कुछ सिर में दर्द भी था। हमने ठीक है बैठिए, बना देता हूँ विज्ञापन, लेकिन बार बार नहीं बोलना आप, एक बार में इसको फाइनल करना। अरे कहले, आप तो जो बना दोगे आप तो दे दो, मैं तो उनको पहुँचा दूंगा, अरे मेरा माल बहुत बिकेगा, आप विज्ञापन बनाइए। तो फिर मैंने विज्ञापन क्या बनाया, जरा सुनिए। मैंने विज्ञापन बनाया, खुशखबरी, खुशखबरी, 90 वर्ष के बुजुर्ग पति पत्नी को, 90 वर्ष के बुजुर्ग पति पत्नी को 1 किलो बिस्कुट बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, बशर्ते कि वे अपने माता पिता के साथ हमारी दुकान में पधारे।
2: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं।
0: अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
3: वैराग्य का ये आइटम कि जिसमें एक बहुत ही अच्छा युवक है, संस्कारिक है, और वो एक संत के पास जाता है। संत पहाड़ी पर रहते हैं और बब्बा बजरंग के पुजारी

0: बिल्कुल गृहस्थ आश्रम से दूर। बड़ा उनका ज्ञान उसने लिया और अपने जीवन को धन्य किया। एक दिन वो लड़का गुरुजी से विनम्र भाव से प्रार्थना करता है और क्या कहता है, गुरुजी वो हम आते हैं तो, हाँ बोलो वत्स, क्या बात है? नहीं हम आते हैं तो रास्ते में एक लड़की रहती है तो वो हमको बहुत देखती है और मतलब कई प्रकार की मतलब बातें करती है और हम कहाँ तक सुने गुरुजी। वत्स कदापि नहीं, ऐसा करना ही नहीं, ये जो गृहस्थ आश्रम है ना ये तो माया जाल है, इसमें फंस जाओगे फिर कुछ नहीं कर सकते। एक काम करो तुम रास्ता बदल दो, दूसरे रास्ते से आया करो। अब साहब वो दूसरे रास्ते से आने लगा, दूसरे रास्ते से कुछ दिन आया, फिर वही शिकायत, गुरुजी उसको इस रास्ते का भी पता हो गया है। अच्छा तुम तीसरे रास्ते से आओ, तीसरे रास्ते से आने लगा, पूरे रास्ते जब बंद हो गए। एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी अब वो नहीं मान रही और वो मतलब प्रपोज कर रही शादी के लिए, कदापि नहीं, एक बार यदि शादी के मोह जाल में फंस गए तो समझ लो जिंदगी खत्म, वैराग्य का आनंद अलग है, कोई कहाँ उसमें आनंद है। थोड़े दिन बाद देखा कि वो लड़का कोर्ट मैरिज करके लड़की के साथ गुरुजी के पास पहुंचा, प्रणाम किया, बहू ने भी चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने पूछा कि ये गुरुजी आपकी शिष्या कह लो बहू कह लो, अब वो माने नहीं और आखिर हमें अब विवाह करना पड़ा। और वैसे भी गुरुजी आजकल शासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर दो जातियों का मिलन हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें गुरुजी हमने एक कौड़ी नहीं ली है, मतलब समझ लीजिए आप उस बच्ची के घर में ये भी एक बहुत खुशी की बात है। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन अब तुमने कर ली है तो चलो ठीक है, आनंद मनाओ, पर एक चीज अवश्य है। जी गुरुजी, अब तुम्हारा यहाँ पर आना स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, तुम गृहस्थ के माया जाल में फंस जाओगे। नहीं गुरुजी, हम तो जैसे रोज आते थे वैसे आएंगे। मानो मेरी बात, मानो मुझे तो दुनिया का अनुभव है ना, मानो। अब साहब वो धीरे धीरे एक दो दिन टालने लगा, फिर 15 दिन में आने लगा, हफ्ते में आने लगा, करते करते वो महीने में आने लगा। करीब कुछ महीनों के बाद वो पहुंचा तो गुरुजी ने कहा, बहुत दिनों में आना हुआ, कहो सब ठीक तो है, कुशल तो है? गुरुजी आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, सब बढ़िया चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार से आनंद है। और तुम्हारी पत्नी कैसी है? गुरुजी वो भी आपकी कृपा से बहुत बढ़िया है। तुम्हें स्नेह करती है, प्रेम करती है? गुरुजी प्रेम? अरे प्रेम तो गुरुजी पल पल पे छलकती है, जान देती हमारे ऊपर। अच्छा इतना स्नेह करती? अरे गुरुजी इतना स्नेह कि हम कह नहीं सकते आपसे, कहो तो जान दे दे हमारे लिए। अच्छा एक काम करो। जी गुरुजी, उसकी परीक्षा ले लो। हाँ गुरुजी, परीक्षा ले लो, क्या करना क्या होगा? तुम 3 दिन आओ, मैं तुम्हें योग सिखाऊंगा, योग भगाए रोग, योग से रोग भी दूर होते हैं, योग से परमात्मा की भी प्राप्ति होती है, योग से ज्ञान भी बढ़ता है, योग से परीक्षा भी होती है। अवश्य गुरुजी। 3 दिन वो आया साहब, गुरुजी ने योग सिखाया और योग में ये सिखाया गुरुजी ने कि आप मरणासन्न हो जाएंगे, यानी मरे जैसे हो जाएंगे, मरेंगे नहीं और लोग समझेंगे मर गए। योग का कमाल है साहब ये, क्योंकि ऋषि मुनि हमारे जो तपस्वी होते थे वो कई कई 6-6 महीने के लिए चले जाते तपस्या में, लोग सोचते थे समाधि ले ली लेकिन फिर जिंदा, ये बात। तो गुरुजी ने उसको सिखाया। अब कहा, गुरुजी आदेश क्या है? गुरुजी ने कहा, एक काम करो तुम घर जाओ, पत्नी से कहना क्या बनाया, जो खाना बनाया वो नहीं खाना, दूसरा कुछ बनवाना, और तब तक जब तक बनाए तुम लेट जाना, हम आएंगे और फिर रामलीला चालू। ठीक है गुरुजी। अब साहब वो घर गया और पूछा, हाँ क्या बना आज?
1: आज मतलब हमने सोचा कि दलिया बनाए।
0: अरे तुम यार दलिया बनाया तुमने? दलिया नहीं था मतलब,

हाँ भाई बताओ क्या बना। अरे यार तुम एक काम करो, तुम और कुछ बढ़िया सा आइटम बनाओ ना। तुम एक काम करो, आप साबूदाने खिचड़ी। अरे यार तुम एक काम करो, सुनो मेरी बात। हाँ आप कहो तो, आप तो कहो तो क्या खाएंगे हम, वही बना दे, छप्पन भोग बना दे। कहो तो आप, छप्पन अपन भोग रहने दो, तुम पूड़ी और खीर बनाओ, और आज हम खीर पूड़ी खाएं। दूध तो है, तुम बाजार से मंगवा लो दूध, मेवा वेवा मंगवा लो, बढ़िया खीर बनाओ शानदार। आज हमारा बहुत दिल खुश है, अगर आज तुमने खुश कर दिया तो समझ लो तुम जिंदगी भर खुश। क्या सी बात कर रहे हैं आप, अब भी बनाते हैं खीर। फौरन दूध दूध उसने अरेंज किया और खीर बनाई, पूड़ी बनाई। खीर बन रही थी, पूड़ी बन रही थी, यहाँ पर ये गांव में मकान था इनका, परछी थी, परछी में खंबा लगा था और खंबे में पैर फंसा के ये समाधिस्ट हो गए, समाधि में लीन हो गए। वहाँ खीर बनाने में इनकी पत्नी लगी, और जैसे ही खीर बनी उसने आवाज लगाई, अरे क्यों भाई चलो आओ खीर बन गई। कोई आवाज नहीं, अरे हमने कहा खीर बन गई, आइए प्लीज जल्दी आइए खीर बन गई। कोई आवाज नहीं, तीन चार आवाजें दी, जब कोई आवाज नहीं, उसने कहा कहीं निकल तो नहीं गए टेल ने। आए देखें, देखा उसने तो ये अपने मरणासन्न पड़े। उसको उठाया, अरे उठिए उठिए। काय को उठे, वो तो समाधिस्ट थे। तब उनकी नब्ज देखी और देखा कि ये तो नहीं रहे, अब क्या करें। उसने विचार किया, महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं, उसने विचार किया कि देखो ऐसा है, अगर अभी हम रोते तो सारे गांव मोहल्ले के लोग आ जाएंगे और जो बनी बनाई खीर है पंडित तो उसका दुरुपयोग करेंगे तो इसके पहले कि पंडित इस खीर का दुरुपयोग करें, अपन इसका सदुपयोग कर क्यों ना कर लें। फौरन वो गई, पंखे में खीर ठंडी करी और बिल्कुल सपाटे से उसने पूरी खीर पोंच के खाई और गंजा मांझ के धर दी उसने बिल्कुल, और फिर वहां पर आई, और आने के बाद उसने पूरी रामलीला शुरू। मेरे को छोड़ गए, कहाँ चले गए, मैं कितना प्यार करती थी, कहाँ चले गए मेरे स्वामी, कहाँ चले गए। अब ये आवाज साहब सुनी तो सासू माँ ने सुनी और वो चली आई। का होगा बेटा, काय के लाने रो रही, का होगा, ये नहीं रहे, भगवान के पास चले गए। माँ ने देखा बेटा जो है उसकी नब्ज नहीं चल रही। अरे बेटा कहाँ चले गए, अरे राम कहाँ चले गए, पचपन की हम हो गए, भगवान हमें उठा ले तो इन्हें कहाँ उठा रे राम। इतने में दद्दा ने सुना, दद्दा भी आए, अरे कहाँ हो गए, अरे लड़का नहीं रहो। दद्दा भी बोले, अरे 68 के हम हो गए, रिटायरमेंट हो गए, पेंशन ही तो खा रहे, अरे राम परमात्मा हमें उठा ले तो एक लड़का काय को उठा लो रे भगवान। गली मोहल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठे हो गए, और तभी गुरुजी पीछे से आए। जैसे गुरुजी आए रोना पिटना मचा हुआ, गुरुजी को देखकर लोगों की ढढ़ास बंधी, शांत हुए। गुरुजी ने आकर वहां पूछा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। सभी ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। गुरुजी ने कहा कि अवश्य कुछ अच्छा होगा, मैं आ गया हूँ। तो सबने कहा गुरुजी ऐसा कुछ करो कि जी हमारा जिंदा हो जाए। अब तीनों लोग ने कहा, बहू ने क्या कहा, सास जी ने क्या कहा और बब्बा जी ने क्या कहा, अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें। सुनिए साहब, बहू ने पहले क्या कहा, गुरु जी कैसे करो, हाँ कुछ भी करो गुरु जी, हमारे प्राण ले लो, लेकिन इनको जिंदा कर लो गुरु जी, मेरे को बहुत चाहती थी मेरे प्राण ले लो गुरु जी, लेकिन इनको जिंदा कर लो। अवश्य अवश्य मैं यत्न करूंगा। दादी अम्मा ने कहा, मतलब बहू की सास ने, अरे गुरु जी, अरे राम हमारे तो दिन कहे भाई, लड़का जलो गो जीवे को का फायदा गुरु जी, अरे राम, अरे अरे गुरु जी, गुरु जी हमारे ले लो, अरे राम परमात्मा लगे तो हमारे प्राण ले लो, लेकिन लड़का को, अरे लड़का को जिंदा कर दो गुरु जी, अरे अम्मा की आत्मा तो मैं मालूम, अरे राम, अरे गुरु जी हमें लगे तो ले लो, लड़का जिंदा कर दो गुरु जी। बब्बा ने बोला, अरे गुरु जी दुकरिया को रहन दो, बहू को भी रहन दो, तुम तो हमारे प्राण ले लो, 68 के हो गए, अब तो चला चली की बेला है, वैसे भी हमारे दो तीन दोस्त चले गए, हमारा नाम बेटिंग में, हमें ले लो गुरु जी, अरे राम, अरे। ये चर्चा चल रही थी। गुरु जी ने कहा, आप लोग ना रोएं, अवश्य बच्चे की जान आ जाएगी, जीवित हो जाएगा। एक काम करें, पवित्र गंगा जल आप बुलवाएं, मैं अभी कुछ प्रयोग करता हूं। गंगा जल साहब बुलवाया गया, मंगवाया गया गंगा जल रखा। गुरुजी ने गंगा जल अपने कमंडल में

0: और कुछ मंत्रोच्चारण किया, और मंत्रोच्चारण करने के पश्चात में उन्होंने उस जल को पीने के लिए पीने योग्य बनाया।
1: ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्यात्या च गायंडकी पूर्ण पूर्ण जलै समुद्र सहिता कुर्यात् सदा हरिमंगलम्।

इस बच्ची का कल्याण करो, अवतरित हो माँ, आश्रय दो माँ, प्राण दो माँ। अब साहब उन्होंने ये पढ़ा और पढ़ने के तत्पश्चात लोगों को बड़ी आशा जागी कि अब शायद बच्चा जीवित हो जाएगा। अब गुरु जी ने कहा, देखिए ऐसा है, ये पवित्र गंगा जल जो मंत्रोच्चारित हो चुका है, इसे जो पिएगा उसके प्राण निकल जाएंगे, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा सबसे पहले कि देखिए ऐसा है, सबसे ज़्यादा जो प्रेम करता है वो इसको पहले

0: पी लो। बब्बन जी कहा, अरे बेटा हम तो जरूर पी लेते, हमें तो जाने हैं आज नहीं कल, लेकिन अगर हमने पी लो तो जेड करिया को कान देखे। अरे वो तो बाहर कर दे, रोटी पानी कौन दे है। अरे राम हम नहीं पी रहे बेटा, गुरु जी हम नहीं पी रहे, हमें माफ करे परमेश्वरी, हम नहीं पी रहे गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि सेकंड अपॉर्चुनिटी दादी जी को दे, दादी से कहा कि आप पी लो, माता जी आप ग्रहण करें जल, अभी आप कह रहे थे कि हमारी जान ईश्वर ले ले लेकिन बच्चा जीवित हो जाए। अरे अरे राम, अरे अरे हम तो पी लेते गुरु जी, लेकिन का बताए अगर जैसे हमने जल पी लो फिर डोकड़ा को का है। नहीं तो आपके इनके लिए बब्बा जी के लिए तो बहू है। अरे बहुओं की तो का बात है गुरु जी, हम चल बसे तो वे न्यारी हो जाए, है डुकरा को कौन देखे। हम नहीं पी रहे गुरु जी, हमें नहीं पीने। गुरु जी ने तीसरा ऑप्शन उसकी पत्नी से कहा कि अब दोनों जन नहीं पी रहे इसलिए आप पी लीजिए। तो उसने क्या कहा,
1: गुरु जी मैं नहीं पी सकती।
0: क्यों, अभी तो तुम कह रही थी कि मैं प्राण दे सकती हूँ, पी सकती हूँ, सब कर सकती हूँ उनके लिए।
1: गुरु जी मैं जरूर पी लेती, लेकिन मेरी और मेरी सहेली की एक शर्त लगी थी कि देखो जो भी ये जो जाता है लड़का ना, जो कि ब्रह्मचारी है, उससे जो भी मतलब अपने तरफ मामला पूरा सेट हो जाएगा ना, मैं वो जीत जाऊंगी, तो हमने 10,000 की शर्त दी थी गुरुजी। लेकिन ना मेरी तो शादी हो गई, अगर मैंने गुरुजी पी लिया ना तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन गुरु जी इनको इनके हमारे जैसी कई हीरो मिल जाएंगे। और वैसे भी गुरु जी मैं इतनी खराब नहीं दिखती हूँ, मेरी उम्र ही क्या हुई है, अगर मान लीजिए ये मर गए तो मरे रहने दीजिए, मुझे इनके जैसे कई हीरो मिल जाएंगे।
0: इतनी बात गुरु जी ने सुनी तो फौरन पीछे से आवाज आई,
2: कहा गुरु जी।
0: हाँ पुत्र बोलो।
2: तो भाई काहे नहीं पियो।
0: गुरु जी ने कहा, हाँ पुत्र मैं अवश्य पी लूंगा, लेकिन यहां नहीं, मैं भी थोड़ी देर से पीऊंगा। गुरु जी ने गटगटा के पानी पिया,
2: कहा गुरु जी जिंदा नहीं हो रहा भैया, अब तुम तो जाऊंगा। गुरु जी और कितनी देर जियो यार, जल्दी करो।
0: अब साहब गुरु जी ने कहा, नहीं इसका विधान है, इसको ले जाना पड़ेगा और स्मशान भूमि में एक और संस्कार करेंगे, तब मेरे प्राण निकलेंगे इसके आएंगे, ये जो खंबे में लात इसकी फंसी है, टांग फंसी है, इसको निकालिए ले चले। अब वो साहब टांग इतनी जकड़ गई थी कि खंबे से निकल नहीं रही थी। तो दो ऑप्शन थे, पहला कि खंबा काट दूं और नहीं तो दूसरा। तो साहब जब उनने कहा कि दूसरा ऑप्शन, तो उसने पत्नी से कहा उसकी, तो कि अब क्या करें, खंबा काट दें कि। उसने कहा, गुरुजी अभी 3,500 रुपये दे के छपवाया है, अगर आपने खंबा काटा तो छत घर घर आ जाएगी, पूरी गिर जाएगी मचान। आप एक काम करो, अब तो जी चले ही गए हैं, अब आप तो
3: फौरन साहब उठे और दो तीन अपने हाथ दिए और खूब लट खूब पिटाई,
2: कह लगाए तुम तो बोल रहे थे बहुत चाहते जी जाती
3: नहीं, तो ऐसे क्या अच्छा तुम तुम्हारी तो बहुत। उनने धुनाई की
0: और गुरुजी ने एक ही बात कही।

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
0: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
2: एक बार क्या हुआ, एक चौराहे में

0: एक आदमी खड़ा हो गया, दूसरे आदमी को पीट रहा था। बहुत देर हो गई, घंटा भर हो गया पीटते पीटते, कुछ लोगों से रहा नहीं गया। तो उन्होंने बोला, भाई बात है यार, क्यों मार रहे हो इसे, जब से देख रहा हूँ पीटे जा रहे हो पीटे जा रहे हो। अरे समझ में नहीं आता यार, क्या आदमी है यार, इसने मेरे को 2 साल पहले गेंडा कहा था, 2 साल पहले गेंडा कहा था, और आज आप इसे पीट रहे हो। क्या बताऊं यार, आज ही चिड़ियाघर में जाके गेंडा देख के आया हूं। ऐसी एक बड़ी प्यारी सी बात, एक पहलवान विज्ञापन के दफ्तर में पहुंचा और जाके सीधे मुख्य संवाददाता को उसने मारना चालू किया। लोग परेशान हो गए, बोले क्या बात हो गई, क्यों भाई क्या बात है पहलवान जी, क्यों मार रहे हो। अरे इस आदमी ने मेरा सारा कचरा कर दिया, मेरी अच्छी खासी अगरबत्ती की फैक्ट्री थी, मैं यहाँ विज्ञापन देने आया पेपर में, इसने पूरा विज्ञापन उलट दिया। बोले क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया, आप क्या पूछ रहे हैं। देखिए मैंने विज्ञापन दिया था, पहलवान छाप अगरबत्ती, और उसने पेपर में छाप दिया, अगरबत्ती छाप पहलवान। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के सामने साइकिल चला रहा था, शायद पहली बार साइकिल चला रहा था। चलाते चलाते अचानक क्या किया, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसने एक हाथ छोड़ दिया, और हाथ छोड़ के अपने दोस्त को बोलता है, अरे चिंटू चिंटू देख देख मेरा हाथ गायब, देख देख मेरा हाथ गायब। थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, दूसरा हाथ भी छोड़ा और बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों हाथ गायब, मेरे दोनों हाथ गायब। उसने फिर क्या किया, पैर भी छोड़ दिए, फिर बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों पैर भी गायब, मेरे दोनों पैर भी गायब। धड़ाम से जाके आगे गिरा, खिसिया के बोला, मेरे ना दोनों दांत भी गायब, मेरे दांत भी गायब।
1: हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है बैजनाथ, उनके घर एक दिन में पहुंचा। बैजनाथ ने बोला, आओ रजनीकांत जी आओ बैठो बैठो। तो साहब हम बैठे, चाय आई कॉफी आई, बड़ा आनंद आ रहा था, यहाँ वहाँ की चर्चाएं हुई। अचानक हमारे मित्र बैजनाथ का लड़का, बड़ा प्यारा सा बच्चा, अपने पिता के पास यानी हमारे मित्र बैजनाथ के पास जाके बोलता है, पप्पा पप्पा हम बाहर जाएं पप्पा। तो उनके पिताजी ने बोला, क्यों भाई क्यों बाहर जाएं। पप्पा पप्पा हम बाहर बंदर आया, हमको उसको देखना है। तो बैजनाथ बोलते हैं, बेटा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी अंकल जी घर में आए हैं, वो बैठे हैं, और तू बंदर देखने बाहर जा रहा है। मैं चला जा रहा था, अचानक रास्ते में क्या देखता हूँ, 4-5 बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से एक जगह पर इकट्ठा हैं। मैं पहुंचा, मैंने देखा, हमने क्यों बेटा क्या हो रहा है, 10 का नोट पड़ा हुआ था जमीन में। चारों पांचों बच्चे बोल रहे थे आपस में कि जो सबसे अच्छा वाला बढ़िया वाला झूठ बोलेगा ना, ये 10 का नोट अंकल जी उसको मिल जाएगा, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं। तो मेरे को लगा, हमने कहा देखो जरा जरा से छोटे छोटे बच्चे ये आपस में ये विचार कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसको 10 रुपए का नोट दिया जाएगा, उसको मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बच्चों को समझाया, देखो बेटा झूठ बोलना बहुत खराब बात है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो एक लड़का बोलता, अंकल जी जीत गए, अंकल जी जीत गए, 10 रुपए अंकल जी को मिल गए। एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर थे, दिमाग के डॉक्टर, उनके पास सुबह सुबह एक मरीज पहुंचा था, उसको कुछ परेशानी थी, क्या परेशानी वो हम सुनते हैं। ये मरीज आया,
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, आजकल वो मतलब कहने का डॉक्टर साहब,
1: क्या मतलब कहने का, अच्छे से बताइए क्या मतलब क्या है, क्या हो गया आपको
2: डॉक्टर साहब। मेरा मतलब कि मतलब ऐसा कि मतलब डॉक्टर साहब,
1: ओहो हमारे समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या मतलब इस तरीके से बताइए, आपको क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है आपको।
2: डॉक्टर साहब बात यह है कि आजकल मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो चली है, मैं जो भी कहा किया करता हूँ वो सब बिल्कुल तुरंत ही भूल जाया करता हूँ, बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब।
1: ओहो यानी याददाश्त कमजोर हो गई है।
2: हाँ डॉक्टर साहब,
1: जो कहते हैं करते हैं भूल जाते हैं,
2: भूल जाते डॉक्टर साहब, बिल्कुल भूल जाते हैं, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, बहुत परेशान।
1: एक मिनट एक बात बताइए जी, ये बीमारी आपको कब से है
2: डॉक्टर साहब? कौन सी बीमारी?
1: एक पागल खाने की कहानी सुना रहा हूँ। एक नए डॉक्टर पूरे पागल खाने का मुआयना कर रहे थे, पुराने डॉक्टर साहब उनको सब समझा रहे थे कि कौन पागल कैसा है, किसकी तबीयत कैसी है, कौन क्या है वगैरह वगैरह। ये नए डॉक्टर हैं और ये पुराने डॉक्टर, सुनते हैं आगे क्या है।

0: डॉक्टर शर्मा, ये पागल गंगाराम है, ये एक लड़की से प्यार करता था।
1: ओहो
0: बेचारा।
1: ओहो,
0: शादी करना चाहता था।
2: कौन कौन कौन शादी करना चाहता था?
0: ये गंगाराम नाम का पागल।
2: ये जो पागल है, इसका हाँ नाम क्या बताया आपने?
0: गंगाराम।
2: अच्छा, ये क्या करना चाहता था?
0: ये डॉक्टर साहब एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
0: मगर लड़की ने धोखा दे दिया और अच्छा, पागल हो गया।
2: ओहो, यानी गंगाराम जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसने उसको धोखा दे दिया और इसको कुछ ऐसा चोट पहुंची दिमाग में तो ये पागल हो गया।
0: पागल।
2: अच्छा अच्छा, चलो आगे चलते हैं।
0: बेचारा,
2: ये सामने जो ये जो खड़ा हुआ ये कौन है?
0: वो वाला?
2: हाँ हाँ।
0: डॉक्टर साहब, वो तो पागल लटोरे लाल है।
2: अच्छा, इसका नाम क्या रखा आपने? नहीं, इसका नाम क्या है? लटोरे लाल।
0: ये लटोरे लाल।
2: अच्छा अच्छा, इनको क्या तकलीफ है? कैसे पागल हो गई है?
0: इसने उसी लड़की से शादी की है जिस लड़की से गंगाराम प्यार करता था। एक फिल्म की शूटिंग की तरफ लिए चल रहा हूँ। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जो हीरो के डायलॉग रहते हैं तो हीरो समय पर स्टूडियो नहीं आता है, जिसके कारण डायरेक्टर साहब को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अचानक एक ऐसे आदमी को पकड़ लिया जाता है जो जल्दबाजी में जिसको पकड़ कर लाया जाता है, वो आदमी अपना ताबीज बेचकर पेट पालने वाला एक मदारी और जमूरी का खेल दिखाने वाला शख्स होता है। उससे वो डायलॉग बता दिया जाता है। वो डायलॉग कुछ इस तरह था कि लैला लैला, तेरी लंबी लंबी जुल्फों में हो जाने को जी चाहता है। लैला, तेरे मोती जैसे दांत, इनके सामने सूरज भी मान पड़ जाता है। लैला, तेरी लंबी लंबी जुल्फों में हो जाने को जी चाहता है, डूब जाने को जी चाहता है। लेकिन जैसे ही मदारी को उस डायलॉग को बोलने के लिए शॉट पर लाया जाता है, मदारी पहले जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया वैसा डायलॉग बोलने का प्रयास करता है और उसके बाद डायलॉग बोलते बोलते वो धीरे से अपनी हैसियत पे आ जाता है। दोनों बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मदारी डायलॉग शुरू कर रहा है जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया है।
3: लैला, लैला, तेरे लंबे लंबे जुल्फों से पतंग उड़ाने को जी चाह रही है। लैला लैला, तेरे झील जैसी आंखों में तैरने को जी चाह रही है। लैला लैला, तेरे मोदी जैसे दांत, हे दांत, अरे दांत का दर्द है, पेट का दर्द है, कमर का दर्द है, जिगर का दर्द है। अरे बात नहीं जुल्फ की, सर बड़ो सांप का, कैसा कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का। बहनों भाइयों, जब तक चमेली की जड़ों में छुप कर बैठता उसके काटेगा।
4: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मनाहे की छठवीं कड़ी। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मिट्टी में 188.32 मीटर्स अर्थात 1590 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। 5 बजने को है, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5 बज चुके हैं, वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे।

0: चीन की विनिर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा किया जा रहा यह विस्तार प्रदेश को निर्माण उपकरण और विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सभी मंत्रालयों से अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंगहम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:02 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

हैं बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होते हैं। जापान की एक खूबसूरत सोच है काइजन, जिसका अर्थ है हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। जरा सोचिए, अगर हम प्रतिदिन अपने जीवन में सिर्फ एक छोटा सा सुधार करें, एक प्लास्टिक की बोतल कम इस्तेमाल करें, एक पौधा अधिक लगा दें, या फिर अपने पुराने मोबाइल चार्जर और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को कूड़ेदान में फेंकने की बजाय सही जगह जमा करें, तो क्या होगा? शायद आज यह बदलाव छोटा लगे, लेकिन कल यही आदत हमारे पर्यावरण के लिए एक ताकत बन जाएगी। और इसी काइजन की सोच से जुड़ा है आज का हमारा बेहद महत्वपूर्ण विषय, जिसका नाम है ई वेस्ट का प्रबंधन। नमस्कार साथियों, आवाज है आपके रेडियो दोस्त तुषार तमिल सेना की। स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है युवाओं की वाणी, युवाणी। गुड इवनिंग।

शाहिद माल्या की आवाज में सुनाई गीत फिल्म मौसम से, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत था प्रीतम का। साथियों, आज के आधुनिक समय में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, बैटरी, चार्जर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन जब भी उपकरण खराब हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं तो इन्हें ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। ई वेस्ट का सबसे बड़ा खतरा है इसमें लेड, मर्करी, कैडमियम और अन्य हानिकारक तत्वों का होना। यदि इन्हें सामान्य कचरे के साथ फेंक दिया जाए या खुले में जलाया जाए तो ये मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं और मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग जितने अधिक समय तक हो सके उतने समय तक करें। छोटी छोटी खराबियों को ठीक करवा कर उन्हें दोबारा इस्तेमाल करें। यदि कोई उपकरण आपके काम का नहीं है लेकिन ठीक स्थिति में है तो उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति, स्कूल या संस्थान को दान दिया जा सकता है। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पूरी तरह अनुपयोगी हो जाए तो उसे केवल अधिकृत ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर या रिसाइकलिंग सेंटर पर ही जमा करें। नई वस्तु खरीदते समय भी अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद चुनना ताकि बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान बदलने की आवश्यकता न पड़े और वेस्ट कम बने। साथियों, बारिश के मौसम में ई वेस्ट का प्रबंधन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पानी के संपर्क में आने पर इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए अधिक हानिकारक हो सकता है। पुराने मोबाइल बैटरी, CFL, LED को खुले या गीले स्थान पर न रखें। इन्हें किसी बंद डिब्बे या सूखे कमरे में सुरक्षित रखें। ई वेस्ट को कभी भी घरेलू गीला या सूखे कचरे के साथ न मिलाएं। इसे अलग से संग्रहित करें। खासकर पुरानी बैटरियों को बारिश में खुला ना छोड़ें। इसमें लीकेज होने से आग लगने या रासायनिक प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार या किसी संस्थान की जिम्मेदारी नहीं है। यदि हम सभी अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान का सही तरीके से रिसाइकलिंग करेंगे तो हम एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य की दिशा में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे और आज से होती है। तो साथियों, ये थी कुछ बातें ई वेस्ट के प्रबंधन के ऊपर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

मोनाली ठाकुर की आवाज में सुनाई गीत फिल्म लुटेरा से। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत था अमित त्रिवेदी का। तो साथियों अब तैयार हो जाइए, अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय है रोजगार सूचना का। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी द्वारा आईओबी अप्रेंटिस के कुल 750 पोस्ट के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन आज से यानी 7 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो चुके हैं। अंतिम तिथि है 20 जुलाई। आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप आईओबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.bank.in पर जाकर जानकारी प्राप्त और आवेदन कर सकते हैं। मैं पुनः इसको दोहराता हूं कि कुल है 750 आईओबी अप्रेंटिस के लिए, अंतिम तिथि है 20 जुलाई और आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं।

आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट है www.iob.bank.in। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

जावेद बशीर श्रेया घोषाल की आवाज में सुनाए गीत फिल्म भाग मिल्खा भाग से। गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 5 मिनट में आप एक नई स्किल सीखना शुरू कर सकते हैं तो क्या आप यकीन करोगे? आज की तेज रफ्तार दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें और घंटों की क्लास ही सीखने का एकमात्र तरीका नहीं रह गई है। अब जमाना है माइक्रो लर्निंग का। माइक्रो लर्निंग का अर्थ है किसी विषय को एक साथ लंबे समय तक पढ़ने की बजाय उसे छोटे छोटे भागों में और कम समय में सीखना। उदाहरण के लिए, रोज केवल 10 से 15 मिनट देकर अपने विषय का एक नया टॉपिक सीखना, किसी सॉफ्टवेयर का एक फीचर समझना या किसी विषय का एक छोटा वीडियो देखकर नई जानकारी प्राप्त करना। इससे सीखना आसान भी हो जाता है और याद भी लंबे समय तक रहता है। और यही जो आपने सीखा है उसे आपकी जरूरत, आपकी रुचि और आपके करियर के हिसाब से तैयार किया जाए तो उसे कहते हैं स्किल कस्टमाइजेशन। यानी हर व्यक्ति के लिए सीखने का अपना अलग रास्ता। यदि कोई छात्र पत्रकार बनना चाहता है तो उसे लेखन, संवाद और कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि कोई तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या डिजिटल स्किल सीखने चाहिए। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल तकनीक की मदद से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी गति से और अपनी रुचि के विषय चुनकर सीखना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। इसलिए आज के दौर में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि सही समय पर सही स्किल सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माइक्रो लर्निंग हमें कम समय में प्रभावी ढंग से सीखने का अवसर देती है, जबकि स्किल कस्टमाइजेशन हमें अपनी क्षमताओं को सही दिशा में विकसित करने में मदद करता है। यही शिक्षा और रोजगार की दुनिया में एक नया बदलाव ला रहे हैं और हमें बदलती दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। तो ये थी कुछ बातें माइक्रो लर्निंग और स्किल कस्टमाइजेशन पर। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज में सुने गीत फिल्म मैं हूं ना से। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था अनु मलिक का। साथियों, घड़ी की सुई अब हमें इशारा कर रही है कि आपसे विदा लिया जाए। आशा और उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, अपने स्किल पर ध्यान दीजिए और सुनते रहिए आपका मनपसंद कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त तुषार तमिल सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: युवश्रुत सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, वक्त है अंतराल का।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5:33 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

पहला गीत हमने लिया है कोयला फिल्म से। आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की, इंदिवर का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज में अब सुनिए बाजीगर फिल्म का ये नगमा। जफर गोरखपुरी का गीत और अनु मलिक का संगीत।

और अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है राजा फिल्म से। आवाज अलका याग्निक की, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का।

1942 अ लव स्टोरी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा, आवाज़ कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की, जावेद अख्तर का गीत और आर डी वर्मन का संगीत।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:58 होने को हैं। नीचे सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और स्थिरता भी बनी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ली युगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा किया जा रहा यह विस्तार प्रदेश को निर्माण उपकरण विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज TT नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारी

0: विका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
1: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी
1: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
1: जी
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
1: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
1: जी
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
1: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
0: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
1: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
1: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
1: जी
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
1: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा।

0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं?

0: एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
7: आओ चलो।

0: मौका दे। तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: पार्डन अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, क्या कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओह,

0: तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
2: पापा पापा वो देखिए, एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
2: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
0: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
2: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
0: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
2: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
0: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
2: तो फिर चलिए।
0: हाँ तो आओ, चलो आओ, खा दे रहा हूँ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं। स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है।

0: उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत अजहर फिल्म से अरमान मलिक की आवाज़, और रश्मि विराग का गीत है और अमाल मलिक का संगीत।

अगला गीत श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है बेशरम, निखत खान का गीत और ललित पंडित का संगीत।

आतिफ की आवाज़ में अब सुनिए जहर फिल्म का ये नगमा। सईद कादरी के लिखे गीत की धुन बनाई है रूप कुमार राठौर ने।

अगला गीत मर्डर टू फिल्म से, आवाजें क्षितिज तारे, सेम भट्ट और मिथुन की, गीत और संगीत मिथुन का।

चित्रा और हरिहरन की आवाज़ों में कार्यक्रम का अंतिम नगमा चरस फिल्म से। जावेद अख्तर के लिखे गीत को सुरों में ढाला है राजू सिंह ने।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम
2: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे

0: अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSE सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात 8:15 बजे और 10 बजे। 9:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे उर्दू प्रोग्राम कहकशां, जो होगा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे पंडित जगन्नाथ और साथियों का शहनाई वादन, राग होगा मधु कौंस। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 10:30 बजे। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम और आकाशवाणी भोपाल से आज शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक से ली गई भेंटवार्ता, जिसका विषय है खरीफ दलहनी फसलों की उन्नत खेती। और अब हम आपको जानकारी देते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कल सुबह 11 बजे से होगा, जिसमें 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे और 2:30 बजे। 12:30 बजे संग्रहालय के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक हंसना मनाहे की 7वीं कड़ी। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 बजे लोक संगीत, 1:45 बजे सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे कल शाम 5:33 पर 6:30 बजे और रात 8:15 बजे। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6:00 बजे। कल रात 8:00 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में, चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम आपको कल रात 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाएंगे। 10:00 बजे सुनिएगा मुरलीधर बलवानी का लिखा नाटक बंटवारा, प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल। कल रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन राग होगा हमीर। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। और अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकेंगे कल सुबह 8:30। कल सुबह 9:15 सुनिएगा सुगम संगीत में अवधेश प्रसाद त्रिपाठी के गाए गीत। क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 9:30। 10:00 प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला संसार। कल सुबह 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे मालविका कानन का ख्याल गायन, राग होगा देसी। और श्रोताओं, कल शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आप सुनेंगे डॉक्टर देवीदास पटेल से ली गई भेंटवार्ता, जिसका विषय है खरीफ फसलों के उन्नत बीज एवं बुवाई विधियां। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। 20 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से की मुलाकात। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के पीथमपुर में चीनी कंपनी के नए विनिर्माण संयंत्र का करेंगे भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान करोड़ों भारतवासियों का है और भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक व आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य की साझा दृष्टि का उल्लेख किया।
4: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। श्री शाह ने बताया कि 1994 में अधिसूचित 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में अब तक 5,000 हेक्टेयर को वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और जल्द ही पूरे क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में पीपल, बरगद, नीम, गुलर, अर्जुन और जामुन जैसे दीर्घजीवी पेड़ लगाकर रिज को दिल्ली के ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा।
5: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
3: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को कपास उत्पादकता मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। उन्होंने प्रति एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य तय करने की भी बात कही। वहीं दूसरी तरफ श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रगति कार्यक्रम के तहत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो एक गांव में 100 से 200 किसानों के साथ मिलकर कृषि कार्य में बदलाव लाने का काम करेंगे।
6: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस भेंट में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित प्रदेश की परियोजनाओं और योजनाओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। ये चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी का 20 एकड़ में विकसित होने वाला नया संयंत्र है। इस प्रोजेक्ट में करीब 27 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6500 एक्सकवेटर के निर्माण की क्षमता विकसित की जाएगी। कंपनी 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है, जहाँ 3000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर का उत्पादन होता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
7: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
3: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में लंबित प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सपाक्स संस्था के अधिवक्ताओं ने मांग की कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक राज्य में सभी पदोन्नति प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाए। संस्था ने विधानसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों पर भी आपत्ति जताते हुए इन्हें न्याय संगत नहीं बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इसे अधिक लंबा नहीं खींचा जा सकता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश की मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त दवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त स्वास्थ्य धनराजू एस ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे, जहाँ हाई एंड तकनीक से दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही दवाओं का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 190 तहसीलदार एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियमित पदोन्नति दे दी है। ये पदोन्नति मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इनमें कक्षा 5वीं में 80.42% और कक्षा 8वीं में 74.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा और पुनः परीक्षा को मिलाकर कक्षा 5वीं का कुल परिणाम 98.89 और कक्षा 8वीं का 98.19% रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के 22 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, शूटिंग और घुड़सवारी सहित विभिन्न खेल विधाओं में क्वालिफाई किया है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी और टीम सदस्य जूट से तैयार विशेष परिधान पहनेंगे। इसे वस्त्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से विकसित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत इस पहल का उद्देश्य जूट उद्योग को नई पहचान देना और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को बढ़ावा देना है। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में अपने प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को फिलहाल लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत पूरी होने तक ये फीचर देश में शुरू नहीं किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महापौर मालती राय ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजधानी भोपाल के 3EME सेंटर में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंडवा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम और विधिक सहायता की जानकारी दी गई। नीमच में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने सपरिवार संकट मोचन हरकियाखाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सीहोर में RTE के तहत निजी स्कूलों की खाली 1651 सीटों पर तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अशोकनगर कलेक्टर ने साप्ताहिक जनसुनवाई में 408 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित पुल और रपटों पर ड्रॉप गेट लगाने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर लंबित पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। झाबुआ में डायरिया से बचें हर बार अभियान के तहत ग्राम कालापीपल में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में श्वानों के लिए कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग किया गया है और भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाले बैरसिया नरसिंहगढ़ मार्ग पर पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। SDM आशुतोष शर्मा ने नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए ये आपातकालीन आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुन विवारे सभी भैया बहनन को वर्षा बहन की राम राम। भाइयों बहनों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। भैया बहनों, अपन तो देख ही रहे हैं कि बारिश को मौसम शुरू हो गया है, तो सबन को गर्मी से राहत मिल गई है। और जब बारिश के मौसम में पौधा रोपित करवे को बहुत ही अच्छा समय होता है। किसान भाई कैसे कौन से अनाज की बुवाई कर सकते हैं, जाकी जानकारी हम आपको आगे भी देंगे। लेकिन अभी हम आपसे चर्चा करके जा रहे हैं कि हमारे किसान भाई तो जैसे बुवाई करते ही करते हैं, तो हमारे घर में अगर बच्चे हैं बहनें हैं तो वो भी पौधा रोपित कर सकते हैं। अपने घर के बगीचा में घर में पौधा लगावो चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कहो थे कि बहुत ही अच्छा रहते हैं, हमें शुद्ध ताज़ा सब्जियां भी मिल जाते हैं, घर भी हरो भरो रहे थे और अच्छी ऑक्सीजन भी हमें मिल जाता है। और जैसे कहा होता है कि बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए बच्चों से ज़रूरी करवावो चाहिए। भाई बहनों, अपन तो देख ही रहे हैं कि बारिश के मौसम में कीट पतंग मच्छर रात में तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो और इसके अलावा ऊपर छत पर भी जो अपनों कबाड़ को सामान है, टायर ट्यूब आदि हैं, तो इन सब में भी बारिश को पानी इकट्ठो ना होवे दें। और शाम के वक्त तो खिड़की दरवाजे ज़रूर से लगा के रखें ताकि कीट पतंगे अंदर ना आ सकें। और हमारे किसान भैया को तो पशुओं को भी ध्यान रखना होता है, तो भैया जहाँ पशु बंधे हों उनके आसपास साफ सफाई को ध्यान रखें, पानी गंदगी जमा ना होवे दें। पशुओं की वो स्वच्छ और साफ पानी पीवे दें ताकि वो स्वस्थ रह सकें। और भाइयों बहनों, अपन तो देख ही रहे हैं कि बारिश को मौसम चल रहा है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं कैच द रेन अभियान के बारे में। कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्षा की जल को संरक्षण और संचयन के लिए शुरू करोगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जन आंदोलन है। और ईगो मूल मंत्र यही है कि पानी को वहीं बचाएं जहां वह गिरता है, जब वह गिरता है। तो भैया बहनों, जी अभियान चलावे को मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी बारिश हो रही है, तो बारिश में जो वर्षा को जल है उसको यूं ही बह जाने की बजाय, बर्बाद होने की बजाय उसको संचयन करो जाए ताकि वर्षा के जल को सदुपयोग हो सके। भैया बहनों, सबसे आसान तरीका तो यही है कि ऐसे अपन घर की अगर बारिश होत है तो अपने घर की छत पर अपन बाल्टी टंकी रख दें। वर्षा को जो जल होता है वो शुद्ध होता है, उसको आप पीवे के काम में भी ले सकते हैं और बहुत समय तक उसको अपन स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप अपने घर के बर्तनों में वर्षा के जल को संचयन कर सकते हैं और बाद में उस पानी को छान के पीवे के काम में ले सकते हैं। और जैसे और भी टंकी या और भी बर्तन भर सकते हैं, उसके जल को आप बाथरूम वगैरह के साफ सफाई के काम में भी उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा मुख्य रूप से घरों, सरकारी कार्यालयों और जो सोसाइटी हैं उनकी छतों को पानी को इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर पहुँचावो ही ये योजना को मुख्य उद्देश्य है, ताकि भूजल स्तर बढ़ सके। साथ ही पारंपरिक जल स्रोतों को, जो हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनको जीर्णोद्धार कर वो भी ये मिशन को मुख्य उद्देश्य है। जैसे जो पुराने कुआं बावड़ी तालाब हैं उनकी गाद निकालना ताकि वो फिर से पानी दे सकें। और पानी को बेकार बहवे से रोक पे के लाने स्थानीय स्तर पर छोटे गड्ढे बनावो, साथ ही साथ जल शक्ति केंद्रों की स्थापना भी करी जा रही है ताकि जो भी अपन आम जनता है उनको मार्गदर्शन मिल सके और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और वर्षा के जल का संचयन करें। तो भाइयों बहनों, आज आवश्यकता जब बात की है कि अपन पानी के महत्व को समझें, वर्षा के जल का महत्व समझें और उसका संचयन करें। कैसे भैया जी, पानी कौन के काम आएगा? हमारे और उनके ही काम आने हैं। तो भैया, जब पानी हमारे तक काम की चीज़ है तो हमें चाहिए कि हम उसका संरक्षण करें। और इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण भी हमें करवा चाहिए। कैसे जो पेड़ में ज़मीन में पानी सूखवे में मदद करते हैं।
इसलिए पेड़ पौधा लगावो भी बहुत ही जरूरी है। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध ताजी हवा तो मिलते ही मिलत है, लेकिन पेड़ ज़मीन में पानी को सोखवे में भी बहुत मदद करत हैं। तो भैया हम तो आपसे यही कहवो चाहते हैं कि पानी की बर्बादी को रोकें और जल संचयन में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और

0: भागीदार बने। और भाइयों बहनों अब सुना थे जय संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: और भाई बहनों, अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरवेंद्र सिंह।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर हरवेंद्र सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको संभावित आगामी समय की मौसम और वर्तमान समय के मौसम के बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद में आपको इस समय कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो किसान भाई, सबसे पहले आप पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम वेधशाला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः छुटपुट से घने बादल रहे तथा हवा लगभग 5 से लेकर 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर और पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 36 से 37 और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया एवं अपेक्षित आर्द्रता सुबह 63 से 84 और शाम को 53 से 54% के बीच दर्ज की गई। किसान भाई, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में घने बादल रहने तथा हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। हवा लगभग 6 से 27 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम व पश्चिम उत्तर दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 35.2 से 36.2 और न्यूनतम तापमान 28 से 28.2 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। अपेक्षित आर्द्रता सुबह 87 से 89 और शाम को 69 से 73% के बीच रहने का अनुमान है। किसान भाई, संभावित मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 2 और 3 दिन में अच्छी बारिश यानी भारी बारिश की हैवी रेनफॉल की संभावना को देखते हुए जो आपकी कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है इस प्रकार से है। किसान भाई, संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस सप्ताह में वर्षा और देरी से हो रही वर्षा को देखते हुए जब आपके खेत कंडीशन में आए तब कम अवधि में पकने वाली खरीफ फसलों की प्रजातियों की बुवाई करें क्योंकि आज 7 जुलाई हो चुकी है और इस साल देरी से मानसून आया है। साथ ही किसान भाई, संभावित मौसम को देखते हुए इस समय बोई जा चुकी खरीफ फसलों में अतिरिक्त वर्षा जल को निकालने की व्यवस्था करें। साथ ही किसान भाइयों, संभावित मौसम पूर्वानुमान में हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना को देखते हुए इस समय खरीफ फसलों की बुवाई स्थगित करें व मौसम पूर्वानुमान को देखने के बाद खरीफ फसलों की बुवाई करें।

0: साथी किसान भाइयों, फसलों की बात करें तो अरहर की फसल की बुआई का इस समय समय चल रहा है, तो इसकी उन्नत किस्म जैसे RBA 28, ICPL 88-39, DJ 30, 501 आदि का चयन कर जब आपके फसल खेत आपके बतर पर आ जाए तब इसकी समय की बुआई करें तथा जल निकास की व्यवस्था अवश्य करें। साथी किसान भाई, मक्का की बात करें तो क्योंकि आगामी 2-3 दिन में अच्छी बारिश होने की संभावना है, तो जिन किसान भाइयों की मक्का की पक चुकी है तो उसको भुट्टों को तोड़ाई करके उसको सुरक्षित खनियान पर रखें जिससे आपकी मक्का के खराब न हो सके। साथ ही किसानों, धान की बात करें तो धान के लिए इस समय मौसम बहुत अनुकूल है, तो तैयार पौध की इस समय किसान भाई रोपाई करें। साथ ही किसान भाई, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की बुवाई इस समय उन्नत प्रजातियां जैसे RBSM 2001-35, RBS 2007-35 एवं 13 से बुवाई हेतु उन्नत किस्म जैसे JS 2069 और JS 2029, RBS 2001-4 आदि का चयन करके और जब आपकी फील्ड कंडीशन में हो तब इसकी बुवाई करें। साथ ही किसान भाई, सब्जियों की बात करें तो इस समय भिंडी की फसल में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, तो दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 750 ml दबाव प्रति हेक्टर 500-600 पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से 2-3 छिड़काव करें, लेकिन छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। साथी किसान भाई, खरीफ प्याज और बैंगन टमाटर अजैसी फूल गोभी आदि जो आपके तैयार पौधे हैं उसकी इस समय रोपाई करें, लेकिन रोपाई करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि आगामी 2 दिन में वर्षा की संभावना है, अगर 2 दिन बाद ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ हैवी वर्षा भी हो सकती है जिससे नुकसान हो सकता है। साथ ही किसान, मिर्च और टमाटर की बात करें तो इसमें मिर्च और टमाटर में चुरमुरा रोग की संभावना हो सकती है, तो दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 25 WG 100 ग्राम दवा 500-600 पानी में घोल बनाकर जब मौसम साफ हो तो इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान, पशुपालन की बात करें, संभावित मौसम को देखते हुए इस समय पशुओं में खुरपका रोग से बचाव हेतु इस समय टीकाकरण कराएं। साथ ही मुर्गियों की बात करें तो मुर्गियों को परजीवी से बचाने हेतु प्रोपराजिन दवा डॉक्टर की अनुशंसा अनुसार मुर्गियों को पिलाएं। साथ ही किसान भाई, संभावित मौसम में आगामी 5 दिन में गरज चमक के साथ वर्षा और सतही तेज हवाओं को चलने के अनुमान को देखते हुए ऐसे समय में जिस समय ये तेज हवाएं या गरज चमक थंडरस्टॉर्म हो उस समय पशुओं को बड़े वृक्षों और विद्युत खंभों से दूर रखें तथा मजबूत और पक्के शेड में बांधे। इसी के साथ मैं था डॉक्टर हरबिंद सिंह, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से।
1: भाई बहनों, अभी अपन सुन रहे थे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी और कृषि सामयिक सलाह, जा विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरवेंद्र सिंह। और भाई बहनों, अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वायु प्रदूषण रोकें और स्वच्छता में सहयोग दें, जा विषय पर। अपन देखा थे कि आजकल चारों तरफ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, सांस ले वो भी मुश्किल हो जा रहा है। एक तो वाहन इतिक हो गए हैं कि को पैदल ही नहीं चल वो जात, वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु बहुत ही दूषित हो रही है। इतिक गाड़ियां, कार, मोटरसाइकिल हो गई हैं और निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। हमें चाहिए कि हम साइकिल को उपयोग करें, ये हमारे वायु प्रदूषण को भी रोकत है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहत है। साइकिल चलाओ, और जैसे हमें आने जाने हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सार्वजनिक वाहन को इस्तेमाल करें, जैसे उन्हें भी रोजगार मिले और हमारे तरफ से भी अनावश्यक ईंधन की खपत कम हो। इसके अलावा अपन देखते हैं कि बहुत से लोग कचरा, प्लास्टिक की पन्नियाँ ये सब जला देते हैं, उससे क्या होता है, जो हानिकारक गैस निकलत है वो वायु को दूषित करत है। वातावरण को साफ रखने के लिए हमें अच्छी आदतें अपनावो चाहिए ताकि हवा को दूषित होवे से हम बचा सकें, जैसे कि कचरे जलावे की बजाय कचरे को सही निष्पादन करें, कचरा कचरा पेटी में ही डालें और जो जैविक कचरा है उसे कंपोस्ट खाद बनाएं ताकि वो आगे काम हाल सके। और जैसे ये बारिश का मौसम चल रहा है तो हमें चाहिए कि हम वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण को समय जो बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं, और जो हवा से धूल कण जहरीली गैसें ये सब अपने अंदर सूख कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित भी नहीं रह सकते। तो भैया हमें चाहिए कि हम इसके अलावा हमें चाहिए कि हम अनावश्यक रूप से चल रही लाइट कूलर पंखे टीवी एसी ये सब बंद करें और ऊर्जा को संरक्षण करें। कम बिजली का उपयोग मतलब कम कोयला जलेगा और हवा में कम प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण कम हो इस वजह से हमें चाहिए कि हम इन सब साधनों का उपयोग कम से कम करें। अनावश्यक रूप से ना ही पानी की बर्बादी करें और ना ही बिजली की। और भैया सबसे ज़रूरी है कि हम त्यौहार समारोह में जो फटाके चलावे को जो चलन चल गया है उसे हमें रोकवो चाहिए। कैसे भैया? फटाके चलावे से कोई फ़ायदा तो होत नहीं है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण ही होता है। और फटाके चलवे के बाद जो धुआं निकलत है उससे वायु प्रदूषण होत है। हम तो हवा में सांस ले ही नहीं पात, पशु पक्षी सबन के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। और इससे बहुत से लोग जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनकी तो जान तक चली जाती है। इसलिए भैया हमें चाहिए कि हम फटाखा चलाना बिल्कुल ही बंद कर दें। और भैया ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए और जाके संगे संगे ऊर्जा के लें, जैसे हम ऊर्जा के लें सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ये सब ऐसे विकल्पों को हमें चुनाव करना चाहिए। और हमें ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे वाहन खरीदते समय CNG हाइब्रिड या आजकल तो इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहन को हमें उपयोग करना चाहिए। तो भैया बहनों ये बात तो भी वायु प्रदूषण के बारे में। और अब हम आपको सुनवा भी जा रहे हैं जी लोकगीत। कैसे हमें अपने भैया बहनों की मनोरंजन को सुई ख्याल है, तो हम आपको सुनवाते हैं अशोक प्रजापति और साथियों की आवाज़ में ये देवी गीत।

कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। अब हम आपसे चर्चा करते जा रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए कृषक प्रेरणा। कृषक प्रेरणा को बताते हुए आज हम आपसे बता रहे हैं सुभाष पालेकर, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक, किसान और लेखक हैं। सुभाष पालेकर का जन्म वर्ष 1949 में भारत में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बेलोरा नाम के एक छोटे से गांव में भाव था। उन्होंने नागपुर से कृषि विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करी और कॉलेज की शिक्षा के दौरान वो सतपुड़ा के आदिवासी क्षेत्र में जाकर रहे और उनकी समस्याओं के बारे में आदिवासियों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। भाइयों बहनों, हम आपको बता दें कि सुभाष पालेकर जी एक कृषि वैज्ञानिक, किसान और लेखक हैं जिन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया है। SPNF एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्वस्थ भोजन उत्पादन के लिए कृषि पद्धतियों में प्रकृति के नियमों का उपयोग करो जाता है, ताकि हम सबन को स्वच्छ भोजन मिल सके और हम और हमारी भूमि स्वस्थ रह सके। हम आपको बता दें कि सुभाष पालेकर जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करा गया है और सुभाष पालेकर जी द्वारा प्रस्तुत पंच स्तरीय मॉडल प्राकृतिक वनों की नकल करत भय कई वनस्पतियों परतों को एकीकृत करत है, ताकि संसाधनों को अधिकतम उपयोग हो सके, उत्पादकता में सुधार हो सके। और सुभाष पालेकर जी कृषि में 7 चरण शामिल करते हैं। पहला, जैसे कोई जुताई नहीं, बीजामृत से बीज उपचार, जीवामृत से पोषण, पंचस्तरीय खेती, निराई नहीं, उर्वरकों, कीटनाशकों, पेस्टिसाइड या खरपतवार नाशकों का कोई उपयोग नहीं, और साथ ही पशुधन और मल्चिंग के साथ एकीकृत खेती करना। सुभाष पालेकर जी ने कृषि में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है और जैविक खेती को एक नई दिशा दी है। हम सभी किसान भाइयों को इनसे बहुत प्रेरणा लेना चाहिए और काम करना चाहिए।

0: भाइयों बहनों, आपने तो सुना ही होगा कि जैसे मेघालय वगैरह, जो जहाँ वन अधिक हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है, क्योंकि जो हमारे वन होते हैं वो मेघों को आकर्षित करते हैं, वर्षा होने में मदद करते हैं। वो बारिश से हमें वर्षा का जल मिलत है, और जल जल ही जीवन है। अगर हम कहें कि वन हमारे जीवनदाता हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन, भोजन, जीवन रक्षक दवाएं, ऐसी कई अनेक चीज़ें मिलत हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं और जिनके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। इसके अलावा जो वन होते हैं वो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, और जो मरुस्थलीकरण होता है उसको रोकने में भी वन हमारी बहुत मदद करते हैं। वनों का हमारे जीवन में और प्रकृति के जीवन में बहुत ही गहरा और अटूट संबंध है। वन से वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उन्हें सोख कर हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन हमें देते हैं, और इससे प्रदूषण भी कम होते हैं। और जो वन जो का करते हैं कि बादलों को आकर्षित करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, और जैसे का होते भी है भूजल स्तर भी बढ़त है, और वन जो होते हैं वो बाढ़ को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। हमें वनों से इमारती लकड़ी, कागज, शहद, गोंद और भी कई तरह की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हमें प्राप्त होती हैं। और जंगल में भी ये का होते हैं, हजारों प्रजातियों के जो वन्य जीव होते हैं उनको वो प्राकृतिक घर है। अगर वन नहीं होंगे तो वे कहाँ रहेंगे? तो प्राकृतिक रूप से ही वन्य प्राणियों का, जो जीव जंतु हैं उनका, जंगल जो है उनका प्राकृतिक घर होते हैं, जो पृथ्वी की जैव विविधता भी बनाए रखते हैं। और जो हम अपन देख ही रहे हैं भैया, कि वर्तमान में बढ़ती आबादी हो रही है, शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, इन सब के चलते क्या हो रहा भैया, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अपन ने कई बार सुनो है कि भैया जी जंगल में आग लगा दी, बहुत से पशुधन उनका वो जल गए, राख हो गए। ये सब किस वजह से हो रहा है? सिर्फ शहरीकरण, औद्योगिकरण की वजह से। हमने इतनी बेरहमी से उन वन्य जीवों का, उनसे घर छीन लिया और उनकी जान भी ले ली। तो भैया हमें ऐसा नहीं करने हैं, हमें चाहिए कि हम वनों का संरक्षण करें। वन जो हैं वो हमारे जीवन प्रदाता हैं, और हमें चाहिए कि हमें उनका संरक्षण करें, क्योंकि वन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पशुधन के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। वनों के नष्ट होने से जलवायु में परिवर्तन होता है, तापमान में वृद्धि होते हैं, ऐसे बहुत से गंभीर संकट पैदा हो रहे हैं। वनों के महत्व को समझने के लिए और उन्हें संरक्षित करने के लिए हमें चाहिए कि हम सामुदायिक रूप से जागरूक बने और एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने की आज आवश्यकता है। कैसे भैया, अपन तो देख ही रहे हैं, हमारी जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन, वो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? पेड़। तो हमें भैया चाहिए कि हम अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हम सुरक्षित रह सकें और हमारे संगे संगे जीव जंतु भी सुरक्षित रह सकें। हमें चाहिए कि हम वनों का संरक्षण करें, ताकि वन्य जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक घर है वो उनसे कोई ना छीने, उनका भी घर बना रहे। और हमें वनों से इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि बिना वन्य के तो हम, मतलब हम कहें कि वो वन हमारे जीवनदाता हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया हम तो यही कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे ज़रूर से लगाएं। और भैया अब घड़ी की सुई इशारों कर रही है, अपने कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा है। जय जवान जय किसान।
1: शामिल हैं क्या आप हमारे श्रोताओं की बेहतर समझ के लिए समझा सकते हैं इसको और विस्तार में?
2: देखिए, करीब 12 से अधिक समझौते पर आज हस्ताक्षर हुए, और जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, विकास के क्षेत्र में है, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में, संस्कृति कल्चर और शिक्षा, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य सुरक्षा के क्षेत्र में है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा कार्य किया, दुनिया ने उसको देखा, और भारत डायनेमिक्स का जो अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया, और इन दोनों का इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हुए हैं उनको सप्लाई करने के। उसके अलावा जो सबांग पोर्ट है, एक जो हमारे अंडमान निकोबार से केवल 100 मील दूर है, उनके बीच में भी सहयोग की बात की जा रही है, क्योंकि ये श्रोताओं को समझना चाहिए कि जो मलक्का स्ट्रेट्स है, बहुत ही मुख्य पानी का रास्ता है, जिससे पूरे ईस्ट एशिया व्यापार वहाँ से होता है, भारत का 40% व्यापार वहाँ से होता है। और अभी पीछे जो हमने देखा कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई वहाँ पे गतिरोध कभी भी आएगा व्यापार में और शिप्स को पार करने में, तो इस तरह मलक्का स्ट्रेट्स है, उसका ठीक वहाँ चले और उसमें कोई गतिरोध अवरोध ना आए, इसमें भारत और इंडोनेशिया का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, और मैं समझता हूँ कि इस पर भी कुछ एग्रीमेंट और कुछ बातचीत हमारे प्रधानमंत्री और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के बीच में हुई है।
1: एक और जो अहम फैसला आज लिया गया जिस पर मेरे समझ से चर्चा होनी चाहिए वो ये है कि महत्वपूर्ण खनिजों और स्टील के क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत करने का भी समझौता हुआ है। साथ ही स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट में साझेदारी का एक नया दौर वो भी सामने आएगा। अम्बेसडर तायल, खास तौर पर आपसे महत्वपूर्ण उपयोगी खनिजों और रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में बात करना चाहूंगे।
2: पिछले 1-2 वर्ष में विश्व के सामने एक ये नया मुद्दा उठा है कि क्रिटिकल मिनरल्स और इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स, इसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीन ने अपना एक वर्चस्व जमाया है, 80% से ज़्यादा ये कंट्रोल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारे श्रोता ये देखेंगे कि भारत के जो भी एग्रीमेंट्स आजकल दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं, उसमें हमेशा क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र रहता है, क्योंकि ये जो खनिज है ये बहुत रेयर हैं, ये नॉन क्रिटिकल मिनरल्स और ये रेयर अर्थ्स इनको कहा जाता है। ये खनिज इंडोनेशिया में काफी मिलते हैं और एक देश इसको नहीं पूरी तरह से संभाल पाता, तो कई जगह ये देखा गया है कि कई देश मिलकर खनिज एक जगह होता है, उसको प्रोसेस दूसरा देश करता है और पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो भी समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच में आज हुआ है, उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भविष्य में सप्लाई चेन पर पड़ेगा क्रिटिकल मिनरल्स का। 21% दुनिया की निकिल इंडोनेशिया में है, और स्टेनलेस स्टील की प्रोसेसिंग में निकिल की आवश्यकता पड़ती है, और भारत स्टील का बहुत बड़ा एक उपभोक्ता भी है और प्रोड्यूस भी करता है, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा समझौता हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडोनेशिया की एजेंसीज के बीच में हुआ है।
1: अम्बेसडर तायल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के यूपीआई की, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दुनिया भर में यूपीआई काफी विश्वसनीय और काफी उपयोगी साबित हो रहा है। आज ये घोषणा की गई है कि यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ भी जोड़ा जाएगा। जब यूपीआई सरहदें पार कर रहा है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव लाने और लीडर के तौर पर ये सब भारत की छवि को और कैसे बेहतर बना रहे हैं?
2: जिस तरह से भारत में डिजिटल सर्विसेज पूरे 140 करोड़ लोगों तक पहुंची हैं, गांव-गांव में पहुंची हैं, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, चाहे वो हमारा आधार कार्ड हो, हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, और जो पेमेंट्स कार्ड्स के थ्रू बैंक के द्वारा हो रहे हैं, फ़ोन के द्वारा हो रहे हैं, तो इसमें जो यूपीआई 10 देशों से पहले ही भारत का समझौता हो चुका है, जहां भारत के आप यूपीआई से पेमेंट रुपीज में कर सकते हैं। अब इंडोनेशिया का जो इंडोनेशियन पेमेंट सिस्टम है, उसके साथ भी यूपीआई का इंटीग्रेशन होगा, उसका मेल होगा। हमारे जो पर्यटक हैं और बिजनेस के लोग हैं, वो अगर इंडोनेशिया जाएंगे तो रुपीज में यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इससे देखिए, दोनों देशों के नागरिकों को ये लाभ भी होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज कमीशन होता है,

0: वो भी बच जाता है, क्योंकि पहले अगर आप इंडोनेशिया जाएं कुछ खरीदें तो पहले वो रुपया वहाँ डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर डॉलर भारत के रुपए में कन्वर्ट होगा, और दोनों तरफ वो कमीशन डॉलर वाला लेता है। तो अगर डायरेक्ट रुपी और रुपया डायरेक्टली लिंक होगा तो वो कमीशन बच जाता है, दोनों देशों के नागरिकों को उससे फायदा होगा।
1: एम्बेसडर तायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आजकल दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डंका है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए भी आज समझौते हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, आजकल पूरी दुनिया में एआई का डंका है, तो एआई के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया आगे अपनी साझेदारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि एआई सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।
0: आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये शताब्दी है, 21वीं शताब्दी, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है, और उसका एक रूप जो सामने आया है पिछले 1-2 साल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल नया टूल विश्व में समाज के साथ आपके पास आई है, जिस पर मास्टरी करना बहुत आवश्यक है हर देश को जो भी आगे बढ़ना चाहता है। और इसमें भारत पहले ही बहुत काम भारत में हो रहा है, मिशन्स हैं और स्टार्टअप्स में तो भारत ने कई पिछले सालों से गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से बहुत मदद की जाती है स्टार्टअप्स में, हमारे युवाओं को और हमारे इंजीनियर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। इंडोनेशिया भी एक युवा देश है, वहाँ भी 28 करोड़ पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन बढ़ रही है और युवा लोग अधिक हैं वहाँ। आगे के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होगा और इसमें भारत इंडोनेशिया साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया, और प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। तो आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए मुख्य अंश।
2: पिछले 2 दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ भी पिछले 1 दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है।
1: अम्बेसडर तायल, इंडोनेशिया द्वारा इन दोनों जेस्चर्स को भारत की तरफ कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं है बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए है। तो इन दोनों कदमों को आपकी नजरिए में आप कैसे देखते हैं?
0: ये एक बहुत ही प्रमुख सम्मान है प्रधानमंत्री का भी और भारत का भी। प्रधानमंत्री अब 12 वर्ष से दुनिया के पटल पर हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। उनको एक बहुत ही बैलेंस्ड नेता के रूप में दुनिया देखती है, जो वो कहते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। आज भी जैसे उन्होंने कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे, और दुनिया देख रही है कि अब चाहे वो अमेरिका और ईरान हो, वो अब जाके डायलॉग और डिप्लोमेसी पे ही इतना मारामारी के बाद वहां आ गए हैं। तो उसका भी सम्मान है बिंटांग आदिपूर्ण के द्वारा, और भारत का भी सम्मान है कि वो भारत की जो नीतियां रही हैं, भारत और इंडोनेशिया का पुराना सिविलाइजेशनल एक जोड़ है, एक कनेक्शन है, और दोनों देशों का ध्येय भी एक ही है कि पूरा इंडो पैसिफिक, प्रशांत हिंद महासागर पीसफुल रहे और दोनों देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और जैसे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियन पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। हर जो भी नेता दूसरे देश के जाते हैं उनको, हर एक को ये ऑनर प्राप्त नहीं होता कि वो वहाँ के पार्लियामेंट को भी एड्रेस करें, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उस देश के नेताओं से, जो भारत और इंडोनेशिया की मैत्री का संदेश जहां जहां से भी वो आए हैं, जो पूरा इंडोनेशिया वो संदेश वहां लेके जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। और प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में एक बहुत ही बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि भारत विकास का रास्ता फॉलो करता है, एक्सपेंशनिज्म का नहीं, और ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने भारत के बारे में कही।
1: आखिर में अम्बेसडर तायल, भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सांस

0: सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। क्या आप उन कदमों के बारे में बता सकते हैं जो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान इन संबंधों को और प्रगाढ़ और बेहतर करने के लिए उठाए गए हैं?
1: भारतीय उपमहाद्वीप और इंडोनेशियन आर्किपेलागो के तो सांस्कृतिक संबंध हजारों साल से हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुबियांतो जाएंगे, एक परम्बरन मंदिर है, 1000 साल से ज्यादा पुराना है योग यकार्ता में, उसके जीर्णोद्धार के लिए भारत ने का जिम्मा उठाया है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडोनेशिया के लोग और समाज और गवर्नमेंट हमेशा इस कनेक्शन को जो भारत के साथ है, संस्कृति का, सिविलाइजेशन का, उसको रेस्पेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। रामायण अभी भी बहुत ही एक पॉपुलर डांस ड्रामा के रूप में पूरे इंडोनेशिया में देखा जाता है। और अगर आप जकार्ता जाएं तो एक जगह वो श्री कृष्ण जी जो रथ और अर्जुन का रथ भी एक बहुत ही अच्छे जगह बहुत बड़ा बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति एक बहुत जगह बहुत बड़ी बनी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा पुराना नाता है और उसको प्रधानमंत्री की यात्रा में और सुदृढ़ किया जाएगा और उसको और ज्यादा लोगों के पास ले जाने का प्रयत्न है। और दूसरा, 1927 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इंडोनेशिया गए थे, उसकी शताब्दी 2027 में बहुत धूमधाम से इंडोनेशिया और भारत दोनों जगह बनाई जाएगी। उसमें गुरुदेव टैगोर और इंडोनेशिया के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका भी बहुत अच्छा योगदान था, उन दोनों के नाम से ये शताब्दी दोनों देशों में मनाई जाएगी।
0: अम्बेसडर तायल, आपने प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण दिया है हमें और आपने हमारे साथ अपने विचार बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से साझा किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला नगमा आशिकी फिल्म से कुमार सानू की आवाज, समीर का गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

अनुराधा पौडवाल, पंकज दास और साथियों की आवाज़ों में अब सुनिए बाहर आने तक फिल्म का नगमा। इब्राहिम अश्क के लिखे गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

सनम बेवफा। लीजिए सुनिए इस फिल्म से विपिन सचदेवा को। सावन कुमार के लिखे गीत की धुन बनाई है महेश किशोर ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए बागी फिल्म से, आवाज़ प्रमिला गुप्ता की, समीर का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 8:42 होने को है, समय है अंतराल का।

स्वर्ग की धरती कश्मीर की कलियां। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग

0: पता वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले चार दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा

0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगे, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को

0: पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
1: रीच के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
5: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
7: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
6: Here is more from a correspondent covering the Prime Minister's visit.
8: Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Mr. Modi said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust, and common vision for the future. The Prime Minister said India believes in development, peace, stability, and prosperity. Mr. Modi stressed the need for collective action against terrorism and unilateral unilateral actions that undermine regional security. He emphasized global south stability besides Indo-Pacific. The Prime Minister called for deeper cooperation in defense, maritime security, trade, digital technology, educational, artificial intelligence, and critical minerals. He also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups, and innovation.

0: Party giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah today launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Makinam Abhiyan to increase the green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that this campaign is a significant initiative aimed at transforming Delhi's environment. Mr. Shah said that the central government and the Delhi government have resolved to fully develop 6,300 hectares of Green Ridge area into forest land over the next 4 years and ensure its protection.
1: Today, with the support of the Government of India, the Delhi government has prepared the working plan document and the management plan for the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary while also developing the Delhi Bird Atlas. These initiatives form part of a comprehensive effort to restore the entire ecosystem. More than 70 ponds will be developed within the ridge along with small restaurants and visitor amenities. In addition, all archaeological structures in the area will be conserved and protected.
0: Delhi Chief Minister Rekha Gupta said over 12 lakh saplings will be distributed free of cost and appealed the citizens to actively participate in the campaign. In Kerala, three people were killed in a landslide at the tunnel construction site near Kallari in Meppadi, Wayanad, following heavy rainfall today. Nine workers who were trapped underground were rescued and shifted to the Government Medical College Hospital in Meppadi. Six others remain missing and are feared trapped beneath the debris. Rescue operations are continuing with teams from the Fire and Rescue Services and Disaster Response Agencies. The Kerala State Disaster Management Authority said the collapse occurred when debris accumulated during excavation for the tunnel construction site slid down due to heavy rain. Wayanad has been experiencing heavy rainfall since yesterday. A red alert has been issued for Wayanad and Kozhikode districts. Heavy monsoon rains continued to batter Maharashtra today, triggering flooding, landslides and traffic disruptions in Palghar, Raigad and Ghat areas of Nashik, Pune, Ahilyanagar and Kolhapur districts. Meanwhile, Mumbai and the adjoining areas witnessed a relative easing of rainfall. The IMD has forecast heavy rainfall conditions in several areas of North and South India for the next 3 to 4 days. Here is more from our correspondent.
2: IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till 13th of this month. The weather agency has forecast heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Madhya Pradesh and South Interior Karnataka till 13th of this month. Thunderstorm conditions have been forecast over Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana till next Monday. Thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds are likely to prevail over Andhra Pradesh, Jharkhand, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, Odisha and Northeastern region during the next 3 to 4 days. Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: Two explosions rocked Syria's capital Damascus this afternoon, injuring 18 people, including four police officers. The explosions occurred just before the meeting between French President Emmanuel Macron and his Syrian counterpart Ahmed al-Sharaa at the presidential palace. President Macron, who arrived in the Syrian capital yesterday, is the first top European leader to visit the war-torn country since the fall of the regime headed by Bashar al-Assad. Benchmark domestic equity indices gave up their initial gains and ended on a negative note today. We have a report.
3: Sensex dropped 104 points to close at 78,181. Nifty dipped 32 points to settle at 24,399. Both the stock market indices dropped 0.13%. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.3%, while the small-cap 100 index lost more than 0.5%. In the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 44 paise to close at 94 rupees and 96 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: On to sports. In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. England defeated India by 4 wickets in the second T20 match on Saturday in Manchester. The first match was washed out due to rain. In the Wimbledon tennis, world number one and defending champion Jannik Sinner has stormed into men's singles semi-final, beating Jan Lennard Struff of Germany in London this evening. In women's singles, Coco Gauff advanced to the semi-finals, defeating fellow American Jessica Pegula in a thrilling quarter-final match. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on Egypt in the round of 16 match in Atlanta tonight. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Later in another round of 16 clash, Switzerland will face Colombia in Vancouver at 1:30 a.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after a landslide hits Wayanad Tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India. And in men's cricket, India take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. That is all in the news at night. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इकतसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जुनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगम में 5 T20 मैचों की सीरीज का 3रा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
5: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की अमन इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वजीर आजम ने दिफा बहरी सलामती तजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
4: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीक़ेकार के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
6: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसकी

0: के लिए राष्ट्रपति प्रभवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
0: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
1: वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रभवो सुबियांतो से इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज द बिंतांग आदिपुर्ण से सरफराज किया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के अवाम को वक्फ किया।
0: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जोजिला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क रास्ते को भी उजागर किया जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इक्तसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीक़ेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मस्बत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
2: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پرگتی پروجیکٹ کا آغاز کیا جس کا مقصد 20 لاکھ

0: शुरू होगा। फीफा आलमी कप में आज रात अटलांटा में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। प्री क्वार्टर फाइनल के एक दीगर मुकाबले में वैंकूवर में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इससे कबल आज बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमरीका को 4-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इकतसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश बोल रहे हैं। उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

पुत्र में योजना तमाम सुनने खत्म करती है। समय आप कशा प्रोग्राम महफिल हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू है कर्म व इनायत का तस्वीर। कर्म व इनायत तो ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं जिनमें मोहब्बत, रहमत, शफ़क़त, बख्शिश और बेलौस नवाजिश के कई रंग सिमटे हुए हैं। करम के मायने हैं फजल और एहसान, जबकि इनायत से मुराद खुसूसी तवज्जे, मेहरबानी और नवाजिश है। जब ये दोनों अल्फाज एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो उनसे अल्लाह ताला की वो बेपनाह रहमत मुराद ली जाती है जो हर लम्हा अपने बंदों को अपने हिसार में लिए रहती है। इस्लामी तालीमात में अल्लाह ताला को अरहमुर राहिमीन और गफूरुर रहीम कहा गया है। उसकी रहमत हर शय पर मुहीत है। इंसान ख्वाह कितनी ही खताएं कर बैठे, अगर वो सच्चे दिल से अपने रब की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसे माफ़ फरमा देता है। यही यकीन इंसान को मायूसी से बचाता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला अता करता है। सूफिया इकराम ने करम व इनायत के इसी तसव्वुर को अपनी तालीमात का मरकज़ बनाया। उनके नज़दीक अल्लाह ताला से मोहब्बत इंसानों से मोहब्बत के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। अगर इंसान अपने रब के करम का तलबगार है तो उसे चाहिए कि दूसरों पर रहम करे, ज़रूरतमंदों की मदद करे, माफ़ करना सीखे और मोहब्बत को फ़रोग़ दे। यही हकीकी बंदगी और करम व इनायत का अमली इजहार है। सामईन, इसी जज्बाए मोहब्बत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत के इजहार के साथ आइए महफिल समा की पहली पेशकश सुनते हैं। पेश है खूबसूरत नातिया कव्वाली, जिसे अपनी दिलनशीन आवाज में पेश कर रहे हैं मुनव्वर मासूम और साथी।

0: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
6: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
5: छीन सकती है खुशी।
7: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनिए बागी फिल्म से ये गीत, आवाज प्रमिला गुप्ता की, समीर का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में सुनिए जुर्म फिल्म का ये गीत। इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में सुनिए पुलिस पब्लिक फिल्म का ये नगमा। असद भोपाली के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राम लक्ष्मण ने।

दूध का कर्ज लीजिए। इस फिल्म से अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को आनंद बख्शी का गीत और अनु मलिक का संगीत।

अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ों में सुनिए यादों के मौसम फिल्म का ये नगमा।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित जगन्नाथ और साथियों का शहनाई वादन। राग है मधु कौस, विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित जगन्नाथ और साथियों का शहनाई वादन। राग था मधु कौस, विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में नेपथ्य था। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 11 बजने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे टी20 क्रिकेट मैच

में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Nine workers who were trapped underground were rescued and shifted to the government medical hospital, Maypati. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में इस समय 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर इन्हीं मीटर्स पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।